0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: అవునండి శ్రోతలారా, నీటి కార్యక్రమంలో మాతోనే ఉన్నందుకు అనేక అనేక కృతజ్ఞతలు. ఇంతటితో మీ కృతక కీసెలవు ఇవ్వండి. స్వామివారి ఆలయంలో ప్రతిరోజు వివిధ పూజలు సేవలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే తప్పకుండా
1: 819 కిలోహెర్ట్జ్ యే హై రేడియో మారిషస్. రేడియో మారిషస్
2: घड़ी मिला लीजिए, समय 6 बज रहे हैं. आइए सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ जुड़ते हैं. छह बजे के प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का. ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो. शुरू करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ, जिन्हें हम बेशक विस्तार देंगे 6:30 बजे के समाचारों में. मॉरिशस में पानी की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है. जलाशयों में औसतन करीब 60% पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय ये स्तर 87% से ज्यादा था. मोवाक्वा सिर्फ 36% और लानिकोलिया महज 6% भरा है. आने वाले महीनों में सामान्य के आसपास बारिश की संभावना, लेकिन मौजूदा कमी पूरा करने के लिए ये शायद काफी नहीं होगी. कुतुगाफे में कई परिवार अब भी पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं. कुछ परिवारों को जमीन का कॉन्ट्रैक्ट मिले करीब 15 साल हो चुके हैं. भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने CWA और CBI के अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा किया. ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मीटा की एक टीम आज और कल मॉरिशस में अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी. बच्चों की सुरक्षा, उम्र की जांच, क्रियोल मॉरिशिया में कंटेंट मॉडरेशन और आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाने जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी. और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर के मामले के बीच संभावित संबंध का अब मॉरिशस में वैज्ञानिक अध्ययन. WHO और FAO के सहयोग से होने वाली इस अध्ययन में पेस्टिसाइड्स के संपर्क और स्वास्थ्य पर उनके संभावित असर की जांच की जाएगी. और अब बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर. हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है. पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान और शाम तक देश भर में मौसम अच्छा रहेगा और धूप खिली रहेगी. केवल देर शाम को पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर कुछ कुछ वर्षा हो सकती है. रात के मौसम की बात करें तो केवल पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और वर्षा की संभावना है. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा. 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है. तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम सहली इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा. सूर्योदय 5:47 पर, सूर्यास्त 6:01 पर होगा.

सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वाट 19 किलोहर्ट्ज पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं, आप सभी का हृदय की गहराई से हम स्वागत करते हैं आज के इस प्रसारण में। मैं हूँ रत्ना, आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूँ। 6 तारीख है, अक्टूबर महीना 2026 का वर्ष, मंगलवार का दिन और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6:03:45। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में रहेंगे। आशा करते हैं आज का दिन आप सभी के लिए सकारात्मक रहे, ऊर्जनात्मक रहे और बिल्कुल आज का ये दिन मंगलमय रहे। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत अभी थोड़ी ही देर में हम मानस मोती कार्यक्रम के साथ करेंगे, जिसे प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर वीनू अरुण जी, और सदाबहार गीतों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तुरंत उसके बाद 6:30 बजे हम जुड़ेंगे पुनः समाचार बुलेटिन के साथ, और समाचारों के उपरांत सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा, जहां पर बेहतरीन गीतों से सजाया

0: हुआ ये सफर हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ सकारात्मक विचारों के साथ। श्रोताओं, दूसरों को क्षमा करें इसीलिए नहीं क्योंकि वे क्षमा के पात्र हैं, पर इसीलिए क्षमा करें क्योंकि आप शांति के पात्र हैं। आइए इसी के साथ मानस मोती कार्यक्रम में डॉक्टर वीनू अरुण का स्वागत करते हैं।
1: आइए सुनिए मानस मोती रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम।
2: मानस मोती कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। रामचरितमानस के अरण्य कांड से आज कुछ ऐसी चौपाइयाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिनमें भक्ति को बाहरी गुणों से अधिक महत्व दिया गया है। भारतीय संत परंपरा में भक्ति को जीवन का सार माना गया है। मनुष्य चाहे कितना ही विद्वान, धनवान या प्रतिष्ठित क्यों न हो, यदि उसके हृदय में भक्ति का भाव नहीं है तो उसका जीवन अधूरा और निःसार माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसी सत्य को अत्यंत सरल और मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। वे कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति ही न नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। इन चौपाइयों में तुलसीदास जी मनुष्य के जीवन के उन सभी बाहरी गुणों और उपलब्धियों का उल्लेख करते हैं जिन पर सामान्यतः लोग गर्व करते हैं, जैसे उच्च जाति, प्रतिष्ठित कुल, धार्मिक आचरण, समाज में बड़ाई, धन संपत्ति, शारीरिक बल, पारिवारिक संबंध, अनेक गुण और चतुराई। लेकिन वे स्पष्ट कहते हैं कि इन सब के बावजूद यदि मनुष्य के भीतर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार शोभाहीन हो जाता है जैसे जल रहित बादल। सबसे पहले तुलसीदास जी जाति और पांति का उल्लेख करते हैं। भारतीय समाज में लंबे समय से जाति और सामाजिक प्रतिष्ठा को महत्व दिया जाता रहा है। बहुत से लोग अपने उच्च जन्म या कुलीन परिवार पर गर्व करते हैं, परंतु तुलसीदास जी यह संकेत देते हैं कि केवल जन्म का गौरव मनुष्य को महान नहीं बना सकता। यदि उसके हृदय में विनम्रता, करुणा और भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो उच्च कुल भी उसे वास्तविक सम्मान नहीं दिला सकता। इसके बाद वे कुल और धर्म की बात करते हैं। कुल का अर्थ है परिवार की परंपरा, प्रतिष्ठा, जबकि धर्म का अर्थ है यहां धार्मिक आचरण। अनेक लोग अपने परिवार की परंपरा, धार्मिक संस्कार या कर्म कांडों पर बहुत गर्व करते हैं। बार बार उल्लेख करते हैं, हम तो इतने अनुष्ठान करते हैं, इतना व्रत करते हैं, इतना उपवास करते हैं, इतने बार मंदिर जाते हैं, इतनी देर बैठ करके उपासना करते हैं, या हम बहुत अच्छे परिवार के हैं, हमारे परिवार की ये परंपरा रही है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि धर्म केवल बाहरी आडंबर बनकर रह जाए और उसमें भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण न हो तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से अधूरा माना जाता है। सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य के भीतर विनम्रता, सेवा और भक्ति की भावना उत्पन्न करे। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, बड़ाई, धन और बल, मतलब इन तीनों का उल्लेख करते हैं। संसार में प्रतिष्ठा और धन को बहुत महत्व दिया जाता है। प्रतिष्ठा यानी हमारा समाज में मान हो, सम्मान हो और हमारे पास धन हो ताकि हम अपने धन से भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें। धन से व्यक्ति सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, समाज में प्रभाव बना सकता है, और इसी प्रकार बल, चाहे वो शारीरिक हो या राजनीतिक, मनुष्य को सामर्थ्य दे।

0: देता है। किंतु तुलसीदास जी के अनुसार यदि इनके साथ भक्ति नहीं है तो ये सब भी बाहरी उपलब्धियां ही रह जाती हैं, वे व्यक्ति के भीतर आत्मिक शांति और संतोष नहीं ला पाती। फिर वे आगे कहते हैं परिजन, गुण और चतुराई, यानी मनुष्य का परिवार, मित्र और संबंधी उसका सामाजिक आधार होते हैं। इसी प्रकार गुण और बुद्धिमत्ता भी जीवन में सफलता दिलाने वाले महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। परंतु तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि इन सबके होने पर भी यदि हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो जीवन में एक गहरी रिक्तता बनी रहती है। बाहरी सफलता के बावजूद मनुष्य भीतर से असंतुष्ट और अधूरा अनुभव करता है। इन सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए तुलसीदास जी एक अत्यंत सुंदर उपमा देते हैं। बिनु जल बारिद देखी जैसा, यानी वे बादल जो बिना जल के हैं, जैसे बादल बिना जल के शोभा नहीं प्राप्त करते, उसी प्रकार मनुष्य भी चाहे जो कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन भक्ति के बिना वह सुंदर दिखाई नहीं देता। सुंदर का मतलब बाहरी रूप से नहीं, लेकिन आंतरिक सौंदर्य तभी आता है जब उसके मन में परमात्मा के प्रति निष्ठा हो, भक्ति हो, प्रेम हो। जब बादल आकाश में दिखाई देता है तो उससे वर्षा की आशा की जाती है, और यदि वो जल से भरा हो तो धरती को जीवन देने वाली वर्षा करता है। परंतु यदि बादल केवल आकार में बड़ा हो और उसके भीतर जल ना हो तो वह केवल दिखावे का बादल बनकर रह जाता है। वह ना तो धरती की प्यास बुझा सकता है और ना ही जीवनदायिनी वर्षा दे सकता है। इसी प्रकार वह मनुष्य जो बाहरी रूप से प्रतिष्ठित और गुणवान प्रतीत होता है, परंतु जिसके भीतर भक्ति का भाव नहीं है, वह भी उसी जलहीन बादल के समान है। उसका व्यक्तित्व बाहरी रूप से कितना भी प्रभावशाली क्यों ना दिखाई दे, परंतु उसमें वह आध्यात्मिक गहराई और जीवनदायिनी शक्ति नहीं होती जो उत्पन्न होती है परमात्मा की भक्ति से। जब मनुष्य के जीवन में भक्ति आती है तो उसका अहंकार कम होता है, उसका हृदय करुणा से भरता है और दूसरों के प्रति अधिक सहृदय और विनम्र बनता है। भक्ति मनुष्य को भीतर से परिष्कृत करती है और उसके जीवन को सार्थक बनाती है। रामचरितमानस में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां तुलसीदास जी ने भक्ति को ही सबसे बड़ा गुण बताया है। भगवान राम ने भी सदैव भक्तों को उनके बाहरी रूप या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उनके प्रेम और भक्ति से पहचाना। चाहे वे निषाद राज हों, शबरी माता हों, हनुमान जी हों, इन सभी का गौरव उनकी भक्ति के कारण ही है। इसलिए तुलसीदास जी की ये चौपाइयाँ हमें एक गहन आध्यात्मिक सत्य सिखाती हैं कि मनुष्य के जीवन की वास्तविक शोभा उसके बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि उसके हृदय की भक्ति में है। और श्रोताओं, आज रामचरितमानस की इन्हीं चुनी हुई चौपाइयों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस मोती।

फिल्म राहगीर का ये गीत आपने अभी अभी सुना हेमंत कुमार साहब की आवाज में। बिल्कुल, जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो आपको गले लगाता है सिर्फ वही अपना कहलाता है। आपकी गलतियों को, आपकी छोटी छोटी नकारात्मक बातों को सुधारने के लिए बिल्कुल अपना सहयोग देता है। बस ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में रिश्ते बनाए रखें उनके साथ। और चलिए, प्यारे पुराने गीतों के साथ आज की ये सुबह बहुत ही ज़्यादा मधुर होने वाली है। आपका दिन बस इन गीतों की तरह मधुर बना रहे, हमारी कोशिश भी जारी है। मधुमती का ये गाना लेते हैं मुकेश साहब और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

दोस्तों रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जो कद्र करते हैं, यानी आपका आदर करते हैं और सब्र के साथ रिश्तों को निभाते हैं, आपकी तकलीफ को समझते हैं, ना कि हर बात पर ताना मारे। चलिए इसी के साथ आज का ये अगला गाना जो है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रखा हुआ फिल्म राम और श्याम से लिया हुआ।

0: इन गीतों की तरह बस आपका चेहरे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। स्वस्थ हम तब रहते हैं जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं। और चलिए इसी के साथ, अगर लेन देन सही रखेंगे तो रिश्ते अपने आप सही हो जाएंगे। और इसी लेन देन के साथ इस सफ़र को हम इस अगले गीत के साथ ज़रूर जोड़ेंगे। एक बार फिर राहगीर फिल्म का लिया हुआ ये गीत मन्ना डे हेमंत कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में। इसी गीत के साथ जुड़ते हुए हम जुड़ेंगे 6:30 बजे के समाचारों के साथ। तो बस हेल्दी हेल्दी फील करे, अच्छा अच्छा फील करे, सब कुछ अच्छा ही होगा।
1: देखो जीवन की सरगम हो आई है।
0: तो चलिए मिलते हैं 6:30 बजे के समाचारों के बाद। तब तक के लिए बस गुनगुनाते रहे प्यारे प्यारे गाने।

0: सुबह के ठीक 6:30 बज रही है, समाचार सुनिए। नमस्कार, मंगलवार 6 अक्टूबर की सुबह, इन समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस में पानी का संकट गहरा रहा है और जलाशयों में औसतन करीब 60% पानी बचा। हालात पर चर्चा के लिए आज वाटर क्राइसिस कमेटी की अहम बैठक लगेगी। विश्व बैंक ने मॉरिशस के आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत बताई है और कहा कि सुधारों से 2050 तक 37,000 से ज्यादा कुशल रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। मॉरिशस में पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर के बीच संभावित संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, जिसमें WHO और FAO भी सहयोग करेंगे। ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मेटा की टीम आज मॉरिशस में अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी, जिसमें बच्चों की सुरक्षा और आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। फ्लाई दुबई के एक उड़ान में कैप्टन पर कथित हमले की जांच जारी, जबकि मीडिया रिपोर्टों में को पायलट के विमान को तेल अवीव में टकराने की कथित योजना का दावा किया गया है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। मॉरिशस की मौजूदा आर्थिक व्यवस्था अब अपनी सीमाओं तक पहुंच रही है। विश्व बैंक ने अपनी नई रिपोर्ट में ये बात कही है। गन्ना, कपड़ा उद्योग और फिर पर्यटन के सहारे देश ने आर्थिक विकास के अलग अलग दौर देखे, लेकिन अब बढ़ती उम्र की आबादी, घटती प्रतिस्पर्धा और सामाजिक खर्च का बढ़ता बोझ नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव जल्द शुरू करने की सिफारिश की है, खासकर ज्यादा आमदनी देने वाली सेवाओं और डिजिटल सेक्टर को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही युवाओं को इन सेक्टरों में रोजगार के लिए कम समय के प्रमाणिक प्रशिक्षण देने की भी सिफारिश की गई है। विश्व बैंक के अनुसार ये बदलाव किए जाएं तो 2050 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 7% की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है और 37,000 से ज्यादा कुशल रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। हम आपको बता रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में कि मॉरिशस में पानी की स्थिति लगातार चिंता बढ़ा रही है। जलाशयों में औसतन करीब 60% पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय यह स्तर 87% से ज्यादा था। मोवाकवा सिर्फ 36% और लानीकुलिया महज 6% भरा है। आने वाले महीनों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है, लेकिन मौजूदा कमी पूरा करने के लिए ये शायद काफ़ी नहीं होगी। इसी स्थिति पर चर्चा के लिए आज दोपहर वाटर क्राइसिस कमेटी की बैठक मंत्री पैट्रिक आसियावादेन की अध्यक्षता में लगेगी। पूजा सुकालू का विवरण पेश है।
1: दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर के लिए जलवायु पूर्वानुमान फोरम के अनुसार इस गर्मी में बारिश सामान्य स्तर के आसपास रहने की उम्मीद है। इसमें मॉरिशस भी शामिल है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बारिश की जो कमी हुई है उसे पूरा करने के लिए ये पर्याप्त नहीं होगी। IOC के क्लाइमेट और हाइड्रोलॉजी इंजीनियर एरिक पुमी कहते हैं,
2: les zones les plus vulnérables à la sécheresse qu'on voit, il y a la zone à Geliga. Il y a aussi la zone de Mascarene. On va observer un risque accru de stress hydrique.
1: हिंद महासागर द्विध्रुव, जो इस क्षेत्र के मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले में से एक है, न्यूट्रल स्थिति से अब सकारात्मक चरण में प्रवेश कर गया है, जो चक्रवात के बनने के लिए अनुकूल है, लेकिन इसमें भी एक समस्या है।
2: Pour les cyclones, on voit que la trajectoire est méridionale, donc elle ne va pas beaucoup plus impacter sur les habitations. Par ça aussi de Maurice, c'est ça, avec les prévisions qu'on voit là.
1: आने वाले समय में पर्याप्त बारिश या तूफान होने की संभावना नहीं है और इसके प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से महसूस होंगे।
2: Le rendement sera très bas sûrement pour cette période-là, parce qu'on aura en termes de risque accru, on aura un peu de stress hydrique pour des cultures. Et des baisses de rendement. Et si on ne regarde pas très bien, on pourra atteindre l'insécurité alimentaire.
1: IOC स्थिति पर निगरानी रखने में अधिकारियों को तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार हैं। मॉरिशस ऋतु विज्ञान केंद्र की ओर से आने

0: वाले महीनों के लिए अपना पूर्वानुमान अक्टूबर महीने के अंत में जारी करेगी।
1: कोटोहाफे में कई परिवार आज भी पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। इनमें कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट मिले करीब 15 साल हो चुके हैं। समस्या का जायजा लेने के लिए भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने CWA और CB के अधिकारियों के साथ इलाके का किया दौरा। अब इन परिवारों तक ज़रूरी सुविधाएँ पहुँचाने के लिए संभावित कदमों पर काम किया जा रहा है। मंत्री को सुनते हैं विवरण।
2: C'est qu'ils nous capables tapent la porte au ministère des Finances et demandent l'argent pour qu'ils nous capables faire cimer, coltarer avec drain pour qu'ils aient la case pas inondée quand il y a un gros moment de pluie.
3: हम वित्त मंत्रालय की सहयोग की मांग कर सकते हैं टारकोल बिठाने और नाली संबंधी परियोजनाओं के लिए, ताकि भारी बारिश के दिनों इन परिवारों के घरों में पानी न भर आए और ताकि उन्हें सुचारू रूप से जल और बिजली आपूर्ति प्राप्त हो सके। जिन अन्य लोगों की स्थिति नियमबद्ध नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि मंत्रालय के अफसरों के सहयोग से उनकी स्थिति कानूनी मापदंडों के अनुरूप स्थायी हो सके, लेकिन इन प्रक्रियाओं का संबंध समंदर तटों से नहीं है। बीचेस पर अभी भी गैर कानूनी ढांचे पाए जाते हैं, इनको लेकर बीच अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। अब भूमि और आवास मंत्रालय की तरफ से भी उन्हें हटाने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन हम जटिलता पैदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें दूसरी जगहों पर बसाने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन गलत तरीके बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
1: बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर हैरेसमेंट, फर्जी प्रोफाइल्स और खतरनाक कंटेंट, इन बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा के लिए मेटा की एक टीम आज और कल मॉरिशस में रहेगी। सरकार के साथ बातचीत में बच्चों की सुरक्षा, उम्र की जांच और क्रेओल मॉरिशिया में कंटेंट मॉडरेशन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ICT मंत्री अविनाश राम तोहल चाहते हैं कि शिकायत मिलने पर आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाया जाए और पुलिस जाँच में भी बेहतर सहयोग मिले। मंत्री को सुनते हैं आदित्य अवतार का विवरण।
4: मेटा सेट एन कंपनी की जेयर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम।
3: मेटा कंपनी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का संचालन करती है। वो काफी लंबे समय से दुनिया के कई देशों और मॉरिशस में भी मौजूद है। मेटा को मॉरिशस लाने के लिए राजी करने में हमें काफी परेशानियां हुई, लेकिन प्रधानमंत्री के समर्थन से हमने बहुत प्रयास किए और हमारी उनसे सकारात्मक बात हो पाई। अब मेटा यहाँ आने के लिए राजी हुई है। हम सोशल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल में पेश आने वाली समस्याएं, यूजर्स की सुरक्षा, खासकर बच्चों की, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर पेश आने वाले धोखाधड़ी के मामले उनके सामने रखेंगे। मकसद है जनता की बेहतर सुरक्षा के लिए और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा कायम करना। ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ कानून में प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन मेटा के स्टैंडर्ड्स हमारे कानूनों के अनुरूप नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कानून का पालन हो, इसलिए इस दिशा में मेटा के साथ बातचीत होगी, जिससे देश में बेहतर तरीके से साइबर अपराधों से निपटा जा सके।
1: क्या पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर के मामलों के बीच कोई संबंध है? जी हां, मॉरिशस में अब इसका वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO के सहयोग से एक अध्ययन की तैयारी है, ताकि पेस्टिसाइड्स के संपर्क और स्वास्थ्य पर उसके संभावित असर का पता लगाया जा सके। इसी मुद्दे पर अंतर मंत्रालय समिति की पहली बैठक एबेन में कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में लगी। कुछ कृषि सामानों में तय सीमा से ज्यादा पेस्टिसाइड मिलने के बाद नियमों की समीक्षा भी हो सकती है। मंत्री अरविंद मुरेल को सुनते हैं।
5: Nous faire appel à nos camarades qui représentent l'Organisation mondiale de la santé et avec FAO pour nous travailler de concert, gagner ce soutien de concert avec le ministère de la santé pour faire cette étude épidémiologique. Après ça, nous payons la loi, le use of pesticides. Nous avons un expert qui travaille l'eau la loi et ça va un expert là indien qui ban amendement mis amené dans la loi et qui ban regulations. Nous avons aussi nous ban planter local et là ban importateur qui importe ban légumes ou bien ban fruits, mais tout ça ban test là pour faire. Et après nous ban analyse quand nous peut faire, nous peut envoyer ça non seulement nous faire ici à Maurice, mais nous envoyer dans un laboratoire de renom ailleurs.
1: तेज आवाज करने के लिए गाड़ियों के एग्जॉस्ट में बदलाव करने वालों के खिलाफ अब कानून और सख्त हैं। इस साल जनवरी से अक्टूबर महीने तक पुलिस ने

0: ऐसे मामलों में 289 कॉन्ट्रावेंशंस जारी किए हैं। रोड ट्रैफिक एक्ट में हाल के बदलावों के बाद ज्यादा शोर पैदा करने के लिए साइलेंसर में बदलाव करने पर ₹10,000 का जुर्माना हो सकता है। पुलिस का कहना है कि सड़क पर अनावश्यक शोर को कम करने के लिए जाँच जारी रहेगी। बात करते हैं अब स्वास्थ्य के बारे में। मॉरिशस में मधुमेह यानी डायबिटीज़ की रोकथाम और इसके कारण होने वाली जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की गई है। ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ नामक गैर सरकारी संगठन का लक्ष्य मॉरिशस की जनता के साथ मिलकर काम करना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। उद्देश्य है वर्ष 2035 तक अनियंत्रित डायबिटीज़ के मामलों में 5% की कमी लाना। इसके लिए समुदाय आधारित गतिविधियों, शोध और सर्वेक्षणों के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को समझने और उसके आधार पर प्रभावी कदम उठाने की योजना है। पेश है पूजा सुकालू की रिपोर्ट।
1: मधुमेह आज दुनिया के सामने एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मॉरिशस में ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ की ओर से समुदाय आधारित एक पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मधुमेह की रोकथाम करना, अनियंत्रित मधुमेह को कम करना और इससे होने वाली स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को रोकना है। संगठन का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को केवल अस्पतालों तक सीमित रखने के बजाय समुदाय को इस अभियान का सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए।
2: हम लोग डायबिटीज को जो बीमार है और प्री डायबिटिक जो डायबिटिक के आगे का स्टेज है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। एक ठुला अनुसंधान हो रहा है। हम लोग पार्टिसिपेंट्स को डायबिटिक पार्टिसिपेंट्स को प्री डायबिटिक पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करेंगे विद देयर कंसेंट यू नो इन डिफरेंट एरियाज ऑफ मॉरिशस। वहाँ पर हम रिक्रूट करेंगे, उन लोग को ट्रेन करेंगे हाउ एंड डाइट के बारे में सिखाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में सिखाएंगे, अल्कोहल का हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बोलेंगे, सिमिलरली स्मोकिंग के इफेक्ट के बारे में बोलेंगे।
1: इसी दिशा में मॉरिशस स्थित लिस्पेरांस ट्रेबुशे इलाके में एक सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने घर घर जाकर स्थानीय निवासियों से जानकारी एकत्र की और उनके स्वास्थ्य से संबंधी आंकड़े जुटाए।
3: एक डॉक्टर आ रहा हमें लगे एक घंटा ले हमें से बात कर लग जावेद पर ढेर बतियलक हमी के चाहना सुई हो के हमी के मिला ता चाहनी को चीज चाहना सुई हो के बस हम के लाश जाता है इतना पर हो गल है सा चाहना हमी के सुई करे के जे मैं अच्छा रहब स ना लैका लो के आगे रहब स दे दिन ले जी अब स
4: मो बा मे तो मिन पु जावे ला मे सा मो प्रोपर क्वेश्चन अपरे पु मो जे ला बन लेगिम सा नु मो प्लीज सलाद स ला से वे के जे बे फे ला बिए बो अपरे से ना सो चाशन तो सा ला कम सा नु का ले
1: ये पहल केवल मॉरिशस तक सीमित नहीं है। नेपाल, अमरीका और पाकिस्तान जैसे देशों में भी संगठन की ओर से इसी तरह की सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। इन गतिविधियों के दौरान लोगों से सीधे मुलाकात की गई, उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को समझने का प्रयास किया गया और मधुमेह की रोकथाम एवं स्वस्थ जीवन शैली को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए। घर घर जाकर लोगों से संवाद करना, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा करना और लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक करना इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
0: मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MFDC अपने 40 साल पूरे होने पर स्थानीय सिनेमा और नई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें नेशनल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन 2026 भी शामिल, जो अनुभवी और नए दोनों फिल्म मेकरों के लिए खुला रहेगा। और प्रतियोगिता में 3 श्रेणियाँ रखी गई हैं, पारंपरिक तरीके से बनाई गई फिल्में, AI की मदद से तैयार फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी। इसके अलावा सिनेमा वीक, अलग अलग कार्यशालाएं और देश भर में फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग्स भी आयोजित की जाएंगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें फ्लाई दुबई की एक उड़ान में हुई गंभीर घटना की जांच जारी है। अमेरिका और इजरायली मीडिया की खबरों के मुताबिक दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान के को पायलट ने कथित तौर पर कॉकपिट में कैप्टन पर इमरजेंसी आक्स यानी कॉकपिट में रखी गई जो कुल्हाड़ी से कैप्टन पर हमला किया। जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि को पायलट विमान को तेल अवीव में किसी जगह से टकराना चाहता था। हालांकि इस दावे को अभी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। विमान में 180 से ज्यादा यात्री सवार थे। यात्रियों और क्रू ने

को पायलट को काबू में किया, जिसके बाद विमान को सुरक्षित सऊदी अरब में उतारा गया। यूएई के अधिकारी अब घटना के कारणों और इसके पीछे के मकसद की जांच कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ धमकियों के बाद ब्रिटेन के आरएएफ फ्रैंकफर्ट सैन्य अड्डे से अमेरिकी सैन्य विमान हटा लिए गए हैं। पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है। विमानों को वापस अमेरिका भेज दिया गया है। हालांकि धमकी किस तरह की थी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों को धमकी देने वालों के बारे में जानकारी है। वहीं बरतानी सरकार ने आरएएफ फ्रैंकफर्ट को सुरक्षित बताया है। और अब अंत में चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर रहेगा। आज शाम को और सुबह के दौरान भी देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। केवल देर शाम को पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो पर रह रहकर बरसात हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगी। रात को देश के पूर्व उत्तर और सेंट्रल प्लेटो पर मौसम कुछ खराब हो सकता है। बादल घिरे रहेंगे और कुछ कुछ वर्षा होने की संभावना है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम सहाड़ी इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 5:47 पर, सूर्यास्त 6:09 पर होगा।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे यूसुफ, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। मॉकेटलेन रिवियनुआ में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की रेशमा गंगाराम की मृत्यु हो गई हैं। पैदाइश नाम अर्जुन, उनकी अर्थी आज शाम के चार बजे उनकी माता गंगाभाई अर्जुन के मकान रिवियनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियनुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 4 PM। विक्टोरिया स्ट्रीट वाल्टोन लॉन्ग माउंटेन में 72 ईयर्स ओल्ड के श्री धनंजय रामरतन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें श्याम के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले SS Oren अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर काम करते थे। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद दो बजे उन्हें के मकान लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खेफकियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। न्यू मोसलमा गुडलैंड्स में 68 ईयर्स ओल्ड के अब्दुल सिद्दीक इमामदी इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज सुबह के साढ़े दस बजे उनकी पत्नी नरीमन इमामदी के मकान गुडलैंड से निकाल कर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM। रॉयल रोड मेबर्ग में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के सीराम रामदू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुपाई के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थे आज दिन के एक बजे उन्हें के मकान मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। अली दिसाकासिया बुवालो में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के देबीदियाल शाम की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद दो बजे उनके बेटे विक्रम शाम के मकान बुवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन में बग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शापेल लेन लिस्काली में 47 साल के 47 ईयर्स ओल्ड के श्री राकेश कंगराम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विक्रम के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी माता धनवंती कंगराम के मकान शपेल ने लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। दागा लेन सीजियम मिल फोरेसाद में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री लालमन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मनोज दागा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी मीता दागा के मकान फोरेस्ट

साइट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 AM. खुद को स्थल पोइंटो पिमो में, खुद को स्थल माफ कीजिएगा, पोइंटो कानूनी में, पोइंटो कानूनी में 71 साल के 71 years old के अनिरुद्ध भगवान भगवान की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें रविन के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थ आज दिन के एक बजे उन्हीं के मकान पोइंटो कानूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1 PM. शोभा लेन लाफलोगा में, 91 साल की 91 years old की श्रीमती कुमारी देवनारायण की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम लक्ष्मण. उनके अर्थ आज दिन के 11 बजे उनके बेटे उत्तम रघु के मकान लाफलोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 AM. सनाशी गौदन कॉफिरिंगा पोइंटो साप में 62 साल की 62 years old की श्रीमती मनी देवी बंधन पैदाइश नाम बंध हुआ की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें उषा के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थ आज सुबह के 9 बजे उन्हीं के मकान पोइंटो साप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 9 AM. विजयलक्ष्मी रोड पुद्रदो हमलेट में 74 साल की 74 years old के अनिरुद्ध आउतो की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें शाम के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थ आज दिन के एक बजे उनकी पत्नी सत्या भामा आउतो के मकान पुद्रदो हमलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कहोमाउतें पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1 PM. लॉट नंबर 138 मुसलमान SIT रोजबेल में 68 साल की 68 years old की विद्वंती रितु की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम कनाई. लोग उन्हें माला के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन के 12:30 उनके बेटे अविनाश रितु के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माखजानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 12:30. रेमियोनी लागोलेट में 63 साल के 63 years old के बाबा जी की मृत्यु हो गई है. श्री बाबा जी की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी पत्नी मानती बाबा जी के मकान लागोलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 10 AM. शिवाला रोड बाल्मिक लेन त्यामिनिस्ट्रियोले में 68 साल की 68 years old की मदनलाल जीवन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें सुनील के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थ आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान त्यामिनिस्ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनिस्ट्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 AM. रॉयल रोड शमेला फोर्ज पोस्ट फ्लाक में 69 साल की 69 years old की सुमती देवी सोनाराम की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें अनीता कुचियो के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थ आज इनके 11 बजे उन्हीं के मकान शमला फोर्ज पुस्तफक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 AM. बुलांजे रोड पिजन लेन मोताई ब्लॉश में 78 साल की 78 years old की विद्यामती सुगन की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम बुधराम. लोग उन्हें विद्यामती के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान मोताई ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 10 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.

Sports News. सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम क्लब एम के दो चेहरे पिछले फ्राइडे को श्रीलंका के खिलाफ 3-0 की जीत पर कल 3-2 की हार। स्टीफन दे बोबिया और ओगेलिया फ्रांसवा मॉरिशस के स्कोरर रहे। क्लब एम के कोच रुई पेड्रो ने कहा कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, टीम ने अच्छा खेला, भविष्य उज्ज्वल है। बैडमिंटन में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन दिनों इजिप्त में लग रहे हैं। मिक्स्ड

0: टीम टूर्नामेंट में हमारे जवानों की पहली जीत हुई 2-0 से जिम्बाब्वे के खिलाफ। यूईएफए नेशंस लीग के लीग ए ग्रुप वन में फ्रांस और इटली की जीत। जिनेदीन जिदान के लिए ब्लू बेल्जियम के खिलाफ 1-0 से हार रहे थे, पर मैन इन फॉर्म मिकाइल ओलीजे का डबल, डेजिरे डुए और रयान चर्क की पासा पलट पाए। इस जीत से फ्रांस अपने ग्रुप में इटली से 3 अंक आगे है। इटली का स्क्वाड्रा अजूरा 3-1 से टर्की को हरा पाए। ग्यानलुका इस्कमाका ने इटली का पहला गोल स्कोर किया। फिर सेकंड हाफ में अराल सिमसीर ने बराबरी की। तुरंत रिकॉर्डो कालाफ्योरी का गोल और तीसरा गोल बनाया पियो एस्पोजिटो ने। ग्रुप बी टू में नॉर्दर्न आयरलैंड 0, जॉर्जिया 0, यूक्रेन 1, हंगेरी 2। ग्रुप बी फोर में बोस्निया 1, पोलैंड 0, रोमेनिया 0, स्वीडन 1। स्वीडन के लिए ग्योकेरेस का गोल रहा। ग्रुप सी टू में साइप्रस 2, लाटविया 1, मोंटेनेग्रो 0, आर्मेनिया 0। आज के फिक्स्चर्स लीग ए ग्रुप थ्री में क्रोएशिया वर्सेस स्पेन, इंग्लैंड, चेक रिपब्लिक। स्पेन के लिए नो पेन, 3 मैचों में फुल 9 पॉइंट्स, जबकि इंग्लैंड के पास है 6 अंक, क्रोएशिया के पास है 3 अंक। लीग बी ग्रुप वन में स्कॉटलैंड वर्सेस स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्थ मैसिडोनिया। ग्रुप सी ग्रुप वन में अल्बेनिया, सान मारिनो, बेलारूस, फिनलैंड। लीग सी ग्रुप थ्री में कजाकिस्तान, फराओ आइलैंड्स, मोल्डोवा, स्लोवेकिया। ग्रुप फोर में एस्टोनिया, आइसलैंड, लुक्जमबर्ग, बुल्गेरिया। आज के इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में टीम इंडिया की टीम, फुटबॉल टीम खेलेगी उरुग्वे के खिलाफ। रशिया नाइजीरिया, अल्जीरिया निजेर, जॉर्डन वेनेजुएला, चाइना ताजिकिस्तान, साउथ कोरिया उज्बेकिस्तान। फ्रांस की टीम में कल लिवरपूल का डिफेंडर जेरेमी जाके नहीं था। स्काई स्पोर्ट्स के अनुसार हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन का प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल ड्यूटी पर ईसाक भी घायल हुआ था। वैसे इंटरनेशनल ब्रेक काफी खिलाड़ी इंजुरी लिस्ट में आ पाए। बोर्नमुथ का अलेक्स स्कॉट थाई इंजुरी, इससे द चेरीज नाराज है। फिर मैनचेस्टर सिटी से अर्लिंग अलॉन और निको ओरेली को भी चोट लगी है। लिवरपूल से कोडी गाकपो भी इंजुरी लिस्ट में है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का कप्तान ब्रूनो फर्नांडेस भी फुल फिट नहीं है। सन्डरलैंड से डैन बालार्ड और ब्रायन ब्रॉबी के लिए हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम। आर्सेनल से काई हावर्ट्स मसल स्ट्रेन, क्रिस्टोस ज़ोलिस हैमस्ट्रिंग। एस्टन विला का गोलकीपर सुजुकी रिब की समस्या। प्रीमियर लीग के इन 3 हफ्तों की छुट्टी में काफी क्लबों के लिए इंजुरी की समस्या रही। सो प्रीमियर लीग की वापसी होगी इसी शनिवार को, इसी सैटरडे को। अर्ली किक ऑफ आर्सेनल वर्सेस लीड्स यूनाइटेड, फिर 6 बजे एस्टन विला ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी बोर्नमुथ, इप्सविच फुलहम, सन्डरलैंड ब्राइटन। लेट मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ओल्ड ट्रैफर्ड में टोटनहम हॉटस्पर का स्वागत करेगा। फिर संडे मैच क्रिस्टल पैलेस, नॉटिंघम फॉरेस्ट, हल सिटी, एवर्टन एंड द बिग वन लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी 7:30 बजे। टेनिस, चाइना ओपन में कल मेदवेदेव को डिस्क्वालीफाई किया गया। नोवाक जोकोविच के खिलाफ खेलते हुए गुस्से में आकर उसने एक स्पेक्टेटर को टेनिस बॉल से मारा। इस प्रकार जोकोविच फाइनल में पहुंचा। यहां उसका सामना एलेक्स डेमिनो से होगा। जापान ओपन के फाइनल में पहुंचा कार्लोस अल्काराज। सेमीफाइनल में उसने अपने हमवतन योम मुंडा को हराया। फाइनल में अल्काराज का सामना यिरी लेहेका से होगा। और क्रिकेट, भारतीय दौरे पर आई वेस्ट इंडीज की टीम वनडे इंटरनेशनल मैचों के बाद अब T20 सीरीज में भाग लेगी। लखनऊ में आज 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के ज्यादातर खिलाड़ी इस T20 टीम में है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों का विंग की ओर से शुभ दिन।
1: रेडियो मॉरिशस सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार। रेडियो मॉरिशस पर

0: स्वागत करते हैं, घड़ी मिला लीजिए, इस समय बिल्कुल 7 बजे हैं। अक्टूबर महीना है, 6 तारीख है और इस महीने का पहला मंगलवार। ये महीना सभी के लिए बहुत ही सुखद रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को लेकर हम पुनः उपस्थित हुए हैं। अभी से लेकर 9 बजे तक तो हम साथ रहेंगे और बिल्कुल हमारी सेवा आप तक पहुंचेगी 11 बजे तक। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आपका साथ देने के लिए, जहां कहीं से भी साथ दे रहे हैं, बस एक मुस्कान के साथ, ऊर्जा के साथ आज के इस दिन को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं चिंतन के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शांति मुहाबिया। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाती हैं, इसलिए धागा लपेट कर रखिए और जुबान समेट कर रखिए।

काजल के ओ के साथ आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल आपको ये भी बताते चले, आरती मुखर्जी की प्यारी सी आवाज़, फिल्म राहगीर का ये गीत, और शायद आपको याद होगा इस फिल्म में नजर आए थे बिस्वजीत और संध्या रॉय। ये फिल्म जो थी तरन मजुमदार की फिल्म रही और संगीत निर्देशन था हेमंत कुमार साहब का। प्यारे पुराने गीतों का ये सफर है भाई, ज़रूरतें और नींद जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती, जो जितनी सुविधा में है उतनी ही ज़्यादा दुविधाएं भी हैं, इसीलिए कम में खुश होने की बस कोशिशें जारी रखें। और 7:06 हम हैं आपका साथ देने के लिए। फिलहाल आपको ये भी बताते चले, रेडियो मॉरिशस पर कौन कौन से कार्यक्रम आज के दिन के लिए सजाए गए हैं केवल आपके लिए। जी हाँ, इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रत्ना के साथ। पुराने गीतों का ये सफ़र 8 तक जारी रखेंगे और बिल्कुल 8 भोजपुरी समाचारों के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे अभिनेता के साथ जिनका आज है जन्मदिन, और एक छोटी सी मुलाकात में उनकी मुलाकात करते हुए उनके ही फिल्मों के गीत सजाएंगे उस सेगमेंट में। और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम में किरण जानकी का साथ रहेगा। एक भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए हम बढ़ेंगे 9 के समाचारों के साथ। जी हाँ, 9 के समाचारों के बाद आपकी सेवा में हाजिर रहेगी सुमी सरकार। जी हाँ, और ये कार्यक्रम आज आधारित रहेगा टीचर्स डे पर, जहाँ पर हमारी अतिथि रहेंगी मिसेस मीला धनुकचंद, जो आज के इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे, इसका सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देख पाएंगे। और अगर कुछ छूट जाए, मिस हो जाए, तो फिक्र ना करें, दोपहर के 3 से 4 के बीच रेडियो मनोरंजन पर आप सुन पाएंगे यही कार्यक्रम दोबारा से। वैसे ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा 10 तक। 10 के समाचारों के बाद मैं पुनः आपकी सेवा में रहूंगी भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा को लेकर, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे वेद सुधा का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुदेश बद्री जी। हमारी और आपकी भेंट जारी रहेगी 11 तक। 11 के समाचारों के बाद आप विविध भाषाओं के कार्यक्रमों को सुन पाएंगे, जिसकी पहल की जाएगी शम्मी फरोजा कार्यक्रम के साथ, जो होगा उर्दू भाषा में, और इसकी पेशकश की जाएगी सैयदा सुबाई द्वारा। ठीक 12 वर्षा लेकर आएंगी तेलुगु भाषा का कार्यक्रम सौंदर्य लहरी। 12:30 सीताबाई दरमिया आपकी सेवा में हाजिर रहेंगी स्वर तरंग कार्यक्रम को लेकर, जो होगा मराठी भाषा में। 1 RSC की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम। 2:15 गुजराती गीतों का कार्यक्रम रंगारंग, इसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी अमिता की ओर से। 2:00 मैंडरीन का कार्यक्रम लेकर आएंगे डेविड। 2:30 दैनिक कार्यक्रम आपकी पसंद, और इसकी कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी रोशनी, जो चलेगा शाम के 4 तक। 4 पुनः तमिल भाषा का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा, जिसकी प्रस्तुतिकरण होगी कलाईवानी वीरन द्वारा। ठीक 5 पुराने गीतों का सफर भूले बिसरे गीत, ये लेकर आएंगी उषा कौर। एक घंटे का सफर रहेगा। शाम के 6 समाचार बुलेटिन के साथ पुनः जुड़ेंगे। 6:30 एक बार फिर कारवां आगे बढ़ेगा विविध भाषाओं का मैंडरीन के साथ। हांगकांग की प्रस्तुति में रहेगा ये कार्यक्रम। शाम 7 युवरासन लेकर आएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 कृतिका की प्रस्तुति में तेलुगु भाषा का कार्यक्रम स्वरला वेदिका। 7:50 पर श्री श्रामा का साथ रहेगा मराठी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा में। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम, ये भक्ति में यात्रा सजाई जाएगी अनिता की ओर से। 8:40 पर महफिले शब उर्दू भाषा का कार्यक्रम पेशकश रहेगी निसार अख्तर की। 9:00 से लेकर 12:00 माफ कीजिएगा 11:00 तक। जी हाँ, 9

0: बजे से लेकर 11 बजे तक भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगी किरण। और रात के 11 बजे से 12 बजे तक पुराने गीतों का सफर, सुनहरे पल, जिसे सजाएंगी नीलमणि। रात के 12 बजे से कल सुबह 6 बजे तक, माफ कीजिएगा, सुबह 5:30 बजे तक ओवरनाइट प्लेलिस्ट रहेगी हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा। और बिल्कुल आपको याद दिलाते चले, अभी विशेष कार्यक्रम सुबह 5:30 बजे 5:35 पर गोविंदन के अवसर पर आप सुन पाएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम, और 5:50 पर वेंकटेश्वरा व्रतम के अवसर पर मॉरिशस तेलुगु महासभा द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा तेलुगु भाषा में। तो ये थी सूची हमारे रेडियो कार्यक्रम की, बिल्कुल रेडियो मॉरिशस के सभी कार्यक्रमों की। 7:11 होने जा रहे हैं, चलिए पुराने गीतों के इस सफर में जुड़ते हैं। और फिल्म बेगुनाह का ये गाना हमने सजाया है मन्नाडे और लता जी की आवाज़ में। बहुत ही पुराना सा गाना है पर बहुत ही लाजवाब सा गीत, 1957 के दौर का ये गाना। इस फिल्म में नजर आए थे किशोर कुमार साहब और साथ नजर आई थी शकीला, संगीत था शंकर जयकिशन का। आइए सुनते हैं लता जी और मन्नाडे साहब की प्यारी सी आवाज़।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना,

चलिए गीतों की ओर से, हम भी आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं और 7:15 हो चुके हैं प्यारे प्यारे गीतों के सफर में जुड़े हुए हमारे सभी श्रोता। बस आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे, मन में ऊर्जा जागृत रहे और हर काम में बस आपको खुशी मिले, हम तो दिल से यही प्रार्थना करते हैं। और प्यारे प्यारे गीतों के सफर में बेगुनाह का ये गाना भी हमने

हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गाने 50s और 60s के जमाने के, कुछ ऐसे ऐसे चुनिंदा गीत जिसे सुने हुए अरसा हो गया है। और चलिए इसी के साथ सुबीर सेन और लता जी की प्यारी सी आवाज़ गूंजने जा रही है एक बार फिर। संगीत निर्देशन जय किशन साहब का, शंकर जय किशन साहब का, 1959 के दौर की मूवी छोटी बहन। और इस फिल्म में नजर आए थे बलराज साहनी, नंदा, रहमान साहब, महमूद साहब और श्यामा। दोस्तों आज जो जी रहे हैं वही जिंदगी है, कल जो जिएंगे वो तो बस आशा है। तो जो भी करना है आज करें, जिंदगी में बस अच्छा सोचें, अच्छा जिए और बस जिंदगी भरपूर जिंदगी से भरी हुई हो। अब आपको लगेगा ये क्या है, बस यही है जिंदगी। हंसिए, मुस्कुराइए हमारे साथ और रंग भरिए अपनी जिंदगी में।

7:24 और हमसे हमारे कई सारे प्यारे प्यारे श्रोता कह रहे हैं भाई आज तो हमारी लॉटरी लग गई, आज तो दिन बहुत ही प्यारा से बीतेगा क्योंकि कुछ ऐसे गाने जो उनके जमाने के हैं उनको आज सुनने को मिल रहे हैं। चलिए कोशिश तो यही जारी रखते हैं कि आपका दिल खुश हो और बस यादें ताज़ा हो। कई बार कहते हैं ना सुबह का समय हो, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हम पहुँच जाते हैं हमारे बचपन की दिनों की याद में। बचपन एक ऐसा सफर, एक ऐसा समय था जो वापस नहीं आता, और बुढ़ापा है, आता है तो जाता नहीं, है ना। चलिए इसी के साथ एक बार फिर मन्ना डे साहब की आवाज, आशा जी साथ उन्होंने साथ दिया है और श्री 420 का ये गाना हम लेकर आए हैं खास आपके लिए।

जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुड़ मुड़ के ना देखें, भूतकाल में ना रहें। आपने कभी गाड़ी देखी है? बिल्कुल, गाड़ी चलाते वक्त भी आगे का कांच जो होता है ना, वो बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि हमें आगे देखना है। पीछे का कांच बहुत छोटा होता है। अगर बार बार आप उसमें देखते रहेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। बस इसीलिए बस आगे बढ़ते रहें। ज़िंदगी में जो छूट चुका है, जो पीछे रह गया है, उसमें अगर हम उलझे रहेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। प्यारी प्यारी बातों के साथ, प्यारे प्यारे गीतों का सफ़र और कुछ हल्के फुल्के मज़ेदार गाने। और चलिए एक बार फिर मन्ना डे साहब की आवाज़ में लता जी ने साथ दिया है फिल्म ज्योति का ये गाना। हाय क्या गाना है।

दिल से चला रहे हैं हम गीत सुबह का नजराना कार्यक्रम के बीच, और इसी के साथ जुड़े हैं हमारे प्यारे प्यारे श्रोता जिन्हें है बहुत ही बेसब्री से इंतजार आज की छोटी सी बात का। और आज की छोटी सी बात

भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब और बिल्कुल कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा जाती है। चलिए इसी पर आधारित आज की एक छोटी सी कहानी हम लेकर आए हैं और ये बिल्कुल आधारित है कि सबके प्रति, सबके लिए दिल में एक भावना होनी चाहिए, जो आज के ज़माने में, आज के समय में कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। एंड्रोक्लीज नामक एक इंसान, एक व्यक्ति रोम के सम्राट का गुलाम था, यानी वो गुलामी करता था राजा के यहाँ। एक दिन वो स्वयं पर होने वाले जुल्मों से बेहद परेशान, बेहद तंग होकर महल से भाग गया और जंगल में जाकर छुप गया। जंगल में उसका सामना एक शेर से हुआ, जो घायल अवस्था में वहां लेटा हुआ था और बार बार अपने पंजे को उठा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ चोट लगी है। पहले तो एंड्रोक्लीज थोड़ा सा डरा, लेकिन फिर सहृदयता, यानी उसके मन में एक भाव उठा कि देखता हूं वो शेर के पास जाके कि उसे हुआ क्या है। शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। उसने कांटा निकाला और कुछ दिनों तक घायल शेर की देखभाल की। एंड्रोक्लीज की देखभाल से शेर बिल्कुल ठीक हो गया। आभार में वो एंड्रोक्लीज का हाथ चाटने लगा, फिर चुपचाप अपनी गुफा में चला गया। इधर सम्राट ने सैनिक एंड्रोक्लीज को ढूंढने के लिए भेजे रखे थे। आखिर एक दिन वो पकड़ा गया, उसे सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट ने उसे भूखे शेर के सामने फेंक दिया और बिल्कुल इंतजार में रहा कि एंड्रोक्लीज को वो शेर खा जाए। जिस दिन एंड्रोक्लीज को शेर के सामने फेंका जाना था, उस दिन का मैदान, मतलब ये सारी जो होने वाली थी सिस्टम, ये एक मैदान में होने वाला था, खुले मैदान में। उस दिन एक मैदान में रोम की सारी जनता को इकट्ठा किया गया वहां पर कि उनके सामने एंड्रोक्लीज को वो देखें। ये दहशत उनके मन में रहे कि जो उनके साथ, उनके खिलाफ जाएगा, उनका क्या हश्र होगा। बस ऐसा ही हुआ। उस दिन सबके सामने एंड्रोक्लीज को भूखे शेर के पिंजरे के सामने फेंक दिया। पिंजरा खोला, शेर एंड्रोक्लीज की ओर बढ़ा, लेकिन उसने उसे मारने के जगह पर वे उसका हाथ चाटने लगा। सम्राट हैरान हो गया, सारी जनता भी हैरान थी और एंड्रोक्लीज भी। थोड़ी देर के बाद एंड्रोक्लीज को ये बात समझ में आ गई कि ये वही शेर था जिसकी घायल अवस्था में उसने देखभाल करी थी। वो भी शेर की पीठ पर हाथ फेरने लगा। ये देखकर सम्राट ने सैनिकों को एंड्रोक्लीज को पिंजरे से बाहर निकालने का संदेश दिया। उसने एंड्रोक्लीज से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि शेर तुम्हें मारने के बजाय तुम्हारा हाथ चाटने लगा। एंड्रोक्लीज ने उसे जंगल की घटना सुना दी और बोला, शेर ने मेरी सेवा और उपकार के कारण मुझे नहीं मारा, लेकिन आपकी सेवा को तो मैं कितने बरसों से आपकी सेवा कर रहा हूं, इसके बावजूद आप मेरी जान लेने पर उतारू हो गए। सम्राट का दिल पिघल गया। उसने एंड्रोक्लीज को आजाद कर दिया और शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया। दोस्तों, ये महज एक कहानी है कि किस प्रकार से आपके मन में अगर किसी के लिए भावना उत्पन्न होती है, कोई ऐसा दरिद्र है, कोई ऐसा दुखी है जिनको आपने सहायता करी, इसीलिए नहीं क्योंकि आप दुनिया को दिखाना चाहते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि सच में आपके दिल में उनके लिए भावना थी। बस भला करते रहें। ये कहानी की सीख बस यही है कि सबके प्रति सहृदयता का भाव रखें, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर पशु। अगर बेजुबान जानवर भी अपनी भावनाओं को समझ पाता है तो इंसान तो भाई, खैर बाकी आप सब समझदार हैं।

0: दोस्तों, जब रास्ते दिखाई ना देना तब विश्वास ही सबसे बड़ी रोशनी होती है। आपका मन क्या कहता है वही आपको सही मार्गदर्शन बिल्कुल कहता है कि आपको कहाँ किस दिशा में जाना चाहिए, मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल, कई बार बातें करते करते शब्द यूं लुप्त हो जाते हैं हमारी जबान से कि हम क्या बताएं। पर चलिए, यही खुशी की बात है कि आप भी बहुत प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं और हम आपको बताते चलें। यहाँ पर भाई हमें कागज कम पड़ रहे हैं क्योंकि इतने सारे फोन कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस, हम क्या बताएं। पर हमें अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार से जुड़ते हैं। चलिए, आपके लिए गाना चलाते हैं और इस गीत के बाद आते हैं आपके डेडिकेशंस को लेकर। और ये गाना भी शायद आपको याद होगा किस तरह से महमूद साहब इस गाड़ी में, बिल्कुल अपनी साइकिल रिक्शा में, क्या गाना गाते हुए आगे बढ़ते हैं। किशोर कुमार साहब ने उनका साथ दिया है और महमूद साहब ने भी इस गाने में अपनी आवाज़ दी है।
1: हुरी हप्पू हप्पू हुरिया।

सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर। आपके फोन कॉल सुबह सवेरे 4028085 पर आते रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल मैसेजेस भी 5251705 पर बिल्कुल बहुत ही प्यार से आप भेज रहे हैं। उषा जी इस वक्त ब्रह्मस्थान से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, थैंक यू सो मच आपकी विशेस के लिए। और बस आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे लोग, अंजनी शिवराज जी भी जुड़ चुकी है, अमृता गंगू वेडे से साथ दे रही हैं और साथ ही साथ बहुत सारे दोस्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी बर्थडे डेडिकेशंस, मानती जी नवलफोंस से जुड़ी हुई हैं, दो प्यारी बहनें अनंती आरती, साथ है बहुएँ उर्वशी अनुषा, साथ है गिरीशा मितिशा भव्य पुष्कल और हितांशु, बाकवा से शोभा जी, अनुषा शर्वीना अवनीश अर्नवी और आपकी प्यारी बहन मोचिदा से प्रेमिला जयमंगल, साथ है आपकी प्यारी सखियां वीना जी और राधा बाल गोविंद, माला सुमारु जी काट्रबोन से जुड़ी हुई हैं, रोज बेल से नवीन लक्ष्मण जी साथ दे रहे हैं, प्यारी पत्नी चित्रा के साथ निवेदिता और सच्चिदानंद जी मेबर्ग से, ललिता और धनराज चरण जी मोडालबेयर से, प्यारी बेटी स्वीटी के साथ न्यू ग्रोव से है राज और अमृता ओबिलर, गांव बुआ से रमेश और प्रीति जी, फ्लोरियाल से है माधुरी जी, गाँव गोब से जुड़ी हुई हैं सुनीता जी, साथ है उनकी तीन प्यारी बहनें विमला अमृता और वीना जी, श्यामा जी हमारा साथ दे रही हैं गाँव गोब से, प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी है नम्रता, केशव और युधीश, आपकी प्यारी सखियां विश्वानी जी और वीना रामफल हमेशा की तरह साथ देते हुए, क्लाविट से है विजय बंधन जी और उनकी प्यारी पत्नी रेखा, तीन प्यारी बहनें चंदनी बिंदु कुमारी और आपके सभी दोस्तों को हमारा सप्रेम नमस्कार। नानी जी प्लेनमायों से जुड़ी हुई हैं, कहती हैं मेरी जो प्यारी बातें हैं आपको बस विटामिन जैसी लगती हैं, आय हाय बस हमारा तो काम है और हम तो यही चाहते हैं कि ये गानों का डोज, बातों का डोज आप तक पहुंचता रहे और इन्हीं के सहारे दिन तरोताज़ा बीते, बस बातें करने की जो ताकत है ना वो सभी में होती है, पर हम कैसे बात करते हैं, कौन से लहजे में बात करते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बस इन्हीं बातों का हमें ख्याल करना है। अनीता लाल जी आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मोडालबेयर से गुग्गा परिवार, नागेश्वर परिवार, इतु परिवार के साथ, क्योपिप से गीता जी भी जुड़ चुकी हैं, लीला जी बुआशेरी से साथ दे रही हैं और वैसे कई सारे लोग हमें 5251705 पर कॉल करते हैं। भाई ये मैसेज के लिए नंबर रखा गया है आपके लिए, कॉल करना चाहते हैं तो 4028085 पर हम अवेलेबल हैं, आपसे बात करेंगे, आपके गानों की डेडिकेशंस भी पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये डेडिकेशन प्रोग्राम तो नहीं है, आपकी पसंद कार्यक्रम में आपके डेडिकेशंस चलते हैं, आपके जो गाने हैं फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम में चलाए जाते हैं। वैसे गाँव बुआ से शिवरानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका सारा परिवार इस वक्त हमारे साथ है, सुनाही परिवार, आपके बेटे सुधीर शर्मा सुनाही, बहू है रोशनी, साथ है पोते शिरीश शिखा शिवान, बेटे राज और आरती जो है गाँव बुआ से, बेटा यश अंजलि कबीर, साथ है आपकी प्यारी बेटी काट्रबोन से शर्मिला सीचन, आपकी नातिन है उर्वशी रघुबा और साथ ही साथ आपकी प्यारी बहन यूके से कृष्णा कुमारी गौरी शंकर और आपके प्यारे छोटे भैया उमाकांत दीपचंद जो है बोबासे के रहने वाले। बॉम्बू से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं लक्ष्मी, अक्षय और आशनी के साथ, बहुत बहुत प्यार आपको लक्ष्मी जी। नवलफोंस से गायत्री जी भी जुड़ चुकी हैं, बेटा अजय, मामी है कल्याणी मोहन, भाभी है शकुंतला मोताइलोंग से और आपकी प्यारी सखी गीता बाई, आशा करती हूँ गीता बाई आप अच्छी हैं स्वस्थ हैं। ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से जुड़ी हुई हैं शीला जी, पति साजन, बेटे विकास और गौसों के साथ, एक्वायो से साथ दे रही हैं मून और पति है चांद, आज जन्म

दिन मना रहे हैं उनके प्यारे बेटे अविनाश। अविनाश, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और आपकी प्यारी पत्नी है नीलम, साथ है निया और निक्षु, आपकी प्यारी बहन अविशा और दामाद जी यानी आपके जीजा आश्ले, भाई है अभिषेक और भाभी जिंसके, आपकी सास सुमा, आपके परिवारों की ओर से आपको बहुत सारा प्यार और बिल्कुल आपकी मम्मी आपको बॉन वॉयज विश करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच, बस साथ देते रहिए। और यहाँ पर एक बहुत ही गर्मा गर्म मैसेज अभी अभी आया है अनीता जी का, जो रोजिल से साथ दे रही हैं, गानों को बहुत एंजॉय कर रही है। थैंक यू अनीता जी, हमेशा यूं ही साथ देते रहिएगा। और रिवजपुर से जुड़े हुए हैं उदय जी, प्यारी पत्नी संगीता के साथ दो प्यारी बेटियाँ स्मृति और कीर्ति, साथ है आपके दामाद नागेश, साथ है केयान और ज्योति जी, सुनील जी बुआशेगी से, गीता जी पोफिया से, तीन बहुओं के साथ, तीन बेटों के साथ आपके प्यारे पति रोहित, साथ है आदित्य, आरव, तानिश और जानवी, प्रेमिला सी गुलाम, कौटमास से हमारा साथ दे रही हैं आपकी प्यारी बहनें रागिनी और साधना बीचू परिवार से, अनसुईया राम के लवन है त्रियोले से, न्यू ग्रोव से साथ दे रही हैं सीधा जी, बहुत बहुत प्यार आपको, कल्याणी जी जुड़ चुकी है रुश्तिया से, खिफकिया में रहने वाली आपकी प्यारी बहन सोनी का जन्मदिन है, उनकी दो प्यारी बेटियाँ शिवानी और संजना और पति हैं संजय की ओर से उनको बहुत सारा प्यार। लीलो जी जुड़ी हुई हैं खोपवास से और बिल्कुल खेतों में काम करने वाले शीला जी, गीता जी और किशोर जी को बहुत बहुत प्यार। और साथ ही साथ आपकी प्यारी बहनें प्रेमावती, कालो, मानो, मानती, आपके भैया है राजन, मोका से जुड़ चुकी है सुदेवी जी आपके पति और बच्चों के साथ, आंटी जी कौफुको से भी गीतों को बहुत एंजॉय कर रही हैं, विद्या जी ओकुले से जुड़ी हुई हैं, कमला जी काटकुको से हैं, रामन और सुमे सिपोल परिवार के साथ, रोज बेल से जुड़ी हुई हैं एवा और शेन के साथ, प्यारी शकुन जी ओकुले से, अमृता जी भी साथ दे रही हैं, पानी की समस्या सभी ओर हैं। चलिए दिल खुश करते हुए आपके इस गीतों को भी हम साथ चलाएंगे। वाकवा से साथ दे रही हैं विश्वानी दुमान, साथ है नीता खिदनी से, जुलिया विलास से, आज आपकी प्यारी बेटी रूमा आपके यहाँ घूमने आई है, उसको बहुत बहुत प्यार। और आज जन्मदिन मना रहे हैं बिल्कुल बाल्मीक जी और शीला जी, वैसे उनकी उनका जन्मदिन था 2 तारीख को, बाल्मीक जी का जन्मदिन 2 तारीख को और शीला जी का 4 तारीख को। पति पत्नी को हमारी ओर से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं, बेटा कमलेश, बहू सावी, पोता सायांश, बहन है राधा, देवी का, माया, ज्योति, रेशमी, साथ है कविता और अमृता, भाई है सत्यानंद, आत्मानंद, चांद और देव, भगिने हैं, भतीजे हैं अक्षय, मानवीर, केशव, सर्वेश, आगासेन, कसले और राजीव, भगिनी है दीपा, हर्षा, आशना, प्रियंका, वंदना और सभी उजागिया परिवार जो है रोजबेल के रहने वाले। चलिए आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन आया है, ढेर सारी खुशियां लाया है, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनों का प्यार पाएं। और इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लगाते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में भोजपुरी समाचारों के बाद, आपका साथ देंगे अगले सेगमेंट में, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: फजर के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार। नमस्ते, सुना भोजपुरी में समाचार। मॉरिशस में पानी के हालत चिंता बढ़ावत बा। जलाशय में औसतन करीब 60% पानी बचल बा, जबकि पिछला बरिस से यही समय स्तर 87% से जस्ती रहल। मोवाकुआ में 36% और लानिकुलिया में खाली 6% पानी बचल बा। आवे वाला महीना में सामान्य के आसपास वर्षा होके के अनुमान बा। बकेर अबले पानी के जो न कमी बा ओकरा पूरा करे खातिर ई शायद काफ़ी कमती रही। हालात परी विचार करे खातिर आज दोपहरिया मंत्री पात्रिक आस्यावादन के अध्यक्षता में वाटर क्राइसिस कमेटी के बैठक लगी। कुतुगाफे में कई गो परिवार आजो पानी और बिजली के इंतजार कर रहा था। वंजा कुछ परिवार के जमीन के कॉन्ट्रैक्ट मिलला करीब 15 बरिस हो गल बा, बाकी जरूरी सुविधा अबले नहीं मिलल। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद CWA और CB के अधिकारी लोगन संगे इलाका के दौरा करलन। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में अब बड़ा बदलाव की जरूरत बा। विश्व बैंक अपन नवा रिपोर्ट में बोले बा कि गन्ना कपड़ा उद्योग और पर्यटन के सहारा देश विकास के कई दौर से गुजरलक। बकेरा अब लोग के बढ़त उम्र, घटत प्रतिस्पर्धा और ये सामाजिक खर्च के बढ़त बोझ नवा चुनौती बन गल बा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जरूरी सुधार करल गल त 2050 ले 37,000 से जस्ती कुशल रोजगार के मौका पैदा हो सकेला। ऑनलाइन सुरक्षा के लेके मेटा के एगो टीम आज और कल मॉरिशस में रही। सरकार के साथ बातचीत में युवा लोगन की ऑनलाइन सुरक्षा, फर्जी प्रोफाइल, खतरनाक कंटेंट और क्रेओल मॉरिशिया में कंटेंट पर निगरानी जैसन मुद्दा पर चर्चा हुई। सरकार चाहत बा की शिकायत मिलने के बाद खतरनाक कंटेंट जल्दी हटावल जाए। पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर के बीच कोनो संबंध बाकी नहीं, अब मॉरिशस में एक अध्ययन करल जाए। WHO और FAO ई काम में सहयोग करी। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में ई मुद्दा पर अंतर मंत्रालय समिति के पहला बैठक भयल बा। कुछ कृषि सामान में तय सीमा से जस्ती पेस्टिसाइड्स के अंश मिलला के बाद नियम में बदलाव पर भी विचार हो सकेला। गाड़ी के एग्जॉस्ट में बदलाव करके जस्ती आवाज निकाली ओला लोग पर कानून अब और सख्त हो गल बा। जनवरी से अक्टूबर ले पुलिस ई तरह के मामला में 289 कंट्रावेंशंस जारी कर ले बा। नवा नियम के तहत साइलेंसर में बदलाव करके जस्ती शोर करे परी 10,000 रुपया ले जुर्माना हो सकेला। दूसर देश के खबर में फ्लाई दुबई के एगो उड़ान में भयल गंभीर घटना के जांच जारी बा। अमरीकी और इजरायली मीडिया के खबर के मुताबिक दुबई से तेल अवीव जात विमान के को पायलट परी कॉकपिट में रखल कुल्हाड़ी से कप्तान पर हमला करे के आरोप बा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा करल गल बा कि को पायलट विमान के तेल अवीव में टकराव के योजना बनाए ले रहल। यात्री और क्रू मिल के को पायलट के काबू में करलन जा और विमान के सुरक्षित सऊदी अरब में उतारल गल। और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले हवन के कुछ धमकी मिलला के बाद ब्रिटेन के और AFFD सैन्य अड्डा से अमरीकी सैन्य विमान हटा देवल गल बा। पेंटागन एकर पुष्टि कर ले बा। हालांकि धमकी कैसन रहल एकर जानकारी अभी सामने नहीं आल। बरतानी सरकार के कहना बा कि और AFFD सैन्य अड्डा सुरक्षित बा। तो ये रहल हमने के भोजपुरी में समाचार। हमने के सुन ला जा, धन्यवाद।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
0: शोक समाचार सुना। विक्टोरिया स्ट्रीट वाल्टोन लॉन्ग माउंटेन में डॉक्टर धनंजय रामरतन उम्र 72 बरी ससन दूजों के डॉक्टर धनंजय रामरतन गुजर गल हवन। वागे SSRN अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर लनन। उन कर्माटी आज दोपहर 2 बजे उन्हीं के घरे लॉन्ग माउंटेन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर खेवक्यो के शमशान भूमि ले जावल जाए। खेमियोनी लागोलेट में 63 बरिस के सुसन त्वाजों के बाबाजी गुजर गल हवन। उनकर माटे आज पजीर के 10 बजे उनकर पत्नी मानती बाबाजी के घरे लागोलेट से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बॉम्बू के शमशान

मम्मी ले जाओ जाए। बुलांजी रोड पिजन लेन मोंटाई ब्लांश में, मोंटाई ब्लांश में 78 बरिस के 78 के विद्यामती सुगंध गुजरगल हवन पैदाइश नाम बुद्राम। उनकर माटी आज फजीर के 10 बजे उन्हीं के घरे मोताल बंश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोताल बंश के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड शमेला फोर पोस्ट फ्लाक में 69 बरिस के 67 के सुमती देवी सोनाराम गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घरे पोस्ट फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लवचुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। शिवाला रोड बाल्मिकलेन तेमिनिस्ट्रियोलेमें 68 बरिस के 68 के मदन लाल जीवन गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घरे तेमिनिस्ट्रियोले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तेमिनिस्ट्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए। मोकेटलेन रिवियानुआ में 49 बरिस के 49 के रेशमा गंगाराम गुजरगल हवन पैदाइश नाम अर्जुन। उनकर माटी आज सांझ के 4 बजे उनकर माता गंगाबाई अर्जुन के घर रिवियानुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रिवियानुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। न्यू मोसलमा गुडलैंड्स में 68 बरिस के 67 के अब्दुल सिद्दीक इमामदी इंतकाल कर गल हवन। उनकर जनाजा आज दिन के 10:30 उनकर पत्नी नरीमन इमामदी के घरे गुडलैंड से निकाल के दफनाए खातिर बेलमो गुडलैंड्स के कब्रिस्तान ले जावल जाए। रॉयल रोड मेबर्ग में 88 बरिस के 98 के सी राम रामदू गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उन्हीं के घरे मेबर्ग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तोंबू मेबर्ग के शमशान भूमि ले जावल जाए। आली दे जाकासिया बुवालों में 78 बरिस के 78 के श्री देवी दयाल श्याम गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा विक्रम शाम के घरे आली दे जाकासिया बुवालों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तोंबू लेन मेबर्ग के शमशान भूमि ले जावल जाए। शापेल लेन लिस्काली में 47 बरिस के 47 के राकेश गंगाम गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर माँ धनवंती गंगाम के घरे लिस्काली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्रेमानियों के शमशान भूमि ले जावल जाए। दागा लेन सेजिया मिल फॉरेस्ट साइड में 66 बरिस के 67 के लालमन मनोज दागा गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर पत्नी मीता दागा के घरे फॉरेस्ट साइड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिगहा के शमशान भूमि ले जावल जाए। रुद कुस्ताल पॉइंट पी मॉमी 71 बरिस के 71 के अनिरुद्ध भगवान गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उन्हीं के घरे पैंतो कानूनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दाऊची के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोभा लेन लाफ्लोगा में 91 बरिस के 91 के श्रीमती कुमारी देवनारायण पैदाइश राम लक्ष्मण गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा उत्तम रघु के घरे लाफ्लोगा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर खौबुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। नंबर 19 सानाशी गार्डन कॉफिरिंगा पॉइंट साप में 62 बरिस के 77 के मनी देवी बंधन गुजरगल हवन पैदाइश नाम बंथुआ। उनकर माटी आज दिन के 9 बजे उन्हीं के घरे पैतृसाब से उठा के अंतिम संस्कार खातिर शिबल के शमशान भूमि ले जावल जाए। विजयलक्ष्मी रोड पुद्रदो हमलेट में 74 बरिस के 67 के अनिरुद्ध आउतो गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर पत्नी सत्याभामा आउतो के घरे विजयलक्ष्मी रोड पुद्रदो हमलेट से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कहो मौते पीतों की शमशान भूमि ले जावल जाए। लॉट नंबर 138 मुसलमान SIT रोजपेल में 68 बरिस के 68 के विद्वंती रितु गुजरगल हवन पैदाइश नाम कानाय। उनकर माटी आज 12:30 आज 12:30 उनकर बेटा अविनाश रितु के घरे रोजपेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मागीजानी रोजपेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टूडी एट हाफ पास नून शोक में डुबल परिवार संगी हमने सहानुभूति प्रकट कर रहे थे जा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, रेडियो मॉरिशस पर एक छोटी सी मुलाकात कार्यक्रम में हम आए हैं आपका साथ देने के लिए पुनः से। और बिल्कुल मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ सुबह का नजराना कार्यक्रम के बीच रखा हुआ ये सेगमेंट एक छोटी सी मुलाकात, जहाँ पर हम जुड़ते हैं और मजेदार गीतों के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे अभिनेता के साथ जिनका या तो फिर जन्मदिन होता है या तो कोई खास बिल्कुल उनकी पुण्यतिथि होती है। तो आज जन्मदिन है 6 अक्टूबर को विनोद खन्ना साहब का। जी हाँ, विनोद खन्ना साहब जो भारत के एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने बहुत कई सारी फिल्मों में काम किया है और बहुत लंबे समय तक वे कैंसर से पीड़ित रहे। और 27 अप्रैल 2017 को मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में उनका निधन हुआ। फिलहाल आज उनका जन्मदिन और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के बीच हम बात करेंगे विनोद खन्ना के जीवनी पर। विनोद खन्ना जी का जन्म जो है वो एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर यानी ब्रितानी भारत जो अभी पाकिस्तान है बिल्कुल वहां हुआ था। और उनका परिवार अगले ही साल यानी 1947 में हुए भारत पाक विभाजन

के बाद पेशावर से मुंबई शिफ्ट हो गए और उनके माता पिता का नाम क्रमशः बिल्कुल कमला और किशन चंद्र खन्ना था। 1960 के बाद की उनकी जो स्कूली शिक्षा रही वो नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने सिद्धेम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक प्राप्त किया था और इसी के साथ उनको बहुत सारी एक्सपीरियंसेस प्राप्त हुई और उनके बिल्कुल उनकी शादी भी हुई आगे चलकर। उनके तीन पुत्र और एक पुत्री जिसमें अक्षय खन्ना, राहुल खन्ना जो कि दोनों फिल्म के अभिनेता हैं रहे हैं। साथ ही साथ फिल्मी करियर की जब हम बात करें तो उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1968 में आई फिल्म मन का मीत से की थी जिसमें उन्होंने खलनायक यानी एक नेगेटिव अभिनय किया था और कई फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खलनायक के किरदार निभाने के बाद 1971 में उनकी पहली एकल मूवी यानी लीड रोल वाली हीरो फिल्म आई जो थी हम तुम और वो। कुछ वर्षों के बाद उनकी फिल्म जी हाँ कुछ वर्ष के फिल्मी संन्यास जिसके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए थे और बाद में उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी सफलतापूर्वक खेली, किरदार निभाया और 2017 तक वे फिल्मों में एक्टिव रहे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि साल 1997 और 1999 में वे दो बार पंजाब और गुरदासपुर क्षेत्र में बीजेपी के सांसद में चुने गए थे और जबकि 2002 में वे संस्कृति और पर्यटन के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। इसके बाद सिर्फ 6 माह यानी 6 महीनों के बाद उनको अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों के मंत्रालय के राज्य एक राज्य मंत्री भी बना दिए गए। तो चलिए उनके कुछ ऐसी गाने, कुछ ऐसी फिल्मों के गीत हैं जो बहुत ही सुप्रसिद्ध रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में विनोद खन्ना साहब की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फिल्म आई थी मेरे अपने जिसमें वे नजर आए थे और एज अ लीड रोल काफी सारे एक्टर्स इसमें साथ नजर आए थे जो आई थी 1971 में। और उसी साल में एक और एक्शन ड्रामा मूवी आई मेरा गांव मेरा देश जिसमें वे एक मिलिट्री ऑफिसर के रोल में नजर आए थे और उसके तुरंत बाद 1973 में फिल्म आई अचानक। खन्ना साहब यानी विनोद खन्ना साहब बहुत ही मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे 1970s में भारतीय सिनेमा के जगत में। वे एक एक्शन हीरो के बतौर नजर आने लगे और बॉक्स ऑफिस में उनको अमिताभ बच्चन की पारी पर गिना जाने लगा तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। मेरे अपने फिल्म चलिए किशोर कुमार साहब की आवाज में रखा हुआ ये गाना आपको सुनाते हैं।

बी। गुलजार साहब के निर्देशन में था ये फिल्म थी मेरे अपने 1971 में, और बिल्कुल बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पांस मिले गए थे इस फिल्म के लिए। और ठीक इसके तुरंत बाद उसी साल नजर आए थे वे नजर आए थे फिल्म मेरे गांव मेरे देश, मेरा गांव मेरा देश। जी हाँ, इस फिल्म में हालांकि वे नजर आए थे धर्मेंद्र साहब और आशा पारेख के साथ, जो कि लीड रोल में थे, और उन्हें दिया गया था एक छोटा सा रोल।

फिल्म मेरा गांव मेरा देश, और इस फिल्म में बिल्कुल धर्मेंद्र साहब और आशा बारेक नजर आए थे लीड रोल में, और कुछ समय तक उनकी कई सारी एक्शन मूवीज में उनको नेगेटिव किरदार दिया गया था, पर एक समय आया जब उन्हें रोमांटिक फिल्में भी दी जाने लगी, और बिल्कुल सबसे बड़ी हिट रही दो यार। साथ ही साथ क्राइम ड्रामा फिल्म गुलजार साहब की अचानक 1973 में जो आई, बेस्ड रही ये केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस पर आधारित, ये एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म रही। 1974 के समय में विनोद खन्ना साहब ने फिल्म हाथ की सफाई में काम किया, जिसमें उनके साथ नजर आए थे रणधीर कपूर और हेमा मालिनी, और इस फिल्म में उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। और साथ ही साथ हाथ की सफाई फिल्म के बाद चार ऐसी मूवीज आई जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही, इम्तिहान, पत्थर और पायल, प्रेम कहानी और कैद। 1970s से लेकर 1976 तक उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया।

जैसे कि हेरा फेरी, जिसमें वे नजर आए थे अमिताभ बच्चन, सायरा बानो और सुलक्षणा पंडित के साथ। और ये भी एक तरह से देखा जाए तो ब्लॉकबस्टर हिट रही और इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर की ओर से। उसके बाद उन्होंने दो ऐसी मेजर फिल्म्स में काम किया जो थी शंकर और शंभु, साथ था नहले पे दहला, और कई सारी एक्शन मूवीज जैसे खून पसीना, जिसमें वे नजर आए थे एक बार फिर बच्चन साहब और रेखा के साथ, और मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी को हम कैसे भुला सकते हैं। अमर अकबर एंथनी में बिल्कुल वे नजर आए थे एक ऐसे अद्भुत रोल में, और पुलिस, जी हाँ, पुलिस का रोल उन्होंने किया था। बहुत ही मज़ेदार फिल्म थी और इस फिल्म में वे नज़र आए थे, उन्होंने पेयरिंग की थी शबाना आज़मी के साथ।

जहां पर लोगों को उनका ट्रायो नजर आ रहा था, बहुत ही पसंद आ रहा था. बिल्कुल 1977 में भी आई थी फिल्म परवरिश, जहां पर नजर आए थे शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन साहब और विनोद खन्ना साहब, और इन तीनों को कास्ट किया था मनमोहन देसाई ने एक एक्शन क्राइम मूवी में. और इस फिल्म में नीतू सिंह और शबाना आजमी एक बार फिर उनके साथ नजर आई थी. चलिए इसी फिल्म का गीत आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज में. वैसे ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर में गिनी गई. और आपको ये भी याद दिलाते चले उसके तुरंत बाद, जी हाँ, राज सिप्पी साहब की क्राइम थ्रिलर मूवी इनकार, जो हाई एंड लो जापानीज मूवी पर का रीमेक थी. उसके बाद कई सारी फिल्में, महाबदमाश, चोर सिपाही और आधा दिन आधी रात.

रोमांस करना तो वे जानते थे, पर अनफॉर्चुनेटली उनको सारी फिल्में जो मिलती थी नेगेटिव रोल्स वाली। पर चले कोई बात नहीं, ये फिल्म के माध्यम से भी उन्होंने बहुत सारे दिलों में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया।

भाई प्रेम से जगह बनाना शुरू कर दिया और इसी के बाद कई सारी मेगा ब्लॉकबस्टर्स में उन्होंने काम किया, खासकर राज खोसला की वुमेन ओरिएंटेड ड्रामा मूवी मैं तुलसी तेरे आंगन की और प्रकाश मेहरा की मैग्नम ऑपस, मुकद्दर का सिकंदर में भी एक्शन ड्रामा मूवी में उन्होंने काम किया था और ये भी चार्ट बस्टर लिस्ट में आई थी, सिक्स्थ बेस्ट सेलिंग हिंदी फिल्म 1970s के जमाने की। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवीज को हिट बनाने में अपना सहयोग दिया, खून की पुकार, खून का बदला खून, सरकारी मेहमान जैसी तीन सेमी हिट मूवीज एक के बाद एक उन्होंने दी और साथ ही साथ सुनील दत्त साहब की डाकू और जवान जिसमें वे नजर आए थे रीना रॉय और लीना चंदावरकर के साथ, ये भी काफ़ी सुपरहिट मूवी।

1979 में महेश भट्ट की मूवी, जो कि एक बहुत ही मॉडरेट सक्सेस मूवी रही, लहू के दो रंग। पर उनके और भी मूवीज थी, जैसे मीरा और युवराज, जो उतना अच्छा कमाल नहीं दिखा पाई। रवि चोपड़ा की मल्टी स्टारर मूवी द बर्निंग ट्रेन में भी वे नजर आए थे। धर्मेंद्र साहब साथ नजर आई थी, हेमा मालिनी, परवीन बाबी और फिरोज खान की मूवी कुर्बानी में भी उन्होंने जीनत अमान के साथ काम किया, जो कि एक बहुत ही मजेदार सक्सेसफुल फिल्म रही। और कुर्बानी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी प्राप्त हुआ, और कई सारे फिल्मी गीतों में कल्याण जी आनंद जी पर जो कंपोज किए गए गाने थे, आप जैसा कोई, लैला ओ लैला और हम तुम्हें चाहते हैं जैसी फिल्मों के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा प्रशंसा मिली। और साथ ही साथ उन्होंने चेतन आनंद की मूवी कुदरत में भी

0: सदा चुप रहना जाने।
1: विनोद खन्ना साहब ने 82 में फिल्में, बहुत सक्सेसफुल फिल्में दी, राजपूत, इंसान और ताकत, पर कहीं ना कहीं अंदर की जो ताकत है वो कम होती हुई नजर आई और इसीलिए उन्होंने स्पिरिचुअल ब्रेक लिया और रजनीशपुरम यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने 5 साल का स्टे वहां पर बिल्कुल निर्धारित किया और साथ ही साथ उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा वहां पर शुरू की। 1987 में उन्होंने किया कमबैक मुकुल आनंद की मूवी इंसाफ में डिम्पल कपाड़िया के साथ, वे लीड रोल में नजर आए थे और उसके तुरंत बाद वे नजर आए दयावान फिल्म में जो और साथ ही साथ आखिरी अदालत जो उतना कमाल नहीं दिखा पाई थी।
2: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ।
1: इस्माइल श्रॉफ की मूवी सूर्या एंड अवेकनिंग में भी वे नजर आए थे, यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी में वे साथ नजर आए थे श्रीदेवी और ऋषि कपूर के साथ, और इस फिल्म के गीतों ने भाई कहीं ना कहीं लोगों को झंझोड़ के रख दिया। 1980s के ज़माने की ये बहुत ही मज़ेदार मूवी रही जहां पर उनको दिया गया था बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड और साथ ही साथ खन्ना साहब को नॉमिनेट किया गया था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। और बिल्कुल दयावान का ये गाना कितना लाजवाब रहा, सुरेश वाडकर साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गीत। और वैसे 90s और 96 के अंतर्गत उन्होंने कई सारी फिल्में जैसे मुकद्दर का बादशाह, पुलिस और मुजरिम, गुलजार साहब की लेकिन, और साथ ही साथ उन्होंने 1997 में अपने सुपुत्र अक्षय खन्ना को लॉन्च किया हिमालय पुत्र में। और उसी दरमियान खन्ना साहब को यानी 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ।

जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना साहब की मूवीज पर और प्रभुदेवा साहब की एक्शन थ्रिलर मूवी वांटेड में भी वे नजर आए थे, साथ ही साथ वे नजर आए दबंग मूवी में 2010 में, जो कि एक बहुत ही मजेदार ब्लॉकबस्टर हिट रही। 2012 में दबंग दो और सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया था। 2013 में रमैया वस्तावैया, 2014 में कोयलांचल, 2015 में दिलवाले और उनकी आखिरी मूवी शेखर सूरी की गन्स ऑफ बनारस 2020 में जो रिलीज हुई उनकी मृत्यु के 3

अंत में विनोद खन्ना साहब कई समय तक ब्लैडर कैंसर से पीड़ित रहे और जिनका इलाज सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर गिरगांव में चलता रहा और मुंबई में 2 अप्रैल 2017 को दिन के 11:30 बजे, जी हाँ, माफ कीजिएगा, 27 अप्रैल को, जी हाँ, 27 अप्रैल को 2017 में वो कैंसर से जूझते हुए अपनी अंतिम सांसें उन्होंने ली।

0: वैसे आपको ये भी याद दिलाते चले कि उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, और खासकर दादा साहेब फाल्के का अवार्ड भी उन्हें दिया गया। साथ ही साथ 1975 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हाथ की सफाई, 97 में वे नॉमिनेट हुए थे हेरा फेरी के लिए, 1997 में बेस्ट एक्टर के लिए फॉर फिल्म शक, 1979 में मुकद्दर का सिकंदर, और साथ ही साथ 1981 में कुर्बानी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ
0: 1981 में उनको नॉमिनेट किया गया था। 1990s में भी वे नॉमिनेट हुए थे चांदनी के लिए फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, 1999 में लाइफ टाइम अवार्ड उनको प्राप्त हुआ फिल्मफेयर की तरफ से, और 2005 में स्टारडस्ट ने उन्हें रोल मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, 2007 में उन्हें जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, और 2017 में दादा साहेब फाल्के का अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ। ये थी उनकी जिंदगी पर कुछ बातें। फिल्म दयावान का गीत हम आपको सुनाते हैं। अभी जो गाना आपने सुना वो था फिल्म चांदनी से लिया हुआ, और पंकज उदास की आवाज में रखा हुआ ये आखिरी गाना। भाई उनकी फिल्में देखकर आज भी प्यार आता है, उनके डिंपल्स पर कितनी जवां धड़कने तेज हुई होंगी। डिंपल यानी उनका छोटा सा एक बट चिन्ह हुआ करता था, शायद आपको याद होगा।
2: तुम पे प्यार,
0: और बिल्कुल कहते हैं ना कि जो एक्टर्स होते हैं जो अपनी जगह बना लेते हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि हम उनके बच्चों में ढूंढते हैं। और अक्षय खन्ना भी कहीं ना कहीं भले उनके पिता की तरह उतने पॉपुलर नहीं हुए, पर बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए आज वे भी कई फिल्मों में अपनी जगह बना चुके हैं। तो चलिए ये आखिरी गाना रहेगा आज के इस सेगमेंट का, और अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम के साथ, जिसे प्रस्तुत करेंगी किरण जानकी। थोड़ी ही देर में हम स्वागत करते हैं उनका।

बॉलीवुड की यही किस्मत की हमने उनको पाया। और चलिए उनके प्यारे प्यारे गीतों के साथ, प्यारे प्यारी अदाकारी के साथ वे

0: सभी फैंस के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। और आज उनका जन्मदिन, बिल्कुल श्रद्धांजलि के रूप में ये कार्यक्रम, और साथ ही साथ चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर हमें रोकना पड़ रहा है। समय हो चला है हमारे अगले सेगमेंट के साथ जुड़ने का, किरण जानकी का साथ। आइए स्वागत करते हैं किरण जानकी का हमारी धरोहर कार्यक्रम में।
1: 819 kHz. This is Radio Mauritius. Radio Mauritius.
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। हर 5 अक्टूबर के विश्व शिक्षक दिवस मनावल जाला, और काल ई दिन बहुत धूमधाम से सब शिक्षक लोग के नाम, सब उ लोग के जो छात्र हवन जा मनेलन जा। और वर्ल्ड टीचर्स डे एगो ऐसन दिन है जहाँ पर हर प्रकार के गुरु के सम्मानित करल जाला। संत कबीर बोल रहे हवन, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब कि गुरु और खुदा दोनों सामने खड़ा रही, त सबसे आगे हम गुरु के पाँव छुअब, कहे कि गुरु ही हमने के भगवान के परिचय देले हवन, ईश्वर के ज्ञान देले हवन। एक तरह से धरोहर के बारे में संस्कृति, परंपरा, कला और सांसारिक व सामाजिक शिक्षा हमने के गुरु से ही मिलल बा। गुरु के रूप भी अनेक बा, जैसे कि आचार्य, पंडित, मौलाना, माँ बाप, दादा दादी, ऋषि मुनि और प्रेरक। मतलब कि उ लोग जे लोग हमने के जिए के प्रेरणा देवेलन जा, जे लोग हमने के एगो ऐसन मार्गदर्शन देवेलन जा जेकर से हमने के सही और गलत के पहचान होवेला। आज के आधुनिक दुनिया में गुरु के रूप और भी बड़ा और भी विस्तृत हो गल बा। महात्मा गांधी बोल रलन कि शिक्षा और राजनीति बहुत बड़ा औजार है जीवन सही मायना से जिए खातिर। आप तो जानेला कि हमने के परदादा परदादी या दादा दादी लोग ही शिक्षित नहीं रलन सा, और कितना दुख और अत्याचार झेल ले हवन सा। अज्ञानता सबसे बड़ा दोष है। शिक्षित और साक्षर नहीं रहबा तो तू खुद अपन अधिकार के बारे में न जनबा, न सकबा अपन अधिकार जतावे और ओकर अधिकार में लड़े। बड़ा आदमी लोग बोले हवन जा कि शास्त्र में बोलल गल बा कि जब तोहर संगे धन संपत्ति और कोनो साथी नहीं रही, उ बखत जब तू विदेश में हवा, अकेले भ्रमण करत हवा, तब जोन अकेला गुरु हर कदम पर तोहर साथ दे, उ है शिक्षा। ई सब कारण है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया मजदूर लोग के बुरा दशा देखलन दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस में। भारत में तो देख ही रलन, तो उ पहला बात बोलन कि चाहे सब लड़का लोग के पढ़ावे के, शिक्षा देवे के, तभी वो लोग सकियन सा अपन अधिकार के हक में लड़े। और उ भेजलन मनीलाल डॉक्टर के, और मॉरिशस में बैठका खुलल, घर घर में पढ़ाई शुरू होल, हस्ताक्षर करे के हर एक जना के प्रशिक्षित करा गल। बैठका से जोन मुफ्त शिक्षा शुरू होल, उ आज विश्वविद्यालय तक पहुँच गल। हमें के सौभाग्य देखा कि आज हमने के देश में शिक्षा खाली मुफ्त ही नहीं है, बल्कि अनिवार्य है, ओब्लिगेटरी है। छोटा से हमने देख ले आल है सा कैसे माँ बाप हमने के स्कूल भेजे पर, रात दिन अच्छा से पढ़े पर कितना जोर दिले हवन जा, और ओकर फल आज देखा हमने के देश अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एगो शेर के रूप में ताकतवर बन गल बा। ये सब शिक्षा और शिक्षक के बदौलत। शिक्षक दिवस के दिन उ तमाम गुरु लोग के श्रद्धांजलि और नमन जे लोग बैठका से मुफ्त शिक्षा शुरू कर लन जा हमने के देश में, उ सब आध्यात्मिक गुरु पंडित मौलाना के नमन जे धर्म के ज्ञान दे लन जा। हर परिवार के बुजुर्ग के प्रणाम जे लोग परमात्मा के और साथ में धर्म, संस्कृति, परंपरा, धरोहर के बारे में लड़का लोग के

0: खैलंजा और स्कूल के सब शिक्षक लोग के शुभकामना जे लोग देश के लैका लोग के काल के जिम्मेदार नागरिक बनावत हवंजा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ।
2: तो किरण जानकी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल काल टीचर्स डे मनावल गए तो सब विश्व भर के टीचर्स लोग के बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत वंदन करब जा। और जे ऊ न रहते तो आज हमनी के मार्गदर्शन करत हमनी के। तो चला आज के है अंतिम गीत के साथ जोड़ब जा है गीत बिस्वानी दीपवा के आवाज में। अनपढ़ न रहिए पढ़ते रहिए गुरु के ज्ञान हमनी के बहुत काम लगेला। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो चला यही गीत हमें जोड़ेगा 9 बजे के समाचारों के साथ। और 9 बजे के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा जहां पर आपका साथ देंगी सुमिता सरकार जिसका सीधा प्रसारण रेडियो मर्शस के साथ साथ एमबीसी के तीसरे चैनल पर आप देख पाएंगे। हमारी और आपकी मुलाकात होगी अब 10 बजे के समाचारों के बाद। तब तक के लिए बस शुभ दिन, साथ देते रहिएगा।

0: 24 hours a day.
1: मंगलवार 6 अक्टूबर घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर आस्था आ चुकी है। आस्था, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का 9 बजे के बुलेटिन में। मॉरिशस में पानी की कमी लगातार चिंता बढ़ा रही है। जलाशयों में औसतन करीब 60% पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय यह स्तर 87% से ज्यादा था। मोवाक्वा सिर्फ 36% और लानी

कुलिया महज 6% भरा हुआ है। आने वाले महीनों में बारिश सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन इससे पानी की मौजूदा कमी पूरी होने की उम्मीद बहुत कम है। हालात पर चर्चा के लिए आज दोपहर बाद मंत्री पात्रिक आस्यावादन की अध्यक्षता में वाटर क्राइसिस कमेटी की बैठक लगने वाली है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो मॉरिशस की इकोनॉमी को अब बड़े बदलावों की ज़रूरत है। विश्व बैंक ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि गन्ना, कपड़ा उद्योग और पर्यटन ने लंबे समय तक देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब बढ़ती उम्र की आबादी, कमज़ोर होती प्रतिस्पर्धा और बढ़ता सामाजिक खर्च अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रहे हैं। विश्व बैंक ने ज़्यादा आमदनी देने वाली सेवाओं और डिजिटल सेक्टर को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। उसके मुताबिक जरूरी सुधार किए गए तो 2050 तक 37,000 से ज्यादा कुशल रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मेटा की एक टीम आज मॉरिशस में अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है। बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने, फर्जी प्रोफाइल्स पर रोक लगाने और खेल मोरिशिया में कंटेंट की निगरानी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि शिकायत मिलने पर गलत या खतरनाक कंटेंट को जल्द हटाया जाए और पुलिस को जांच में बेहतर सहयोग मिले। विदेश स्तर की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें ये खबर, फ्लाई दुबई की एक उड़ान में हुई गंभीर घटना की जांच जारी है। अमरीकी और इजरायली मीडिया के मुताबिक दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान के को पायलट पर कप्तान को कुल्हाड़ी के से घायल करने का आरोप है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वो विमान को तेल अवीव में टकराना चाहता था, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यात्रियों और क्रू ने को पायलट को काबू में किया, जिसके बाद विमान को सुरक्षित सऊदी अरब में उतारा गया। तो इन खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Your news on NBC Play.

0: आज की चर्चा।
1: मंगलवार 6 अक्टूबर, आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं इस समय रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर। आपको ये भी याद दिला दें कि इसी कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे RM3 रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही दोपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। साथ ही इसका प्रसारण हो रहा है इस समय हमारे MBC प्ले ऐप पर भी। तो चलिए, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। और आज एक ऐसा विषय हम लेकर आए हैं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल यानी कि कल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया। और टीचर की भूमिका की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस कल मनाया गया और हर एक व्यक्ति के जीवन में टीचर का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। 1994 से यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि किस तरह से जो है शिक्षकों के अधिकारों पर बात की जाए, उनकी जो जिम्मेदारियां होती है, उनकी जो परिस्थितियां होती है और किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से जो है उनके करियर को डेवलप किया जाए ताकि वो स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाए। और कहीं ना कहीं शिक्षा हमारे जीवन की नींव होती है। एक अच्छी शिक्षा हमें जीवन में बहुत दूर तक ले जाती है। और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीमती मीला धनुकचंद जी जुड़ी हुई हैं, जो खुद शिक्षा के क्षेत्र में 50 वर्षों से भी ज़्यादा का इनका अनुभव रहा है। आज वो रिटायर हो चुकी है लेकिन शिक्षा का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा है और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ और समाज में कई गतिविधियों में जो है शिक्षा को लेकर अपना योगदान आज भी देते रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीला जी, हमारे इस कार्यक्रम में आप जुड़ी। नमस्कार, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, बड़ी प्रसन्नता हुई और आपसे मिलकर और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को सादर सप्रेम नमन है। मैं सोचती हूँ कि आज का विषय चिरकालीन विषय है क्योंकि शिक्षा की जो बात है वो सदा होती रहती है। मनुष्य चाहे स्कूल में जाए या कहीं भी हो तो वो सीखता ही रहता है प्रकृति से भी। जबकि स्कूल की कोई व्यवस्था थी ही नहीं, तब से भी मनुष्य सीखता ही आ रहा था। हालांकि वो उसको कोई नाम नहीं देता था। समुद्र के पास जाकर लहरों को देखकर घबरा जाना और ये सोचना कि अपनी सुरक्षा की आवश्यकता है, वो भी एक प्रकार की सीख थी। सो अनेक प्रकार से मनुष्य सदा सीखता ही रहता है।
1: बिल्कुल। और गुरुजनों की बात करें तो हमारी संस्कृति में सदैव गुरुजनों को एक उच्च स्थान दिया गया है। जिस तरह माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं, वैसे ही हमारे शिक्षक भी हमारे लिए जो है पूजनीय होते हैं और उनका सम्मान हमें सदा ही करना चाहिए। क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम यहाँ पर हैं। तो मीला जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी के विश्व शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई या इसके बारे में सोचा गया?
2: यह तो बड़ा ही आपने बताया 1994, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 1966 में एक आपसी ILO का आपसी उनकी एक मीटिंग लगी थी जिसमें उन लोगों को लगा कि विशेष प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं संसार में उन सब में से एक और है जो कि अध्यापक है और अध्यापनकार है। क्योंकि शिक्षा के बगैर मनुष्य जो है वैसा ही रहेगा जैसा कि उसने जन्म लिया, और शिक्षा के द्वारा उस प्रकार के समाज में रहने के बाद मनुष्य जो है बदलता है, परिवर्तित होता है, उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो पेरिस में उन लोगों ने एक अग्रीमेंट पर साइन किया और वही जो है उसकी घोषणा आपने बताया 1994 में उसकी घोषणा हुई। तो इसका महत्व है, क्यों है? इसलिए कि कुछ भी कहा जाए, जितने भी एजुकेशन सिस्टम संसार में बनाए जाएंगे, जहाँ भी एजुकेशन होता है वहाँ पर दो की स्थिति अवश्य होती है।

0: एक तो सीखने वाला जो कि विद्यार्थी होता है और वो जो शिक्षार्थी होता है माने कि शिक्षक जो पढ़ाता है, दोनों है। तो चाहे वो बोलकर पढ़ा रहा है, चाहे वो अपने सामने एक पुस्तक लेकर कोई किसी प्रकार की शिक्षा दे रहा है, या मनुष्य किसी के हाव भाव को देखकर सीखता है। जैसे घर में भी बच्चे होते हैं तो माँ बाप को देखकर कितनी सारी चीज़ें अपने आप सीख जाते हैं। छोटी सी बच्ची होती है, गुड़िया लेकर खेलती है, क्या खेल खेलती है कि घर है, खाना बना रही है, गुड़िया को खिला रही है, क्या है,
1: माँ को देख रही है,
0: माँ को देख रही है। तो वो सारा ऑब्जर्वेशन के द्वारा होता है। वैसे भी अगर आप साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो सर्वप्रथम हम जो कुछ भी ज्ञान अर्जन करते हैं वो देखकर ही होता है। वो तो पशु पक्षी और सबका होता है, पर उनका एक लिमिट होता है। और मनुष्य के पास, क्योंकि हमारी बुद्धि है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन शक्ति है हमारे मस्तिष्क में, इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली दिमाग उसके पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वही है, क्योंकि वो अपने नेचर के अनुसार नहीं जीता है, वो तो देख देख कर जीता है। और इसकी खूबी भी है और इससे परेशानी भी है कि दूसरों को देखकर उनकी तरह जीना, मतलब कि आप वो हैं ही नहीं जो कि आपको होना चाहिए और जो आप हैं वास्तव में। तो व्हाट वी आर उसको मानकर चलने में और उसके साथ जीने में मनुष्य जो है कृत्रिमता से दूर हटके जो है अपने आप अपने आंतरिक शक्तियों को उभार सकता है। तो इसलिए घर में माँ बाप को देखकर बच्चा बहुत कुछ सीखता है,
1: कुछ सीखता
0: समाज में भी देखकर बहुत कुछ सीखता है। और आज की बात मत बोलिए, आज तो हमारा गुरु जो है इंटरनेट गुरु है, सो तकनीकी और भी आगे बढ़ गई है और इंटरनेट का जमाना था हम कह सकते हैं, अब तो AI हमारा सर्वे सर्वा गुरु है। लोग करते क्या है, AI को टैप करते हैं और सारा ज्ञान, क्यों हम उसको सर्वे सर्वा गुरु बोल रहे हैं, क्योंकि सारे ज्ञान का उसको संयोजित करके फिर उसमें से छांट करके वो आपको वही उत्तर देता है जिसको जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि हमारी तकनीकी कहाँ पच चुकी है। और ये हमारे टीचर्स, हमारा जो अध्यापकों का जो समूह है, अध्यापकों का जो संसार है, उसको बहुत बड़ा चैलेंज देता है। क्योंकि उसके पास परफेक्ट आंसर्स है ढूंढा हुआ, तो कि जो हमारे अध्यापक होते हैं उनको तो हर चीज के लिए सोचना पड़ता है,
1: पर तैयारी करनी पड़ती है।
0: हाँ, पर एक बात है, अध्यापक आपको ज्ञान देगा, देखिए माता पिता तो ज्ञान देते ही हैं, अध्यापक आपको ज्ञान देता है, जीना सिखाता है, और जीना सिखाने के साथ साथ वो धर्म की ओर माने कि किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए वो सारा कुछ धीरे धीरे आप में वो डालता है, फूंकता जाता है आपके कानों में, आपके मस्तिष्क में, आपके व्यवहार में,
1: आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है
0: एकदम, कि आप भविष्य में किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकेंगे उसके लिए आपको तैयार करते हैं। पर आज के संदर्भ में तो चैलेंज बहुत बड़ा है।
1: बिल्कुल, और आपने AI की बात की, कहीं ना कहीं आजकल के बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सारी जो उन्हें चीज़ों की आवश्यकता है, किसी भी सर्च कर रहे हैं कोई टॉपिक पर, वो जो है ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो ये भूल जा रहे हैं कि AI जो है या फिर ये जो टेक्नोलॉजी जो वो सिर्फ उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो ज्ञान नहीं है जो उसे गुरु से मिल सकता है। इसलिए तो शिक्षकों की भूमिका को आजकल के बच्चे उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे आजकल सोचते हैं कि AI के जरिए मैं जो कुछ जानता हूँ शायद अपने गुरु से ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन ये अपने आप में भूल है। गुरु का अनुभव अपने आप में बहुत मायने रखता है।
0: एक इसकी बहुत अच्छी बात है ये कि इसको पहले ये तो हमको समझना है कि उसको AI का मतलब है ही क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल माने कृत्रिम, माने जितना भी ज्ञान है वो उस व्यक्ति का नहीं है जो आपके पास वो वहन करता है, आपको वो ज्ञान बांट रहा है आपके साथ, तो उस व्यक्ति का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो स्वानुभूत होता है, जिसको आपने स्वयं अनुभव किया है, उसके द्वारा आप जो भी सिखाते हैं वो बात अलग होती है। अब आप देखिए हमारे वैदिक ग्रंथों में, मानिए आप वेदों को ले लीजिए, तो वेदों में जितना भी ज्ञान दिया गया वो सारा ज्ञान जो है उनके अनुभव के आधार पर था। ये जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कितनी तपस्या की होगी कि उनका चित्त है, कॉन्शियसनेस है, वो इतना पवित्र बन गया कि उनकी कनेक्शन जो है जितना कॉस्मिक नॉलेज है उसके साथ हो गया, और फिर उस ज्ञान

0: को वो उतारते हैं
1: जी।
0: अब उस ज्ञान को वो जब उतारते हैं फिर उसको भाषा में वहन करते हैं, वाणी में वहन किया, इसके बाद उनको लोगों ने समायोजित किया और फिर वहन किया। तो आप कल्पना कर सकती हैं कि सच्चा ज्ञान वो है जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा, स्वयं के एक्सपीरियंस के द्वारा किसी व्यक्ति में पैदा होता है और

0: एक लेबोरेटरी में बैठकर उसका प्रयोग करता है, प्रयोगशाला की जो बात होती है वो बात ही अलग होती है। इस तरह हम जब भोजन बनाने के लिए, आप YouTube में देखिए इतने प्रकार का आपको दिखाया जाता है, मान लीजिए आपको केवल सुनकर करना होता तो बात अलग होती
1: जी।
0: तो वो एक टच है ज्ञान के साथ साथ आपके अंदर एक प्रकार का जो संस्कार है, वो संस्कार जो है गुरु के द्वारा ही हो सकता है। वो मैंने एक बार ये ट्राई किया, मैंने कहा कि देखें तो कि ये जो AI वाले हैं हंसते भी हैं, किस तरह बोलते हैं, उनमें वो जो मानवीय स्वभाव है, हमारी जो भावना है उनको समझ सकते हैं, पर बात अलग है। कृत्रिम है सो कृत्रिम है, आप कुछ भी कहिए। तो हमारे जो शिक्षक हैं वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे शिक्षक के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि भाई उनको प्रूफ करना है कि हाँ मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। तो सारे शिक्षकों को रीलर्न करना पड़ रहा है कि हमने ऐसा पढ़ा था, हमने ऐसा पढ़ाना सीखा था, अब वो बदल रहा है, क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, दोनों बदल रहे हैं।
1: और अभी के समय में चैलेंजेस इतने हैं कि हर रोज कुछ नया आ रहा है
0: एकदम,
1: और उस नएपन को अपनाना अपने आप में चैलेंजिंग होने के बावजूद हर शिक्षक अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है। आपसे हम अगर सरल शब्दों में आप हमें बता पाए ये शिक्षक कौन होता है और इनकी भूमिका क्या होती है?
0: शिक्षक सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हम सभी जानते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शिक्षक के प्रति इतना जो आदर सम्मान और ये जो भावना है पूजनीय है, शिक्षक पूजनीय है क्योंकि वो हमको अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए असतोमा सद्गमय आदि जो मंत्र हैं वो इस बात को वहन करते हैं, पर सत्य की ओर ले जाएगा कौन, रोशनी की ओर ले जाएगा कौन। वो जलता है अध्यापक, स्वयं दिया दीपक की तरह है, वो स्वयं जलेगा और अपनी रोशनी जो है दूसरों की ओर फैलाएगा। पर ऐसा थोड़ी ही है कि उस सीखने वाले के अंदर रोशनी नहीं है, उसमें भी है, तो जैसे रूसो बोलता है कि उसको वैसे ही छोड़ दो। हमने अभी अभी हाल में पढ़ा, एक संत नामदेव जी है, मैं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा उसको वैसे ही जीने दो बच्चे को, फ्लो एवरीवन हर किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि अगर वो अपने अंदर की बात को व्यक्त नहीं करेगा तो शिक्षक कैसे जानेगा कि उसको किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षक का महत्व तो ये है कि वो आपका भविष्य बनाता है। गुरु इसलिए कहते हैं, गुरु का शब्द ही मतलब जो बड़ा है, नहीं तो उसका उल्टा जो अर्थ लेंगे गुरु लघु, लघु का माने छोटा। सो हम जो सीखने वाले हम छोटे हैं और जो सिखाने वाले हैं बड़े हैं।
1: और कहीं ना कहीं गुरु की बात करें तो गुरु जो है अपने स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ को भी पहचानता है, उसकी वीकनेस को भी पहचानता है और उसी तरह से जो है उसे सिखाने का प्रयास करता है ताकि बच्चा जो है ज़्यादा समझ पाए।
0: एकदम एकदम, क्योंकि जब तक आप बच्चे की सीखने की गति, उसकी मानसिक स्थिति और उस समय जब वो आपके सामने बैठा होता है, चलिए स्कूल की बात करते हैं कि वो आपके सामने बैठा है, आप क्या जानते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या जानते हैं कि उसने क्या सहा है सुबह, वो स्कूल आने से पहले किस प्रकार की स्थिति से गुजरा है। आप सभी जानते हैं आजकल हम लोग बुलिंग की बहुत चर्चा करते हैं, है ना, तो रास्ते में आते हुए उस बच्चे ने क्या क्या सहा है और उसकी मानसिक स्थिति में अभी क्या है। इसलिए हम लोग बोलते हैं, एक बात है जिसको हम बोलते हैं रेडीनेस, कि जब तक वो तैयार नहीं है वो अधिगम होगा ही नहीं। अधिगम देखिए ना, अध्यात्म शब्द अधिगम, ये शब्द जो है अधि से शुरू होते हैं और ये जो सीखने वाला है उसका अधिगम तभी संभव होगा जबकि उसकी चेतना जो है उसके लिए तैयार है, वो प्यासा है कुछ प्राप्त करने के लिए। और अगर अब उसके चित्त में अनेक और प्रकार की बातें चल रही हैं तो वो कैसे उस
1: शिक्षा को कैसे ग्रहण करेगा,
0: ग्रहण कैसे करेगा, आत्मसात कर ही नहीं पाएगा।
1: आजकल परिवार में भी बहुत सारी चीजें चलती रहती है जिसका असर बच्चों पर पड़ता है
0: बहुत,
1: तो कहीं ना कहीं अभी के समय में सिर्फ बच्चे ही नहीं, हर एक व्यक्ति एक अलग तरह के मानसिक जो है तनाव से गुजर रहा है। पहले तनाव और स्ट्रेस की बात करते थे तो हमें लगता था कि सिर्फ हमारे घर के जो पिता है जो बाहर काम करने जाते हैं, तनाव उनको है क्योंकि उनको सोचना होता है कि महीने भर का खर्च कैसे चलेगा, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे, लेकिन अभी के समय में शायद छोटे से छोटे बच्चे को भी तनाव जो है वो महसूस करता है, और बड़े तो कर ही रहे हैं।

0: हाँ, इसकी तो बात ही मत कीजिए। अनेक प्रकार के तनाव हर किसी के जीवन में है। कोई कुछ ढूंढता है, कोई कुछ ढूंढता है, और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो तनाव उसका बढ़ा ही रहता है। इसका मतलब है वो किसी न किसी प्रकार का के प्रयास में लगा हुआ होता है। एक बालक जो है अनेक प्रकार के तनाव से गुजरता है। वो सुबह सुबह उठना ही नहीं चाह रहा है क्योंकि हमने आदत नहीं डाली है। अगर हम स्वयं उठ जाते हैं तो देखा देखी वो स्वयं
1: वो
0: उठ
1: भी उठ
0: जाता है।
1: जाता है
0: तो आजकल की आप समस्या जानते ही
1: जी
0: हैं, लोग देर सोने जाते हैं
1: जी
0: और देर तक बिस्तर पर होते
1: जी
0: हैं। तो जागने की जो आप समझिए एक प्रकार का डिसिप्लिन है वो नहीं है। तो आप जगाते हैं, पहला तनाव उसका वहीं से
1: जी
0: शुरू हो जाता है। फिर आप मान लिया जाए आप संस्कारी हैं, आप कहते हैं जाओ उसको नमस्ते बोलो और मत्था टेको वगैरह, ये सारी बातें उसके लिए नहीं है। सो ये उसके लिए, अब ऊपर से उसका तनाव है स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म पहना है। अच्छा मैं जाऊंगा, स्कूल जाने से पहले ही वो जो आने वाला दिन है क्या होगा उसमें, इसका तनाव है।
1: अलग
0: और
1: है
0: मैं आपको बोलूं
1: जी
0: उनकी साइकोलॉजी को सोचो ना,
1: जी
0: तो बड़ा वो दुखद स्थिति है। आप वो कुछ करना चाहते हैं और आप उससे कुछ और
1: और
0: करवाना
1: करवा रहे
0: चाहते हैं।
1: हैं
0: आप चाहते हैं कि वो इतना बड़ा बने लेकिन आप उसके लिए स्वयं तैयार नहीं हैं। हम लोग जिन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो
1: बच्चे
0: ही
1: करें।
0: करें, और उसके लिए हम उसको पुश करते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो वैसा क्यों नहीं कर रहे हो, और उसकी अपनी इच्छा है। सो एक क्लैश है
1: और ऐसे में
0: उस,
1: बच्चे बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते
0: एकदम
1: हैं।
0: एकदम
1: एक
0: बहुत
1: ना
0: सारे हैं आपने
1: पीयर
0: देखा है।
1: प्रेशर जो होता है वो बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हानि पहुंचा
0: हाँ
1: रहा है।
0: हम ना हम जीते हैं ना उनको जीने देते हैं, ये माने उनका बचपन गया ही गया। सो वो जो है खेल खिलौने के साथ मौज मस्ती में जीना, प्रकृति में रहना और प्रकृति में रोंदना,
1: बिल्कुल
0: मिट्टी में
1: हाँ
0: खेलना, वो सारी बातें उनसे अलग हो गए। इसका मतलब क्या है, हम उनको उनकी वास्तविकता से दूर ले जा
1: दूर
0: रहे
1: कर
0: हैं।
1: रहे हैं
0: और जब हम उनको उनकी वास्तविकता से दूर ले जाते हैं तो वो अपने आपे में नहीं होता है, फिर आप उसको क्या सिखाएंगे,
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना बच्चों में
0: उसकी
1: बचपन
0: तो
1: से आ जाती
0: बोलो
1: है।
0: मत।
1: अभी आपने बात की मिट्टी से जुड़े रहना, प्रकृति से जुड़े रहना, तो जैसे हमें हमारा बचपन याद आ गया कि स्कूल के बाद हम सहेलियों के साथ या हमारे जो कजिन्स हैं उनके साथ खेलने जाया करते थे। इतने देर तक खेलते थे कि डांट पड़ती थी तब
0: हाँ
1: घर
0: कब
1: लौटते
0: आप
1: थे।
0: खुश
1: और
0: आओगे।
1: अब जो है हम हमारे बच्चों को देखते तो हम उसे स्कूल के बाद एक क्लासेस में भेज रहे हैं, उसके बाद एक दूसरे क्लासेस में। ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, ये भी उनके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। समय के साथ जो है समय की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को ढाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में जो मासूमियत है, वो जो एक दूसरे के भाव को समझना है, वो अभी लड़ना तो आपस में फिर बन जाना, ये सारी मानवीय जो भावनाएं हैं, ये जो हमारे अंदर जो इमोशंस है उससे जो है बच्चा कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। क्योंकि बैक टू बैक बच्चा क्लासेस ही अटेंड कर रहा है।
0: होता क्या है, हम लोग एकेडमिक उनका जो डेवलपमेंट है
1: जी
0: उस पर ज़्यादा बल देते हैं।
1: जी
0: सर्टिफिकेट कमाना है और सर्टिफिकेट पाके जॉब मिलना है, जॉब भी ऐसे जॉब जो कि आपको संसार में एकदम मेक्स यू फेमस, और साथ साथ इस तरह का जॉब जहाँ पे आपको पैसे मिले। और बच्चों की आजकल की जो युवा पीढ़ी है जितनी जल्दी जितने पैसे कमा सकें इसलिए जॉब पे जॉब जॉब पे जॉब
1: जी
0: बदलते रहते हैं। वो
1: जी
0: स्थिरता की भावना जो है हट जाती है
1: जी
0: क्योंकि शुरू से हम उसमें कुछ ऐसा भर देते हैं कि तुमको संसार में हर किसी से अव्वल आना है। वो खुद पर हावी नहीं होते हैं, वो खुद से किसी प्रकार जो है प्रोग्रेस की सोचते नहीं है कि मैं खुद से कंपीट करूं कि
1: जी
0: मैं कल क्या था और आज क्या हूं,
1: जी
0: क्या मैंने मुझ में कुछ परिवर्तन हुआ,
1: जी
0: मैं खुद को समझ पा रहा हूं। तो हमारी तो शिक्षा प्रणाली की भी समस्या है कि हम लोगों ने इस फोकस में क्यों ऐसा फोकस होता है, क्योंकि चारों ओर देयर इज एन ए बूम ऑफ नॉलेज और हम नॉलेज को भरना ही चाहते हैं भरना ही चाहते हैं। तो वो क्या है, वो ही इज नॉट एन ओशियन
1: जी
0: कि उसमें आप भरते जाएं, और अथाह है उसमें आप भरते जाएंगे। उसकी भी अपनी लिमिट्स हैं, उसका भी समय है, उसकी आयु है, उसकी आयु उसको हम हमको एक बात बहुत अच्छी लगती है, एक बार किसी ने कहा था मेक हिम बिकम लर्नेबल कि वो सीख सके। ऐसा नहीं कि आप उसको कुंठित कर दो, इतना भर दो कि वो उसमें से उभर के निकल ही नहीं पा रहा है। सो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। तो हमारे शिक्षक तो चाहते हैं, ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है कि नहीं चाहेगा कि मेरी क्लास में अच्छे बच्चे आएँ, कि वो ये नहीं चाहेगा कि जो बच्चे हैं वो यहाँ से अच्छा बन के निकले। हर कोई चाहता है।

0: पर उनके ऊपर भी दबाव होता है, दबाव प्रेशर बहुत है किस बात का कि आपको इतना पढ़ाना है, आपको उन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाना है, अब ऊपर से वो बच्चे जो कि पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ऊपर से वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें, उससे अलग समाज की अपनी अपेक्षाएं हैं कि अरे कैसा बच्चा है, कैसा स्कूल है, कौन पढ़ाता है इनको कि ये निकल के आ रहे हैं स्कूल से तो इतनी हुड़दंगबाजी मचा रहे हैं रस्ते में। सो सबको अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, पर हमने बैलेंस दिया ही नहीं, हम बच्चों को खुद को समझने का अवसर नहीं देते हैं। एक तो चारों ओर से समाज और इंटरनेट और सब कुछ उस पर हावी है, उसका पीयर प्रेशर भी बना हुआ है, और हम लोग उसको समय नहीं देते हैं कि खुद को समझे, तभी तो समस्याएं होती है कि वी डोंट हैव इंटेलिजेंट लिविंग। समय समय बौखला जाना, गुस्सा कर जाना, किसी को पीट देना, जान तक ले लेना, तो अनेक प्रकार की इस प्रकार की जो दुविधाएं हम देख रहे हैं, ये हमारे शिक्षकों को बुरी तरह से दुखी करता है, हमको पीट देता है कि हम हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद क्यों ऐसा हो रहा है कि समाज इतना खराब बनता जा रहा है। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, एक बार हम लोग एक कोर्स फॉलो कर रहे थे सस्टेनेबिलिटी के बारे में, सस्टेनेबिलिटी वो जो टिक सके, तो बड़ा मजेदार है कि इसकी ये कथा जन्मी कहाँ से, ये सस्टेनेबिलिटी का जो दौर चला वो कहाँ से शुरू हुआ, कि ब्रेकफास्ट पर बैठे हुए कुछ देशों के जो सलाहकार नहीं जो लीडर्स थे बैठे हुए थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे, और चर्चाएं हो रही थी कि हम लोग इतना सारा विश्व जो है इंटरनेशनल लेवल पर इतना पैसा हम लोग फूंक रहे हैं, पर क्यों संसार में पीस नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है, लोग प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, नोबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज समवेयर फाइटिंग एंड लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। तो तब उन लोगों ने कहा कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम कुछ शुरू करें उसको बीच में छोड़ दें, पर ऐसा कुछ जो कि हम करें और जीवन पर्यंत उस सीखने वाले के अंदर जो है घर कर जाए, कि समय समय पर उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता हो। देखिए ना, हमारे वैदिक ग्रंथों में हमारे गुरुओं ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, उन्होंने कहा कि तीन प्रकार का ज्ञान तो देना ही देना है, बार बार मैं ये कहती हूँ पर इसको कहे बगैर हम शिक्षा की चर्चा कर ही नहीं सकते, कि एक तो आप उनको तत्व ज्ञान देते हैं सारी संसार भर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एक तरफ तत्व ज्ञान, फिर आत्मज्ञान, खुद को तो जाने जी, उसका उसके अंदर है क्या, हमारा शरीर है क्या, हमारे शरीर की शक्तियां हैं क्या, कब हम फेल कर जाते हैं, कब हमारी परेशानियां होती हैं कि हम सोच समझ भी नहीं पाते हैं, हमारे शरीर में जो एंजाइम्स है, हमारी जो स्थिति है, हमारी शिराओं में जो रक्त बह रहा है, उन सब में जो है कौन कौन सी चीज़ें हमारे ऑर्गन्स में काम करते हैं जो कि उनको ऐसी स्थिति पे हमको ले आते हैं कि हम खुद पे जो है किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकते, हमारा व्यवहार टोटली अनएक्सपेक्टेड बन जाता है और हम उस प्रकार के बिहेवियर कर डालते हैं, वो बातें हम अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं हैं।
1: और शायद अभी के समय में वो गहराई से हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। किस तरह से एक शिक्षक यहाँ पर आकर बच्चों में वो गहराई को ला सकता है।
0: एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा कहती थी कि ये तीन प्रकार के हैं, तो एक तो मैंने दूसरा बताया आपको आत्मज्ञान, फिर तीसरा मैं हमेशा चर्चा करती थी कि ब्रह्म ज्ञान है, कि वो ब्रह्म ज्ञान माने हम हमेशा सोचते कि सब अबाउट गॉड, और गॉड का हमारा जो परसेप्शन है, जो हम उनके हमारी जो संकल्पना है, उस संकल्पना को अब मुझे एकदम छिछोरापन दिख रहा है जो पहले हम सोचते थे, एकदम बचपना था उस सोच में, और अचानक जो कोई गुरु से आप मिलें और वो आपको बताए कि मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान दूंगा, मैं तुमको ईश्वर से मिलाऊंगा और तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, मिलाऊंगा, है कोई जो आप इस तरह का दावा करे, इस प्रकार का गुरु, वो भी गुरु होता है। और हाल हाल में ये पढ़ के मैं, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने ये कहा, इसको सुन के मैंने कहा मैं तो अभी तक यही सोच रही थी ब्रह्म ज्ञान है क्या, फिर उसकी ओर जो है आपका रुख बदल जाता है, तब जाकर आप ये सोचना शुरू करते हैं कि अरे आई वॉज ऑलवेज गाइडेड, कि है कोई ऐसी शक्ति जो हमेशा से हमको गाइड करती रहती है, लेकिन हम अज्ञान होते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, और जब गुरु की कृपा होती है ना, तो इसलिए हम लोग शिक्षक ही ना कहकर उनको गुरु कहते हैं, कि गुरु की कृपा होती है तो हम उनसे मिल पाते हैं। और मुझे बड़ा अजीब लगा कि उसी संदर्भ में किसी ने हम

0: से कहा कि बैर क्यों, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बैर क्यों, उसको त्याग दो, उनके कहने मात्र से, मैं आपको क्या बताऊं, गुरुओं की शक्ति ऐसी होती है, उनके कहने मात्र से, जैसे मेरे चित्त से कितने वर्षों से मन में केवल बैर नहीं, दुख, अनेक प्रकार के जो फ्रस्ट्रेशन सब होते हैं, पल भर में उसको मिटा दे, ये गुरु होते हैं। तो क्लास में भी टीचर वैसे होते हैं, जो कि समय को पकड़ लें, यू नो, कि बच्चे को इस समय कष्ट हो रहा है तो मैं जरा सिलेबस से हटकर उसके दुख को तो दूर कर दूं, और अगर ये करते हैं वो बच्चा जिंदगी भर आपको याद करेगा।
1: करता है, बिल्कुल। चलिए, जितने लोग इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आप भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और अपने विचार बांटना चाहते हैं, या कोई ऐसा टीचर जिसके बारे में अभी भी आप सोचते हैं, जिन्होंने आपके जो है सोचने की दिशा को बदला या जीवन में आपको प्रेरित किया, आप उनके बारे में जुड़ना चाहते हैं, बेशक 4028085 है नंबर हमारा। ऐसा करते एक छोटे से गीत के साथ कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं, फिर कार्यक्रम को जारी रखेंगे और आपके फोन कॉल्स भी हम शामिल करेंगे।

0: आज की चर्चा।
1: चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा। इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम जो है वर्ल्ड टीचर्स डे पर बात कर रहे हैं, हमारे टीचर्स की भूमिका उस पर चर्चा कर रहे हैं, बदलते समय के साथ किस तरह की चुनौती का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और किस तरह से जो है वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो मीला जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी के समय की अगर हम बात करें तो शिक्षा और शिक्षक दोनों की आवश्यकता समय के साथ क्यों बढ़ गई है, खासकर अभी के समाज की बात करें जो हालात है हमारे चारों ओर।
2: हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो एक नए मोड़ पे है। पहले तो एक घर में, एक परिवार में बड़े बूढ़े और बाकी लोग भी हुआ करते थे जिनके पास समय होता था बच्चों के लिए। सो अगर माँ बाप थक गए हों, हारे हों और किसी ना किसी रूप में अब उनके पास धैर्य की कमी पड़ जाती है, तो जो बड़े लोग हुआ करते थे वो बच्चों का साथ देते थे, बल्कि उनको बचाते भी थे कि हाँ माँ डांट न दे, पिता मार न दे एक चाटा। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति है हमारे जो छात्र हैं उनकी ये स्थिति एकदम बदल गई है। स्कूल से वापस आए अब तो भागो ट्यूशन के लिए, लेकिन पहले ज़्यादा आनंद था कि स्कूल से वापस आते हैं तो घर में कोई होता था जो उनका स्वागत करता था, उनको खाना पानी कुछ भी देता था और बात करता था कि हाँ कैसा चला तुम्हारा दिन। अब ये पूछने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। तो समाज हमारा जो सबसे पहले तो परिवार ही बदल गया है। सो और फिर परिवार में हर कोई अपने दौर में और अपनी चिंताओं में घिरा हुआ है कि उसको ये करना है, वो करना है, 50 चीज़ हर किसी को कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास समय नहीं होता है, इसलिए बच्चे कुछ पूछता है तो बोलते हैं हाँ हाँ अच्छा बाद में बात करेंगे, या उससे पूछ लो, या ये कर लो, या ध्यान ही नहीं देते हैं। तो बच्चे में कुंठा पैदा हो जाएगी इमिडिएटली कि आई वॉन्टेड टू नो अबाउट समथिंग, लेकिन मेरे मुझे जवाब देने वाला कोई है ही नहीं। और फिर जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप उनकी कल्पना कीजिए, बढ़ता हुआ शरीर, बढ़ता हुआ व्यक्ति जो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाह रहा है समाज में, बिकॉज ही इज़ ग्रोइंग नाउ, उसकी पर्सनालिटी, उसके जो कैरेक्टर है वो बनना शुरू होते हैं। और उस समय जब उसको इतना अधिक हर ओर से सहायता मिलनी चाहिए, मैं एडवाइस नहीं बोलूँगी क्योंकि एडवाइस शब्द लोग पसंद नहीं करते हैं, आज की युवा पीढ़ी पसंद नहीं करेगी कि आप उसको कहें कि अच्छा अच्छा ये करो, वो करो, वो मत करो। तो हम उनको इतना तो उकसा सकते हैं कि वो स्वयं सोच सके। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है वो कब बताएगा, किसको बताएगा। अगर कोई आप टीवी देख रहे हैं तो कहेंगे नहीं नहीं ये मत देखो, ये मत करो, अरे आपके पीछे वो 50 वैसी चीज़ें देख रहा है, तो आप उससे बात तो करो, आप उससे पूछो तो सही कि क्या हो रहा है। सो युवा पीढ़ी की अपनी समस्याएं हैं कि मेरी मदद करने वाला कोई है नहीं, तो कौन मदद करता है, फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स जो अपने आप को स्मार्ट मानते हैं और समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है और वो बताते हैं और गलत सलत ही बताएंगे।
1: सही कहा आपने।
2: इसलिए मैंने एक किताब लिखी थी यौन संबंधी विशेषताओं को लेकर, इसलिए कि एजुकेशन सेक्टर में रह रह के मैंने देखा था कि साइकोलॉजिस्ट के साथ हम लोग बात करते थे तो ये चर्चाएँ होती थी कि हमारे स्कूलों में जो है इस प्रकार की समस्याएँ शुरू हुई हैं, बच्चे भी आपस में व्यवहार समझ नहीं पा रहे हैं, लड़के लड़की एक दूसरे के संबंध को दोस्ती का नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए कि एक तो हमको खुद समझना है कि साइक

0: साइकोलॉजिकली दे आर ग्रोइंग, फिजिकली दे आर ग्रोइंग, मेंटली उनकी दिमाग हर तरफ बढ़ रहा है, उनकी केमिस्ट्री और कुछ कह रही है।
1: इंटरनेट के माध्यम से आजकल बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा चीजों को देख रहा
0: exactly.
1: है। मतलब कि एक समय था ना कि जब हम स्कूल जाते थे, छोटे थे, जब इंटरनेट नहीं था, तो हमें हमारी उम्र के हिसाब से चीजें सिखाई जाती थी, समझाई जाती थी, जैसे बढ़ते थे वो पड़ाव भी बढ़ता जाता था। लेकिन अभी शायद एक छोटा बच्चा वो सब देख रहा है और जान रहा है, या उसकी समझ है जो शायद आज से 5 या 10 साल बाद उसे होनी चाहिए,
0: उसके होनी चाहिए। तो अभी तक तो उसमें समझ नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, उस टाइम का, उस टाइप का विजडम भी नहीं आया है कि वो जाने कि मुझे क्या देखना चाहिए, अच्छा मैंने ये जो देखा है ये क्या है। कि तो पेरेंट्स भी क्या तैयार हैं वो डिस्कस करने के लिए? हमारे धर्म ग्रंथों में यौन संबंधी बातों को शिक्षा से अलग नहीं माना गया है, इसीलिए तो हमारे यहाँ का ज्ञान इतना परिष्कृत है कि बोलते हैं कि अच्छा मनुष्य को 4 आश्रम इसलिए तो रखा गया कि उसमें कब तुमको सीखना है और कब तुमको प्रैक्टिस में लाना है और कब तुमको इससे निकलना है, ताकि तुम संसार की सांसारिकता और प्रकृति के स्वभाव को छोड़कर तुम आगे बढ़ सको। सो इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए हमने उस टाइप के लाइफ को स्टेज वाइज ऑर्गेनाइज किया ही नहीं है। तो बचपन से ही हर कुछ देखता है और समझने की चेष्टा करने से पहले प्रैक्टिस में लग जाता है। ये समस्याएं हैं, तो बच्चों की समस्याएं हैं कि वो औरों से ज़्यादा सीख रहे हैं, जहाँ से उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है वहाँ से वो सीख नहीं पा रहे हैं,
1: क्योंकि वहाँ पर शायद वो विश्वास ही वो डेवलप नहीं कर
0: exactly,
1: पा रहे हैं। क्योंकि एक बच्चा जब सवाल करता है तो अभी के समय में ये एक आम हमारा नज़रिया है, हम किसी को दोष नहीं दे रहे, माता पिता दोनों ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगे हुए हैं, दिन भर काम करके थक जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, तो जो समय बच्चा अकेलापन महसूस करता है, पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे का जो है अपेक्षाएं अलग होती है, लेकिन पेरेंट्स आते तो सोचते हैं पकाना है, घर की सफाई करनी है, तो ऐसे में हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में इस तरह से उलझ गया है कि वो बेसिक इमोशन जो है एक दूसरे को नहीं दे पा रहे, वो समझ कम है अभी के समय में, और वहीं पर क्लैश ज्यादा हो रहा है।
0: अब देखिए होगा क्या कि पहले एक बच्चे की शिक्षा जो है समाज की ओर से, स्कूल की, पाठशाला की ओर से, राइट, और परिवार की ओर से भी होता था। अब परिवार को तो हमने देख लिया, उनकी समस्याएं, परिवार ये भी सोचता है कि हाँ मैंने बच्चे को स्कूल भेज दिया है, वहाँ उसको सारी शिक्षाएं प्राप्त होंगी। लेकिन स्कूल वाले की समस्या ये है कि अरे ये तो बिगड़ के आ रहा है घर से, मैं कैसे इसको। अब शिक्षक की समस्या क्या है? आदर नहीं है सुमित जी, आजकल आदर नहीं है। मुझे याद है हम लोग कभी स्कूल देखने गए थे और मैंने कॉरिडोर में देखा था बच्चों को, टीचर्स गुजर रहे हैं एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में जा रहे हैं सेकेंडरी स्कूल का, और कोई हटके उनको जाने के लिए जगह भी नहीं दे रहे हैं, वो आपस में जहाँ भी खड़े हैं वही लगे हैं। मैं आपको आज से 10 साल 15 साल से पहले की बात बता रही हूँ, तभी से हमको लगा कि भाई हो क्या रहा है कि वो आदर गया। सो क्या है, ना कोई नमस्ते बोल रहा है, ना कोई हटके थोड़ा सा रास्ता दे रहा है कि ये निकल जाए, ये हमारे इतना तक का आदर नहीं है, बस में बैठने की जगह छोड़ दीजिए आप। तो उनकी भाषा, जहाँ मन से आदर का भाव निकल जाता है, भाषा में तो आदर का भाव होगा ही नहीं। व्यवहार की बात तो अलग ही है, उनका व्यवहार क्या है कि टीचर्स पर पेपर फेंकते हैं, हर प्रकार का व्यवहार टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं डिसिप्लिन बनाए रखूं क्लास में कि ये लोग शोर ना मचाएं, या मैं उनको पढ़ाऊं जो पुस्तक में है, या मैं इनको व्यवहार के बारे में सिखाऊं, वैल्यूज़ के बारे में सिखाऊं। वैल्यूज़ सिखाई नहीं जा सकती है, वैल्यूज़ तो हो जाती है अपने आप में, इसलिए कहते हैं कि लेट द चाइल्ड बी, तब ना हम डिस्कवर करेंगे। तो अगर जैसे कहते हैं कि पेड़ टेढ़ा होने लगा, वो पौधा अब टेढ़ा होने लगा, अगर आप समय पर ही उसको ठीक नहीं करते हैं, तभी होता क्या है कि कुछ तो समाज के नियम कानून कायदों से डरकर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो टोटली फिसल जाते हैं, और उस प्रकार के लोगों के लिए आपकी जेल खानों में जगह नहीं होगी। आप कल्पना कीजिए कि अध्यापक को क्या क्या झेलना पड़ता है, खुद अपने घर से निकल के आता है, अपनी समस्याओं को अलग रख के बच्चों के साथ खुश रहने का प्रयास करता है। आप घर में 1-2 बच्चों के साथ थक जाते हैं, वो 40-40 बच्चों को एक साथ संभालते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
1: तो इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम

0: एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक
1: हाँ
0: दूसरे की किस तरह से सहायता कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। यहाँ पर अगर हम अभिभावकों की बात करें और शिक्षकों की बात करें, जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को वैल्यूज सिखाते हैं, अच्छे आचरण सिखाते हैं, वहीं पर जब एक शिक्षक उन्हें शिक्षा से जुड़े मूल्यों का ज्ञान देता है, तो ये दोनों जब साथ साथ चलते तो बच्चे की सफलता एक अलग होती है, वो बच्चे का आचरण एक अलग होता है। और यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स जब एक साथ एक दूसरे के जो है शॉर्टकमिंग्स को समझकर एक साथ आएंगे, तो शायद समाज एक अलग ही रूप में हम देख पाएंगे समाज, क्योंकि अभी के समय में समाज की बात करें तो चिंताजनक स्थिति बहुत है।
1: चिंता,
0: खासकर हम बच्चों की बात करें, शिक्षा प्रणाली में हर तरह का प्रयास किया जा रहा है कि सोसाइटी में बच्चे जो है अच्छे से पले बढ़े, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें, लेकिन कभी कभार आजकल के हमारे बच्चे जल्दी बहक जा रहे हैं। तो इसमें किस तरह से कार्य किया जा सकता है जहाँ पर माता पिता और शिक्षक एक साथ आकर कुछ करें?
1: सबसे बड़ी बात तो ये है, आप देखिए ना, प्राइमरी स्कूल में आप बच्चे को रोज़ स्कूल छोड़ने जाते हैं,
0: जी
1: छोटा है
0: जी,
1: नहीं जा पाएगा
0: जी,
1: आप उसकी सुरक्षा से चिंतित हैं,
0: जी
1: सो आप उनको छोड़ने जाते हैं, उसका सारा सामान उनको देते हैं
0: जी,
1: लेकिन जो ही वो अपने सेकेंडरी स्कूल की ओर जाता है, यहाँ तक तो आप लड़ धड़ के उसको पढ़ाते हैं ताकि अव्वल आए और अच्छा स्कूल, सेकेंडरी स्कूल प्राप्त करें। जो ही सेकेंडरी स्कूल में जाता है, आप जाकर स्कूलों से पूछिए कि जब वो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग लगवाते हैं, कितने अभिभावक आते हैं, कितने पेरेंट्स आते हैं, बहुत कम होंगे जो आते हैं। बच्चे अनेक प्रकार के बुरे व्यवहारों में फंस जाते हैं, तब भी आप बुलाते हैं, मान लिया जाए एक दो आ भी जाए तो आप ही पर केस करेंगे। So, हर कोई अपने बच्चे को बचाना चाहता है, समझते हैं इस बात को, लेकिन वो बात जहाँ पर कि दोनों मिलकर उस विद्यार्थी को सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर सकें, वो तो किया नहीं जा सकता है।
0: यानी कि समस्या का समाधान हम नहीं ढूंढ रहे हैं,
1: नहीं ढूंढ रहे
0: हम बस सिर्फ एक दूसरे पर दोष दे रहे हैं, इससे तो हमें सोल्यूशन नहीं
1: कुछ
0: मिलेगा,
1: नहीं प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यू नो स्पीच कि हमारे बोलने की क्षमता और हमारे हमारी वाणी में शक्ति कब आएगी? टीचर्स की वाणी में शक्ति आनी चाहिए। टीचर्स स्वयं अगर संसार के झंझावात से बौखलाया हुआ है तो आत्मशक्ति भी उसमें कम हो जाती है। 5 मिनट की 2 मिनट की देरी हो जाए और वो साइन करने में इधर उधर डुल गया तो उसकी चिंता शुरू से ही प्रारंभ हो जाती है। अब आप कल्पना कीजिए, घर में अपने बच्चों को निभाकर जो भी करना था करके आप निकले हैं और ऐसी स्थिति में जाते हैं, तो जिस दम से आप बोलते, जिस भाव से आप पढ़ाते, जिस आत्मीयता से आप उन बच्चों के साथ मिलते, उसमें थोड़ी सी गिरावट तो आ ही जाएगी, क्या करेंगे आप। सो उनमें आत्मिक शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उनकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए समस्त समाज को एकजुट होना है। देखिए आप, हमको एक बात समझनी है कि बच्चा सुबह स्कूल जाता है, समझिए 8 बजे, उससे पहले तो ट्रैवल कर रहा होता है, समाज में ही है, अपने उम्र के लोगों के समाज में बस में आ जाता है और वापस आता है कब? 3 बजे। 3 बजे के बाद मान लिया जाए वो ट्यूशन पर भी जाता है, तो इतना समय वो शिक्षकों के साथ रहता है। घर में जाता है तो कितना समय माँ बाप के साथ रहता है? बहुत कम होता है। अधिक समय या तो काम करने में उसका, होमवर्क करने में लग जाता है,
0: या फिर अकेले अपने चीजों में
1: उलझा है और सो जाता है, तो ज्यादा समय उसका कहाँ बीतता है? अध्यापकों के साथ,
0: जब वो जाग रहा है, एग्जैक्टली, चीजों को समझ रहा है।
1: सो इन सारे अध्यापकों को प्रोत्साहित करना है, उनको उस प्रकार की शिक्षा देनी है कि वो स्वयं ग्राउंडिंग लेवल पे हों कि हाँ कुछ भी हो रहा है, अभी मैं क्लास में आ रहा हूँ, कैन आई डिटैच फ्रॉम व्हाट इज आउट देयर,
0: ये भी बहुत जरूरी है।
1: तो उनको इसकी शिक्षा तो मिलनी चाहिए, इस प्रकार की ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए। आप केवल उसको ये बताएं कि हाँ क्लास में जाकर ऐसा करना है वैसा करना है, अच्छा जिसके साथ ऐसा वैसा करना है और खुद को क्या कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में हम नहीं सोच रहे। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अच्छा है कि हमारे समय में ऐसी समस्याएं नहीं थी, पर ये अवश्य कहूँगी कि हमें अपने अध्यापकों का साथ देना है, हमें उनकी मदद करनी है। आज देखिए जब कोविड का समय था, कितना लड़ झड़ के ये सारे टीचर्स जो हैं

0: ऑनलाइन पढ़ाया करते थे। आप सोच सकते हैं, घर को संभालना और ऊपर से पढ़ाना और ऊपर से सब कुछ उथल पुथल, ऊपर नीचे सब कुछ हो गया था। उस समय में कुछ अभिभावकों ने संभवतः है, क्योंकि घर में थे, उनके पास टाइम था, तो उन्होंने अपने बच्चों का साथ दिया होगा, तो कैसा लगा होगा, यू नो, अकम्पेनिंग द चाइल्ड इन हिज लर्निंग, अकम्पेनिंग द चाइल्ड इन हिज ग्रोइंग अप, अकम्पेनिंग द चाइल्ड टू मेक हिम सी हाउ ही कैन मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो एक टीचर कर सकता है
1: जी।
0: लेकिन उसको सशक्त बनाना है, उसको वो औजार देने हैं, उसको विश्वास दिलाना है कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप करिए अपना काम, हम आपकी मदद करने के लिए सदा तैयार हैं, क्योंकि आप हमारा ही काम करें, हमारे ही बच्चों को देख रहे हैं, हमारे ही समाज को बढ़ा चढ़ा कर ऊपर पहुँचा कर, उसमें कितने बड़े बड़े लीडर्स बनाते हैं, आप कल्पना करेंगे कि जो वैदिक ग्रंथ थे किसने लिखा, आप कल्पना करेंगे कि हमारे जिनको हम पूज्य मानते हैं, प्रभु राम को मानते हैं, आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, इन सबके अपने गुरु थे, कितनी वैल्यू दी है। तो वशिष्ठ मुनि थे, विश्वामित्र जी थे, इसी प्रकार हम जानते हैं कि संदीपनी जी थे, कितने सारे गुरु हुए हैं जिन्होंने समय समय पर समाज को उनकी गति की ओर ले जाने का प्रयास किया है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्यत्व से ऊपर उठकर देवत्व की ओर जाना है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है। तो स्कूल के टीचर की जिम्मेदारी होती है कि उनको बताए कि तुम्हारा गंतव्य वहाँ है, तुमको वहाँ तक जाना है, मैं तो यहाँ तक तुम्हारी मदद कर रही हूँ, और हैं तुमको प्रकृति से सीखना है। देखिए ना, गाने भी हैं, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, है ना, कि नदी बहती जाती है हर प्रकार से बहती, किस तरह फल पकता है तब पेड़ से गिरता है, हर प्रकार सारी शिक्षा होती है। रात के समय आप चंद्रमा को देखिए, कितनी शीतलता प्राप्त होती है। तो सारा संसार हमारे हमको शिक्षा देने के लिए तैयार है, तो हम किस किस को किस किस के प्रति आभार प्रकट करें, हमको तो हर समय आभार ही आभार प्रकट करना है
1: कि हमें कृतज्ञ हृदय से ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तब जाकर सारा चीज अच्छे से होता है। और कृतज्ञता के साथ साथ विश्वास होना बहुत जरूरी है, जो अभी के समय में समाज में बहुत कमी है। सिर्फ हम टीचर और स्टूडेंट के बीच में विश्वास की बात नहीं कर रहे, हमारे हर एक रिश्ते में आजकल हम देख रहे हैं विश्वास की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास अगर फिर से हम बना पाए तो शायद जीवन के बहुत सारे पहलू सुधर जाएंगे।
0: बिल्कुल, वो सारा कुछ हमारे व्यवहार के ऊपर डिपेंड कर, और हमारा व्यवहार जो है किस बात से प्रेरित होता है, हमारे विचारों से, हम जो सोचते हैं वो वैसा करते हैं, तो हमारी सोच में परिवर्तन होना चाहिए, और उसी सोच को बदलने के लिए हमारे जो, अब आप देखिए अब्राहम लिंकन थे, अब्राहम लिंकन ने एक पत्र लिखा था अपने हेडमास्टर को, अपने बेटे के हेडमास्टर को, और उन्होंने कहा था मेरे बेटे को ऐसा बनाइए। तो वो अब्राहम लिंकन पॉलिटिशियन, उसके पास समय कहाँ था, पर उसका एक पत्र तहलका मचा देगा। इसलिए मैं तो सबसे कहती हूँ कि ढूंढिए उसने उस पत्र में क्या कहा, उसने समयोचित बातें कही, कि मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे बच्चे को कठोर मत बनाओ, मैं नहीं कहता हूँ कि उसको इतना कोमल बनाओ कि वो अपने आप स्वयं की सुरक्षा ना कर सके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको संगीत ना सिखाएं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको भावनात्मक ना बनाएं। क्या बैलेंस उन्होंने उस पत्र में लिखा। अब मैं अपने आप से पूछती हूँ कि आज के ज़माने में अगर कोई जागरूक व्यक्ति किसी हेडमास्टर को पत्र लिखेगा तो अपने बच्चे के लिए इस तकनीकी युग में क्या मांग करेगा,
1: पता नहीं,
0: इस समाज के लिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो हमको खुद बदलना है
1: जी।
0: जब हम बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी, तो हमारे आसपास के लोगों की सोच भी बदलेगी, क्योंकि हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारा खान पान, बोलने चालने की, और जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनका संग हम बनाते हैं, क्योंकि जैसा जैसे लोगों का संग हम बनाते हैं, ये भी कहा गया है कि 5 साल 10 साल बाद देखिए आप वैसा ही बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोग सत्संग की चर्चा करते हैं, सत्संग का कितना महत्व तो रामायण में बताया गया है। तो ये जो हमारा विचार है वो अचानक नहीं बदलेगा, हमारी सोच जो है सन्मार्ग पर अचानक नहीं जा सकती है, उसके लिए एक प्रकार का गठन होता है हर प्रकार से।

0: चारों ओर से, जैसे एक बिल्डिंग के लिए आप स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तब ना वो इमारत खड़ी होती है, तो स्कैफोल्डिंग होनी चाहिए समाज को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हमें जागरूक होना है। अगर कोई बुराई की ओर जा रहा है तो कैसे हम उसको अच्छाई की ओर लाए, ऐसा नहीं कि हाँ हम आँख बंद कर लेते हैं, ये हमारा बच्चा नहीं छोड़ देते हैं। ये जो व्यवहार पहले हमारे समाज में था अब कम दिखता है कि कोई बुराई कर रहा है तो अच्छा उसने ऐसा किया हम छोड़ के चले जाते हैं।
1: एक समय ऐसा भी था जब हमें पड़ोसी आकर डांटते थे कि ऐसा क्यों कर रहे
0: करते हो,
1: क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी थी हमारे प्रति। चलिए मीरा जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, और जाते जाते दो शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगी।
0: मैं अध्यापकों, क्योंकि आज वर्ल्ड टीचर्स डे मना रहे हैं,
1: कल हमने मनाया, आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं।
0: तो भारत में तो मेनन जी के अनुसार, तो राधा कृष्ण मेनन जी के अनुसार इस दिन का मनाते थे
1: जी।
0: तो भी वो सार्थक ही है। चलिए तो मैं अपने टीचर्स को, जितने भी अध्यापक हैं, ये कहूँगी कि आप में जो क्षमता है ना
1: जी,
0: आप उसको पहचानिए ना। आप एक क्लास में बैठकर जो कर सकते हैं ना वो घर में पेरेंट्स भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को नॉलेजेबल नहीं मानते हैं बच्चे। नॉलेज देने वाला स्कूल होता है, और आप हृदय से आप अपने अंतरतम की शक्ति को बढ़ाकर आप उस बच्चे तक उस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप में जो क्षमता है आप उस पर पूरा विश्वास कीजिए, क्योंकि आप प्रेम पूर्वक जो भी एक बालक को प्रदान करेंगे ना जिंदगी भर वो उसके जीवन को संवार देगा। हमारे बच्चे प्रेम के भूखे हैं, हमारे बच्चे टाइम के भूखे हैं, हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम उनको सुने। और हमारा कष्ट ये है अध्यापक के रूप में कि हमको किताब उन तक वहन करना है, हम भी बोलते ही बोलते रहते हैं, उनको सुनने का कम अवसर मिलता है। आप कभी ये ट्राई कीजिए ना कि क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आप उनको 10 मिनट में अपनी बात कहने का अवसर दे दीजिए ना, थोड़ी सी लीडरशिप वहीं से शुरू हो जाएगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। अपने आज के इस विषय को लेकर इतनी सारी बातें जुड़ी, बहुत बहुत आभार आप आपका, और साथ ही जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे इस कार्यक्रम से आपका भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को नमस्कार और शुभ दिन हमारी ओर से।
0: हमारी ओर से भी नमस्कार और शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। ये जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में पानी की कमी लगातार चिंता बढ़ा रही है। जलाशयों में औसतन करीब 60% पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय यह स्तर 87% से ज्यादा था। मोवाक्वा सिर्फ 36% और लानिकुलिया महज 6% भरा है। आने वाले महीनों में बारिश सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन इससे पानी की मौजूदा कमी पूरी होने की उम्मीद कम है। हालात पर चर्चा के लिए आज दोपहर मंत्री पत्रिक आसियावादन की अध्यक्षता में वाटर क्राइसिस कमेटी की बैठक लगेगी। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को अब बड़े बदलावों की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि गन्ना, कपड़ा उद्योग और पर्यटन ने लंबे समय तक देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब बढ़ती उम्र की आबादी, कमजोर होती प्रतिस्पर्धा और बढ़ता सामाजिक खर्च अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही है। वर्ल्ड बैंक ने ज्यादा आमदनी देने वाली सेवाओं और डिजिटल सेक्टर को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। उसके मुताबिक जरूरी सुधार किए गए तो 2050 तक 37,000 से ज्यादा कुशल रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मेटा की एक टीम आज मॉरिशस के अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाली है। बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने, फर्जी प्रोफाइल्स पर रोक लगाने और क्रियोल मॉरिशिया में कंटेंट की निगरानी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि शिकायत मिलने पर गलत या खतरनाक कंटेंट को जल्द हटाया जाए और पुलिस को जांच में

0: बेहतर सहयोग मिली। मॉरिशस में अब ये पता लगाने के लिए अध्ययन किया जाने वाला है कि पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल का कैंसर से कोई संबंध है या नहीं। WHO और FAO इसमें सहयोग करेंगे। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर अंतर मंत्रालय समिति की पहली बैठक लगाई गई। कृषि उद्योग कुछ कृषि उत्पादों में तय सीमा से ज्यादा कीटनाशक मिलने के बाद नियमों पर फिर से गौर किया जाएगा। और विदेश स्तर पर फ्लाई दुबई की एक उड़ान में हुई गंभीर घटना की जांच जारी है। अमरीकी और इजरायली मीडिया के मुताबिक दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान के को पायलट पर कैप्टन को कुल्हाड़ी से घायल करने का आरोप है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वो विमान को तेल अवीव में टकराना चाहता था। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: News on MBC Play and MBC.mu.
2: Radio Mauritius.
3: 819 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: भक्ति धारा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम करजोड़ अभिवादन करते हैं। आप सभी का हृदय की गहराई से हम स्वागत करते हैं। आज के इस भक्तिमय यात्रा भक्ति धारा कार्यक्रम में पुनः उपस्थित हो चुकी है रत्ना। आपकी सेवा में दिन के 11 बजे तक हम रहेंगे आपके साथ। और बिल्कुल आप सभी को याद दिलाते चले, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुछ ज्ञानवर्धक बातों के साथ भी जुड़ेंगे वेद सुधा कार्यक्रम में, जहां पर आचार्य सुदेश बद्री जी हमारे साथ रहेंगे। तो आइए, आज का दिन मंगलवार का दिन है, मंगलवार का दिन सभी के लिए मंगल रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस मंगल गीत के साथ जुड़ते हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

श्रोताओं, जीवन में बुद्धि, पद और धन तभी सार्थक हैं जब तक उनके साथ संवेदनशीलता भी जुड़ी हुई है। आज पद, धन, बुद्धि सभी के पास है, पर संवेदनशीलता कम होती नजर आ रही है।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम के समस्त आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन है।

इस प्रकार निर्धारित की गई है। सर्वप्रथम हम वेद पाठ एवं उसका भावार्थ सुनेंगे, तत्पश्चात एक मधुर भजन का आनंद लेंगे और अंत में एक वैदिक मंत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं वेद पाठ से। ओम बन्मना अहि सूर्य महादित्य महां असि महस्ते सतो महिमा पनिष्टम महना देव महां असि। वह प्रभु सबको उत्पन्न करने वाला है, सबको प्रेरणा देने वाला है, सबको ज्ञान प्रकाश देने वाला है। वह अखंड एक रस सर्वतः प्रकाशमान है। वह सत्य स्वरूप प्रशंसनीयों में सबसे अधिक प्रशंसनीय परम देव है। ओम यदा कदा च मीढुषे स्तोता जरेतमर्त्यः आदिद्वन्देत वरुणं विपागिरा धर्तारं विव्रतानां। वह इंद्र परमेश्वर सब पर सुख सौभाग्यों और आनंदों की वर्षा करने वाला है। वह अनेक प्रकार के व्रतों नियमों और व्यवस्थाओं को धारण कर सारे संसार को सुनियमित और सुव्यवस्थित रखता है। वह परमेश्वर अपने अनूठे कर्मों के द्वारा भक्तों उपासकों साधकों के लिए सदा वरणीय ही बना रहता है। ओम त्रातारमिंद्रमवितारमिंद्रम हवे हवे सुहवं शूरमिंद्रम हुवेनुशक्रम पुरुहूतमिंद्रमिदं हविर्मघवा वेद्विंद्रः। हृदय से प्राण प्रिय प्रभु पर भरोसा रखने वाला उपासक अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक छोटे बड़े संग्राम में प्रत्येक सुख दुख हानि लाभ मान अपमान यश अपयश आदि के अवसर पर उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर को स्मरण करते हैं। ओम गायन्ति त्वा गायत्रिणो ओर्चन्त्वर्च कर्म कीर्णम ब्रह्मणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव ये मिरे। जो सैकड़ों उपकारों का करने वाला प्यारा और सब जग से न्यारा परमेश्वर है, गायक उसको गाते हैं, स्तुता उसकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मा ज्ञानी विद्वान उसका व्याख्यान करते हुए उसको श्रद्धा भक्ति से ऐसे उठाए उठाए फिरते हैं जैसे कि राष्ट्रभक्त दीवाने होकर राष्ट्र का ध्वज फहराए फिरते हैं। ओम शांति शांति।

ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। श्रोताओ, यह मंत्र वैदिक जीवन दृष्टि में परस्पर सहयोग, सामूहिक उन्नति, ज्ञान विकास, शक्ति, सद्भाव और द्वेष रहित जीवन की अत्यंत गंभीर भावना को व्यक्त करता है। सामान्यतः यह मंत्र को गुरु और शिष्य के संदर्भ में समझाया जाता है, किंतु इसका भाव केवल किसी एक संबंध तक सीमित नहीं है। इसकी व्यापक भावना प्रत्येक मनुष्य, परिवार, समाज, संस्था, समुदाय और संपूर्ण मानवता पर लागू होती है। मंत्र का मूल संदेश यह है कि मनुष्य अकेले नहीं

बल्कि परस्पर सहयोग और सद्भाव के साथ जीवन को उन्नत करें। श्रोतागण, मंत्र का प्रारंभ ओम से होता है। वैदिक परंपरा में ओम परमेश्वर का महान नाम है। यह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी परमात्मा का बोध कराता है। जब किसी शुभ कार्य या प्रार्थना का आरंभ ओम से होता है, तो मनुष्य अपने जीवन को परम सत्य और धर्म के साथ जोड़ने का संकल्प करता है। यहां ओम केवल उच्चारण मात्र नहीं, बल्कि इस भावना का प्रतीक है कि मनुष्य का जीवन सत्य, ज्ञान, कर्तव्य और कल्याण की दिशा में आगे बढ़े। सहनावतु का व्यापक अर्थ है परमेश्वर हम सब की रक्षा करें। यहां नौ को केवल दो व्यक्तियों तक सीमित करने के स्थान पर व्यापक रूप से हम सब के भाव में समझना चाहिए। मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार की कठिनाइयों से घिरा हुआ है। शारीरिक संकट, प्राकृतिक आपदाएं, अज्ञान, भय, अन्याय, हिंसा, लोभ, अहंकार और सामाजिक संघर्ष मनुष्य की उन्नति में बाधक बन सकते हैं। इसलिए यह प्रार्थना केवल बाहरी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन, विचार, चरित्र और समाज की रक्षा की भावना भी व्यक्त करती है। श्रोताओं, इसका व्यावहारिक उदाहरण परिवार में देखा जा सकता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे की रक्षा करते हैं, कठिन समय में साथ खड़े होते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। इसी प्रकार समाज में लोग एक दूसरे की सुरक्षा और सहायता के लिए नियम, संस्थाएं और सामाजिक व्यवस्थाएं बनाते हैं। जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि दूसरों का कल्याण भी उसके अपने कल्याण से जुड़ा हुआ है, तब समाज में विश्वास और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। श्रोताओं, इसके बाद मंत्र कहता है सहनौ भुनक्तु। इसका भाव है परमेश्वर हम सब का पोषण करे और हम सब के जीवन को समुचित साधनों से पुष्ट करे। भुनक्तु को केवल भोजन करने के संकुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए। जीवन के लिए अन्न आवश्यक है, परंतु मनुष्य को ज्ञान, संस्कार, सद्विचार, स्वास्थ्य, प्रेम, सुरक्षा और उत्तम वातावरण का भी पोषण चाहिए। एक स्वस्थ समाज वही है जिसमें केवल कुछ लोगों की उन्नति न होकर सभी के लिए विकास के अवसर उपलब्ध हों। उदाहरण के लिए, यदि किसी समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा, युवाओं को रोजगार के अवसर, वृद्धों को सम्मान और आवश्यक पड़ने पर सहायता प्राप्त हो, तो वह समाज वास्तविक अर्थ में अपने सदस्यों का पोषण कर रहा है। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी आने वाली पीढ़ियों के पोषण का ही एक रूप है। श्रोताओं, मंत्र का अगला पद है सह वीर्यम करवा वहै। इसका भाव है हम सब मिलकर सामर्थ्य और पुरुषार्थ पूर्वक कार्य करें। वीर्य का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, इसमें मानसिक शक्ति, आत्मबल, उत्साह, साहस, परिश्रम, कार्यक्षमता और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी सम्मिलित है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक सिद्धांत दिखाई देता है, सामूहिक पुरुषार्थ। मनुष्य अपनी व्यक्तिगत शक्ति से बहुत कुछ कर सकता है, किंतु जब अनेक योग्य व्यक्ति

0: एक उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति कहीं अधिक प्रभावशाली हो जाती है। श्रोताओं, इसके बाद मंत्र कहता है तेजस्विनावधीतमस्तु। इसका अर्थ है हमारा अध्ययन और हमारा ज्ञान तेजस्वी हो। यहां अधीतम केवल पुस्तक पढ़ने तक सीमित नहीं है, व्यापक अर्थ में यह हमारे द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुभव और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। तेजस्वी का अर्थ है प्रकाशमान, प्रखर, विवेकयुक्त और प्रभावशाली। मनुष्य को ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो उसके अंदर विवेक उत्पन्न करे। केवल सूचना एकत्र कर लेना ज्ञान नहीं है। ज्ञान का उद्देश्य यह समझना है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और किसी ज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए किस प्रकार किया जा सकता है। श्रोताओं, मंत्र का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है मा विद्विषावहै। इसका अर्थ है हम परस्पर द्वेष न करें। यह केवल दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा न होने की प्रार्थना नहीं है, बल्कि संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए एक महान सिद्धांत है। मनुष्य के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति के विचार, अनुभव, रुचियां और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। मतभेद अपने आप में बुरे नहीं हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मतभेद द्वेष, घृणा, हिंसा और शत्रुता में परिवर्तित हो जाते हैं। यह मंत्र हमें सिखाता है कि विचारों में भिन्नता हो सकती है, परंतु मनुष्यों के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। इस पूरे मंत्र को एक साथ देखें तो इसमें जीवन की एक अत्यंत सुंदर व्यवस्था दिखाई देती है। पहले हम सब की रक्षा हो, सहनावतु, फिर हमारा पोषण हो, सहनौ भुनक्तु। उसके बाद हम सब सामूहिक पुरुषार्थ करें, सह वीर्यम करवा वहै। हमारा ज्ञान और अध्ययन तेजस्वी हो, तेजस्विनावधीतमस्तु, और अंततः हमारे बीच द्वेष न हो, मा विद्विषावहै। श्रोताओं, इस मंत्र का सबसे गहरा संदेश यह है कि व्यक्ति और समाज की वास्तविक उन्नति परस्पर सहयोग से होती है। अतः यह मंत्र हमें सिखाता है कि परमेश्वर की व्यवस्था में रहते हुए हम सबकी रक्षा हो, सबका उचित पोषण हो, हम सब पुरुषार्थ मिलकर करें, हमारा ज्ञान प्रकाशमय और विवेकपूर्ण बने तथा हमारे हृदयों में परस्पर द्वेष न रहे। यदि परिवार, समाज और मानवता इस भावना को अपने व्यवहार में उतार सके तो शिक्षा और ज्ञान का उद्देश्य अधिक व्यापक रूप से सफल हो सकता है। आदरणीय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। हमें विश्वास है कि वेद मंत्र की व्याख्या ने आपके जीवन में सकारात्मक प्रेरणा प्रदान की होगी। इस कार्यक्रम को सजाने हेतु श्रीमती अंजू जी का विशेष धन्यवाद। आप सभी का स्नेह और श्रवण हमारे लिए अमूल्य है। पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

श्रोताओं, जीवन को अगर स्वास्थ्यवर्धक रखना है तो व्यर्थ के विचारों से, नकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को ना भरें। स्वस्थ विचार ही जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करता है और ईश्वर की भक्ति मात्र से हमारे मन को शांति प्रदान होती है।

मन की शांति हर कोई चाहता है, पर मन को शांत करना कोई नहीं चाहता। हम वो हैं जिनकी दृष्टि से माया भागती है, हम वो हैं जिनके संकल्पों से युग पलटता है। हमारे विचार मात्र से हमें परिवर्तन नजर आता है। जीवन में अच्छे विचारों को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से अगर हम अच्छा भोजन ना करें तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो सकता है, उसी प्रकार से हमारे विचारों का भोजन है, हमारे मन का भोजन है हमारे विचार। और हमारे विचारों को अगर हम गलत दिशा की ओर मोड़ेंगे, बुरे विचारों की उत्पत्ति करेंगे, तो अवश्य हमारा मन भी अस्वस्थ रहेगा। सबका भला सोचें, सबका अच्छा सोचें। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन महावीर का वार है, तो आइए भगवान श्री हनुमान का नाम जपते हैं। बल बुद्धि और विद्या के दाता भगवान श्री हनुमान सबका कल्याण करें।

जिसके मन बसे हों राम, वहां खींचे चले आते हैं हनुमान। दो अक्षर का ये प्यारा नाम लेते हुए आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी ने हमारा प्रेम और भक्ति भाव से साथ दिया। ईश्वर सभी का कल्याण करे, सभी का हित हो, सभी का जीवन प्रगतिशील रहे, विकास बना रहे। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन इस अंतिम भजन के साथ हम करेंगे। पुनः हमारी भेंट होगी, तब तक के लिए बस हमारा साथ यूं ही देते रहें। और बस अभी थोड़ी देर में 11 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे विविध भाषाओं के कार्यक्रम। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय 11 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।
2: बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बच्चों के ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर हैरेसमेंट, फर्जी प्रोफाइल्स और खतरनाक कंटेंट, इन बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा के लिए मेटा की एक टीम आज और कल मॉरिशस में रहेगी। सरकार के साथ बातचीत में बच्चों की सुरक्षा, उम्र की जांच और खेल मुगसिया में कंटेंट मॉडरेशन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ICT मंत्री अविनाश राम तोहल चाहते हैं कि शिकायत मिलने पर आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाया जाए और पुलिस जाँच में भी बेहतर सहयोग पुलिस की ओर से जांच में भी बेहतर सहयोग मिले। क्या पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर के मामलों के बीच कोई संबंध है? मॉरिशस में अब इसका वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाएगा। WHO और FAO के सहयोग से एक अध्ययन की तैयारी है ताकि पेस्टिसाइड्स के संपर्क और स्वास्थ्य पर उसके संभावित असर का पता लगाया जा सके। इसी मुद्दे पर अंतर मंत्रालय समिति की पहली बैठक एबन में कृषि उद्योग मंत्री डॉ अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में लगी। कुछ कृषि सामानों में तय सीमा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स मिलने के बाद नियमों पर फिर से गौर किया जाने वाला है। तेज आवाज करने के लिए गाड़ियों के एग्जॉस्ट में बदलाव करने वालों के खिलाफ अब कानून और सख्त होगा। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक पुलिस ने ऐसे मामलों में 289 कंट्रावेंशंस जारी किए हैं। रोड ट्रैफिक एक्ट में हल्के बदलावों के बाद ज्यादा शोर पैदा करने के लिए साइलेंसर में बदलाव करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। पुलिस का कहना है कि सड़क पर अनावश्यक शोर को कम करने के लिए जांच जारी रहेगी। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अपने 40 साल पूरे होने पर स्थानीय सिनेमा और नई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें नेशनल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन 2026 भी शामिल, जो अनुभवी और नए दोनों

0: फिल्म मेकर्स के लिए खुला है। प्रतियोगिता में 3 श्रेणियां रखी गई हैं। पारंपरिक तरीके से बनाई गई फिल्में, एआई की मदद से तैयार फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में। इसके अलावा सिनेमा वीक, अलग अलग कार्यशालाएं और देश भर में फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग्स आयोजित की जाएंगी। विदेश स्तर पर भारत में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव को लेकर विरोध तेज हो गया है। विपक्षी दलों और युवा संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। आज नई दिल्ली में विपक्षी सांसदों और युवा आंदोलन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए और कई रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो देख नहीं रहा। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो देख नहीं रहा। वो माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। वो माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। मौज़े सामईन, उम्मीद है आप बफ़ज़ले खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फ़रोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में हर मंगल की तरह आप समाअत फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, बयान, नातो सलाम और आपके पैगामात। 5251700 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। आसानियों के वास्ते रब की अता है ये, बेकार मसलों में ना ऐसे पढ़ा करो, तुमको हर एक सवाल का मिल जाएगा जवाब, कुरान पाक को हमेशा समझ कर पढ़ा करो। तो आइए आगाज़ करते हैं क़ुरान पाक की तिलावत से। आज आप समाअत फरमाएंगे सूरह अल-माईदा का एक और हिस्सा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हीं में शुमार होगा। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता।

तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है, तुम उनको देखोगे कि वो उनमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं, कहते हैं कि हमें खौफ है कि कहीं हम पर जमाने की गर्दिश ना आ जाए, सो करीब है कि अल्लाह फतह भेजे।

मुसलमानों, तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसके पैगंबर और वो मोमिन ही है जो नमाज पढ़ते और जकात देते और अल्लाह के आगे झुकते हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो वो अल्लाह की जमात में से होगा और अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है।

ऐ ईमान वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है दोस्त न बनाओ, और मोमिन हो तो अल्लाह ही से डरते रहो।

और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई उस पर और जो

कहो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहां इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ और जिनको उनमें से बंदर और सुअर बना दिया और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की, ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर हैं।

और यहूद कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, यानी अल्लाह बखील है, इन्हीं के हाथ बांधे जाएं और ऐसा कहने के सबब इन पर लानत हो। असल यह है कि उसके दोनों हाथ खुले हैं, वो जिस तरह और जितना चाहता है खर्च करता है। और ए नबी, ये किताब जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई, इससे इनमें से अक्सर की शरारत और इनकार और बढ़ेगा, और हमने इनके दरमियान अदावत और दुश्मनी कयामत के दिन तक डाल दी है। जब कभी इन्होंने लड़ाई की आग जलाई, अल्लाह ने उसको बुझा दिया, और ये मुल्क में फसाद के लिए दौड़ते फिरते हैं, और अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता।

और उनको नेमत के बागों में दाखिल करते, और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई उनको कायम करते तो उन पर रिस्क मैं की तरह बरसता कि अपने ऊपर से और पांव के नीचे से खाते। उनमें कुछ लोग मियाना राव हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके आमाल बुरे हैं।

0: जो लोग अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान लाएं और अमल नेक करें, खा वो मुसलमान हो या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई, उनको कयामत के दिन न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। ऐ गफूरुर रहीम, हमारे गुनाहों पे पर्दा अंडाल दे। ऐ रहीम, हमारी हर कता को बख्श दे। अश्क निदामत लेकर तुझे मनाने आए हैं, अपनी टूटी हुई तोबा फिर निभाने आए हैं। जो लम्हे तेरी याद के बग़ैर गुजर गए, जो कदम तेरी रजा की राह से बिखर गए, उन सब पे शर्मिंदा हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, तेरे करम के वास्ते बख्शिश मांगते हैं। दिल से गुरूर कीना और हसद मिटा दे, हमारी रूह को नूर हिदायत से सजा दे। गुनाहों की कशिश से हमें महफूज फरमा, सिराते मुस्तकीम पर हमारे कदम जमा दे। या रब, जब जिंदगी की शाम ढलने लगे और आखिरी सांस सीने में मचलने लगे, लबों पे तेरा जिक्र दिल में ईमान रहे, तेरी रहमत पे हमारा कामिल गुमान रहे। हम गुनहगार सही मगर तेरे बंदे हैं, तेरी रहमत के तलबदार, तेरे दर के सवाली हैं। हमारी तौबा कबूल फरमा, ए रब करीम, हमें बख्श दे, हमें

अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि उसके ख़जाने कभी खाली नहीं होते। वो हमारी आवाज़ से नहीं उकताता, वो हमारी इल्तिजाओं से नाराज़ नहीं होता, बल्कि उसे पसंद है कि उसका बंदा अपनी ज़रूरियात, अपनी परेशानियाँ, अपनी ख्वाहिशात, अपने आंसू और अपनी उम्मीदें सब कुछ उसके सामने रख दे। अपनी छोटी ख्वाहिश भी उससे कहो, अपना बड़ा ख्वाब भी उसके हवाले करो, दिल का दर्द भी उसे सुनाओ और वो दुआ भी मांगो जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। कभी दुआ फौरन अता बनकर मिलती है, कभी किसी आने वाली मुसीबत को टाल देती है, और कभी अल्लाह ताला उसे हमारे लिए उस वक्त तक महफूज रखता है जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। बस मांगते रहो, दिल खोल कर मांगो, यकीन के साथ मांगो, आंसुओं के साथ मांगो, सजदों में मांगो, तन्हाई में मांगो, क्योंकि तुम्हारा रब्बुल करीम है, वो देने से नहीं थकता, उसके खजाने कम नहीं होते और उसकी रहमत की कोई इंतहा नहीं है। मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:27 हो चुके हैं। मंगल का दिन है, अक्टूबर की 6 तारीख है और माह रबीउस्सानी की आज 24 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं, 5251700। जी हाँ, 5251700 05 के

0: ज़रिए आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर मंगल की तरह अब आप समाअत फरमाएंगे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाइलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: نحمد نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا الذين آمنوا لا تتولوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ عِيسُ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا عِيسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سامعين حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। पिछली गुफ्तगू मेरी कुरान हकीम सूरे मुमतहना की आयत मुबारक कब्र वालों के तसर्रुफ और अख्तियारात, आयत मुबारक कुरान सूरे मुमतहना की है। या الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم, ईमान वालों ऐसी कौम के साथ ना रहो जिस पर अल्लाह का ग़ज़ब है। और ग़ज़ब की वजह क्या है? कद ऐसु मिनल आखरत, वो आखरत से ना उम्मीद हैं। उनका अकीदा ये है कि आखरत माने कुछ नहीं है, जो कुछ है दुनिया है। उनको ये अकीदा मिला कहाँ से? कमा ऐसल कुफ्फार मिन असहाबिल कुबूर, जैसे कुफ्फार का अकीदा है कि कब्र वालों से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, कोई फैज़ नहीं मिलता। तो ये अकीदे कुफ्फार है, और अकीदे ईमान ये है कि साहब कब्र को अल्लाह ने जो तसर्रुफात और जो अख्तियारात दे दिए हैं अल्लाह की दी हुई अता से, वो कब्र में भी रहकर लोगों की मदद करते हैं। पिछली गुफ्तगू हुज़ूर नबी करीम सल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से हमने पेश किया। आज इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और हुज़ूर सैयदना ग़ौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर रदी अल्लाहु ताला के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो सामेईन हज़रात, से पिछली गुफ्तगू हमने बताया कि साहिब कब्र को अल्लाह ने जो अख्तियारात दे रखे, जो तसर्रुफात दे रखे हैं अल्लाह की दी हुई अता से, वो अपने चाहने वाले, अपने ज़ायरीन यानी ज़ियारत करने वालों को फ़ैज़ देते हैं। चलिए आज हम गुफ्तगू करते हैं, एक वजीफ़ा है जिसे हम और आप पढ़ते हैं, बिलखसूस अहले सुन्ना वल जमा, और अहले सुन्ना वल जमा में जो सिलसिले क़ादरिया से वाबस्ता हैं बड़ी मोहब्बत से, या शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी शैयन लिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ते हैं। तो क्या ये वजीफ़ा जायज़ है? और बहुत से सूफिया इसे यूं भी पढ़ते हैं, या सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी शैयन लिल्लाह, ए हमारे सरदार अब्दुल क़ादिर जीलानी शेख आज़म शैयन लिल्लाह, अल्लाह के लिए मेरी मदद फरमा दें। सैयदना ग़ौसे जीलानी रदियल्लाह तआला के फ़ज़ाइल और महामिद और मारिफ और कमालात, तसर्रुफ़ो करामात में उनकी जलालत खुसरवी के हवाल, तो आपको इस अजीम और जलील एक किताब है, आप उसे मुताला करें, जिसमें तस्किरे से नग़ौसे पाक बहजतुल असरार, इसका मुताला करें। अज़ान मोहतरम, इस अरबी जुमले का उर्दू तर्जमा यह है, ऐ हमारे आका शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी खुदा के लिए कुछ अता हो। अरबी का ये फ़क़रा बिल्कुल ऐसे ही जैसे आम बोल

चाल में हम कहा करते हैं, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, यानी अपनी इमदाद के लिए मैं खुदा का वास्ता देता हूँ। ज़बान का ये मुहावरा अवामो ख़ास में सबके दरमियान राइज है, लेकिन आज तक कोई इस पर मोतरिज़ ना हुआ, एतराज़ ना किया। आप ये कहीं या यहाँ एतराज़ करने वाले का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, ये जुमला बोलने वाला जिससे मुखातब वो सुन भी रहा है और मदद करने की कुदरत भी रखता है। लेकिन या सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीनुल्लाह में न मुखातब सुनना है और न उसके अंदर मदद करने की कोई कुदरत है। ये सामने वाले कम पढ़े लिखे लोगों का एतराज़ है। मैं अर्ज़ करूँगा, आपकी ये दोनों बातें ला इल्मी पर मबनी हैं, वरना हकीकत ये है कि मुखातब सुन भी रहा है, मदद करने की कुदरत भी रखता है। मुखातब को चूँकि अल्लाह ने ताकत दे रखी है, बस फ़र्क ये है कि आप मुर्दा समझते हैं, इसीलिए आपको गलत फहमी हो गई कि मुर्दे कैसे सुन सकता है, कैसे सुन सकते हैं और मुर्दे के अंदर मदद करने की कुदरत कहाँ से पैदा हो सकती है। अब ये दोनों बातें हम चंद दलाइल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी हदीसों से साबित है, मुसलमान मुर्दे अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जैसा कि इमाम बहकी और इमाम असाकर ने हज़रत अबू हुरैरह से रवायत से बयान किया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जब आदमी किसी ऐसे शख्स की कब्र पर गुज़रता है जिससे दुनिया में जान पहचान थी और वो उसे सलाम करता है, तो वो सलाम का जवाब भी देता है और उसे पहचानता है। जिससे जान पहचान नहीं थी उसे पहचानता तो नहीं है, लेकिन उसके सलाम का जवाब देता है। चलिए, और दूसरी हदीस इमाम अहमद अबू दाऊद ने हज़रत बरा इब्न आज़िब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की, उसमें हुज़ूर अनवर सल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैयत को दफन करके लोग वापस लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की पहचल की आवाज़ सुनता है। इमाम मुस्लिम की दूसरी रवायत है, जब मैयत को दफन करके लोग वापस होते हैं तो मुर्दे उनके जूतों की पहचल यानी आवाज़ जो होती है सुनता है। इन तमाम हदीसों से ये बात अच्छी तरह साबित हो गई कि आप मुसलमान अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, सुनते हैं, पहचानते हैं और सलाम का जवाब देते हैं। जैसे कि हम और आप भी जब कब्रिस्तान पहुँचे तो अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर कहते हैं, तो सलाम करना हुजूर की सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अगर हम ये ख्याल करें कि मुर्दे नहीं सुनते हैं तो फिर वाजिब ना अदा करने वाला गुनहगार होगा। तो वो कब्र में किस हाल में है हमें नहीं खबर, तो एक और उन पर हम गुनाह थोप दे रहे हैं कि बेचारे वो किस हाल में हैं। अगर वो नहीं सुनते हैं तो वाजिब जो ना अदा करे गुनहगार होगा, तो हमें सलाम तो नहीं करना चाहिए। तो ये हदीस अमली तौर पर हमें और आपको सबक दे रही है कि वो सुनते हैं, हमारे सलाम का जवाब देते हैं। अलबत्ता हमारे कानों में वो ताकत अल्लाह ने नहीं दी है कि हम उनके जवाब को सुन सकें। इसी के साथ ये भी सुन लीजिए, रूह आलम बाला में रहती है और सलाम करने वाला उसकी कब्र पर सलाम करता है और वहीं से उसके सलाम को सुनती है, जवाब देती है, जैसा सुनने नसाई की शरह में मौजूद है। रूह की एक शान ये भी है कि आलम बाला में रहते हुए भी बदन से उसका ताल्लुक़ कायम रहता है और वहीं से वह सलाम की आवाज़ सुनती और जवाब देती है। जब आम मुसलमान मुर्दों की रूहों की कुव्वत और समात का ये आलम है, वो आलम बाला से सलाम की आवाज़ सुन लेती हैं,
تو اولیاء اکرام کی ارواح مقدسہ

रहे, इनकी फैमिली दुआगो है कि अल्लाह पाक मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और पाक परवरदिगार उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।

मौज़ सामईन, आइए समाअत फरमाइए चंद अक़वाल ज़री। अपनी ख्वाहिश अल्लाह से कहो, क्योंकि वो लफ्ज़ों से पहले दिल की कैफियत जानता है। रिस्क सिर्फ माल नहीं, सुकून, सेहत, मोहब्बत, नेक लोग और दिल का इत्मीनान भी रिस्क है। इंसान दरवाज़े बंद देखता है, अल्लाह उन रास्तों को भी जानता है जो अभी हमें दिखाई नहीं देते। सजदे में बहने वाले आंसू कभी बेमाने नहीं होते। जो नेमत आज मामूली लगती है, किसी दिन उसी के लिए दिल तरस सकता है। इसलिए हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखो, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं मगर अल्लाह ताला की रहमत हमेशा बाकी रहती है। दुआ करते

रहो, सब्र करते रहो और यकीन कायम रखो, अल्लाह की तदबीरें हमारी सोच से कहीं बेहतर हैं। अल्लाह से मांगने में कभी नहीं झिझको, उसके ख़जाने बेहिसाब और उसकी रहमतें बेशुमार हैं। सबसे खूबसूरत इत्मीनान ये है कि तुम जानते हो कि हमारा रब हमें देख रहा है, सुन रहा है और हमारे हालों से वाकिफ़ है।

0: अशी अचानक आली घरी।
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

节目愉快，听众朋友大家好，今天也是由我张大威继续陪伴大家一起听歌，希望今天的节目能为您带来一些美好的陪伴。

毛里求斯广播电台819频道，继续为您播放好听的歌曲。

आपकी पसंद, आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। तो चलिए शूटआउट, सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है आपकी पसंद, तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम। वैसे हमारा फ़ोन नंबर वही है 4028085। हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 5251700005। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रही है।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम प्रसारित कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए, आपके फ़ोन कॉल्स और आपके प्यार भरे मैसेजेस के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हमारे साथ सुदेवी जी है वाकवा की रहने वाली। ये अगला गीत है जाएगा थियोले की दीदी ललिता के लिए। कुशल परिवार है, दीदी सुनीता है, देवीना माला बिंदु मालिंगा के, याशना नीरज और अमतन परिवार, रिदोई परिवार, कागुआ परिवार, जालू परिवार, सभी टीम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के नाम जो है बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम चला रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए, गीतों का एक खूबसूरत सफ़र से हम आगे बढ़ाएंगे और ये अगला गीत, चलिए शुरू करते हैं अगला नज़ाना। बहुत ही प्यारा सा गीत है जो आप सुनना पसंद करेंगे। तो ये अगला गीत जो है इन सभी लोगों के लिए, साथ में है राधा पिछवेरजे सैपिया की रहने वाली है, तो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत उनके नाम भी हम करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है इस कार्यक्रम में समस्त सुनने वालों के नाम हम कर दिए हैं।

फिल्म का नाम है छोटी सी मुलाकात और इस फिल्म से लिया गया गीत है। बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है इस फिल्म से लिया गया हम चला रही है और इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक जो है आप बेहद ही पसंद करने वाले हैं और प्यारा सा गीत जो है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में।

तो आइए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे हम आपको इशारा करें कि कुछ ही घड़ी में सपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे इसी चैनल पे। तो अगला गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ, करुणा है, अमृता, इंदिरा, कविता, ये सभी लोग जो है मौरारबिया के रहने वाले हैं। तो चलिए उन लोगों की फरमाइश पर ये अगला गीत जो है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी सुनने वालों के नाम जो है, ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका के कारोबारियों का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों व्यापार और निवेश से जुड़े एक फोरम में हिस्सा लेने के लिए मॉरिशस में है। ये पहल मॉरिशस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी MCCI ने केप टाउन की व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली एजेंसी वेस्ट्रो के सहयोग से आयोजित की है। इस बैठक का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका की विशेषज्ञता और क्षमताओं को सामने लाना तथा क्षेत्र में कारोबार के नए अवसरों को बढ़ावा देना है। इस फोरम की शुरुआत आज सुबह हुई। COP31 से पहले मॉरिशस और प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश समुद्र के बढ़ते जलस्तर के खतरे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। आज सुबह फिजी में आयोजित प्री कॉप में नेताओं के पूर्ण सत्र के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने छोटे द्वीपीय विकासशील देशों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु वित्त तक पहुंच सुनिश्चित करना और धरती के बढ़ते तापमान से होने वाले नुकसान को कम करना जरूरी है। मॉरिशस में 2024 के दौरान महिलाओं में कैंसर के 1891 मामलों की पहचान की गई। इनमें से 37.5% मामले स्तन कैंसर के थे। इलाज के साथ साथ मरीजों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहयोग देना भी बेहद जरूरी है। गैर सरकारी संस्था लिंक टू लाइफ मरीजों को ये सहयोग प्रदान करती है। पिंक अक्टूबर के इस महीने में संस्था लोगों को स्तन कैंसर की समय रहते जाँच कराने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। और अफ्रीका के आर्थिक भविष्य को लेकर कर व्यवस्था, निवेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हुई। ये चर्चा डिलॉयट की टैक्स कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण के दौरान हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि कर व्यवस्था में सुधार से अफ्रीकी महाद्वीप की आर्थिक वृद्धि को तेज किया जा सकता है। वहीं मॉरिशस का लक्ष्य खुद को एक मजबूत वित्तीय केंद्र और नई तकनीकों, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में और मजबूत करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के साइबेरिया क्षेत्र के इरकुस्क में प्लेग से 28 वर्षीय एक प्रयोगशाला टेक्नीशियन की मौत के बाद सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन किया गया है और कम से कम 5 अस्पताल बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब टूटने के बाद वह निमोनिक प्लेग से संक्रमित हुई थी। इस टेक्नीशियन के संपर्क में आए 200 से अधिक लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। इरकुस्क में सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी रद्द किए जाने की खबर है। निमोनिक प्लेग क्या है? यह प्लेग एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित पिसुओं के काटने या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से इंसानों में फैल सकती है। निमोनिक प्लेग, जिसे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला प्लेग भी कहा जाता है, इसका सबसे खतरनाक रूप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसके लक्षण संक्रमण के बाद बहुत तेजी से सामने आ सकते हैं। कभी कभी 24 घंटे के भीतर इसमें सांस लेने में तकलीफ और तेज खांसी जैसे गंभीर लक्षण शामिल हैं। खांसी के साथ खून मिला बलगम भी आ सकता है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on MBC Play and MBC.mu.
3: kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: श्रोताओं, आइए सेंट्रल एक्सिस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। सैंखवा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रूट बासे नंबर 1, नंबर 2 और लेकोनू के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 को दिन के 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। आइए आपके पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।
4: आपकी पसंद,
0: चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद

कम को हम आगे बढ़ाएंगे 4008085 पे आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो चलिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 2517005। हमारे साथ मोताबा की कमला जी जुड़े हुई है, कमला दीनू जी। ये अगला गीत जाएगा खास उनकी आरोही के लिए। सीता है, रियांश है, साथ में है उनकी कज़िन कृष्णावती रामरेखा जो कि बीमार है। तो चलिए वो जल्द से जल्द जो है स्वस्थ हो जाए, हमारी यही कामना है। और समस्त रामरेखा परिवार के लिए जो है ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। तो चलिए दीनू परिवार के लिए, रामरेखा परिवार के लिए ये अगला गीत द बर्निंग ट्रेन फिल्म से लिया गया।

आपकी पसंद कार्यक्रम श्रोताओ रेडियो मॉरिशस पे है। तो चलिए हम अगले गाने की ओर बढ़ रही है। काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वानी डुमन जो है वाकवा से, तो चलिए उनका ये अगला गीत जाएगा उनके सभी बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा उनकी सहेलियों है, नीला, प्रतिभा, शोभा, साथ में गीता है। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत जो है इन सभी श्रोताओं के नाम हम कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सा नजाना जो है आप सभी सुनने वालों के नाम रेडियो मॉरिशस पे 402-8085 पे आप बहुत ही प्यार के साथ निभा रहे हैं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है अंगारे और इस फिल्म से लिया गया गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए एक से बढ़कर एक गीत आप सभी सुनने वालों के नाम कर रहे हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

चलिए श्रोताओं, आशा जानू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और ये अगला गीत जाएगा उनके मामा है कुमारी, उनके नेफ्यूज़ है शुभम, ऋषभ, डीडी, आरती जी, जुराज, जानू परिवार है साथ में, है चित्रा जी, है भाई विजय, है सभी लिसनर्स के नाम एमबीसी टीम के लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, प्यार प्यार के नाम कुर्बान, जी हाँ। और इस फिल्म से लिया गया गीत जो है जाएगा इन सभी श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही प्यारा सा गीत जो है इसी फिल्म से लिया गया। तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम, ये सब लोग जो है कॉटेज के रहने वाले हैं, तो ये प्यारा सा गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इन सभी लोगों के नाम, साथ दे रही है गांव की सुनीता जी। तो चलिए ये प्यारा सा गीत जो है हम सुनीता जी के नाम हम करेंगे।

वो आपकी पसंद के रकम को हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम एक अगला गीत सुनने वाले हैं। अगला गीत जो है हमारे साथ सुरेखा जी है, दीपिना की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। माला सुमारू जी है, कथोबोन की रहने वाली, उनके पति है सूर्य देव जी। तो इन सभी लोगों के नाम जो है हम बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। जी हाँ, प्यारा सा नज़ाना जो है फिल्म बाज़ीगर से लिया गया।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं, हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं और ये अगला गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ माँ गायत्री जी हैं, नोवेल फ्रांस की रहने वाली, उनके बेटे हैं अजय, उनके समस्त परिवारों के लिए अनीता जी है पोंफिया की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए ये अगला गीत उनके नाम भी हम करेंगे।

चलिए श्रोता, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। हमारी सारे ख्वाहियों की रहने वाली नीलम जी जुड़ी हुई है, उनके बेटे अभिषेक या अविनाश शर्मा फुकियाचंद का जन्मदिन है आज। तो ढेर सारी बधाइयाँ है समस्त परिवारों की तरफ से। नीलम है निक्षु, मामा है मोहन, पापा है चांद, साथ में है आश्ले, अविशा है साथ में अभिषेक जिंगरी। तो समस्त परिवारों की तरफ से उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, वो हमेशा स्वस्थ बनी रहे। तो चलिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम उनके नाम कर रहे हैं ढेर सारी बधाइयों के साथ।

0: ears are lax.
1: श्रोताओ, कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और आप जो है ये अगला प्रोग्राम जो है तमिल भाषा में सुन सकेंगे। तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है, ये प्यारा सा गीत जो है हमारे साथ इस समय किरचिया कथबोन की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए ये गीत उनकी दो बेटियों के लिए, नेहा नितिशा उनके दामाद है, अरविंद उनके पति है आनंद जी। तो चलिए ये प्यारा सा गीत इन लोगों के नाम हम करेंगे।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। अंतिम नजाना जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, आप सभी सुनने वालों के नाम ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है, ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम जो है हम कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय त्रिवेणी जी है, गुडलैंड की रहने वाली, और उनके पति है अनिल जी, और सभी मोहन परिवार के ये अंतिम नजाना हम चला रहे हैं। तो चलिए, आप सभी को नमस्कार।

तो चलिए इसी गीत पे हम जो है नाम जोड़ेंगे। हमारे साथ इस समय जो है सरिता जो है कथुबोन की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए ये प्यारा सा गीत उनके नाम भी हम करेंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सीबी की ओर से सुनिए एक विज्ञप्ति। सेंट क्वा के आसपास के इलाके रूट बासे नंबर वन, नंबर टू और ले कोनू के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 सुबह के 8 बजे से शाम के 4:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और त्वाबुचिक के रहने वाले जी हाँ के आसपास के इलाके गांधी रोड और SSR लेन त्वाबुचिक के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 7 अक्टूबर 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहक

0: को के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: 819 kHz. This is Radio Marches. Radio Marches.
0: पाँच बजकर छः मिनट हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आदाब आप सबको और आपका स्वागत है रेडियो मॉरिशस पर। और आप सभी का अपना कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में मैं उषा कौर। जी हाँ, यहाँ पर छः बजे तक हम साथ देंगे। और कहते हैं ना, कुछ गीत सिर्फ सुनने नहीं जाते लेकिन महसूस किए जाते हैं, और कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी दिल के किसी कोने में बिल्कुल वैसे ही बसी रहती है। और पुराने गीतों की बात ही कुछ और है दोस्तों, उनमें मोहब्बत भी है, बिछड़ने का एहसास भी, खुशी भी है और जिंदगी के अनेक रंग है। एक गीत बजता है और अचानक हमें याद आ जाता है कि कोई पुराना चेहरा, कोई पुरानी शाम, कोई अपना या बहुत खास लम्हा, जी हाँ वो सब फिर से याद आ जाता है। और चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा गीत के साथ, और आपके दिल की किसी पुरानी याद को ज़रूर जगा देंगे।

5:19 हुए हैं। श्रोताओं, पुराने गीतों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन गीतों से जुड़ी यादें वही रहती हैं। और कभी किसी गीत को सुनते ही हमें अपना बचपन याद आ जाता है, कभी स्कूल के दिन, कभी दोस्तों की महफिल, और कभी किसी अपने के साथ बिताई हुई शाम। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं।

दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोबारा जी नहीं सकते, लेकिन उन पलों को याद ज़रूर कर सकते हैं। और जब उन यादों के साथ कोई पुराना गीत जुड़ जाए तो लगता है जैसे वक्त के ढेर के लिए ढेर सारी खुशियां हमको मिलती हैं। और एक धुन, कुछ बोल और दिल में छुपी हुई कहानी। चलिए अगला गाना सुनते हैं एक बार फिर से रफ़ी साहब की आवाज़ में।

5:53 हुए हैं दोस्तों, इसी के साथ आज के भोले बिसरे गीत का सफ़र अपनी मंजिल तक का पहुंचता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने याद किया और इस प्रोग्राम को एंजॉय किया। फिर मिलेंगे, फिर सुनेंगे पुराने नगमे और फिर खोलेंगे यादों की वही पुरानी किताब। तक तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिल में संगीत को जिंदा रखिए। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 की सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। फिजी में लग रहे प्रीकॉप सम्मेलन के अंतर्गत लगे प्लीनरी सत्र में आज सुबह गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने छोटी विकासशील टापू देशों से एकजुट होने का आह्वान किया ताकि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के वास्ते क्लाइमेट फाइनेंस प्राप्त कर सके और ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे नुकसान कम किए जा सके। परिवारों खासकर नौजवानों को मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़े खतरों को लेकर सचेत कराने के मकसद से गजीदांस वाली जी में कल रात एक कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया गया। अंतरिम प्रधानमंत्री ने ज्यादा परिवारों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अभियान दूसरे इलाकों तक भी बढ़ाए जाने का ऐलान किया। सन 2024 में मॉरिशस में महिलाओं में कैंसर के 1,891 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 37.5% ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन

0: कैंसर के मामले थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रस्त मरीजों के लिए इलाज के साथ साथ उनके और उनके परिवारों के लिए मानसिक समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गैर सरकारी संगठन लिंक टू लाइफ अर्ली स्क्रीनिंग पर खास बल दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों छात्र प्रदर्शनों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। वे शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 2000 से ज्यादा स्कूलों के सामने घेराबंदी की। पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। अगले महीने लगने वाले COP31 सम्मेलन के सिलसिले में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस संदर्भ में मॉरिशस और प्रशांत महासागर के टापू देश बढ़ते समुद्री जलस्तर के खतरे को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। फिजी में लग रहे प्रीकॉप सम्मेलन के अंतर्गत लगे प्लेनरी सत्र में आज सुबह गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मगोखुल ने छोटे विकासशील देशों टापू देशों से एकजुट होने का आह्वान किया ताकि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के वास्ते क्लाइमेट फाइनेंस प्राप्त कर सके और ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे नुकसान कम किए जा सके। काविन तापिसा की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
1: गणराज्य के राष्ट्रपति ने कहा कि मॉरिशस जैसे छोटे टापू विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुसार खुद को ढालना आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और पर्यावरण के अस्तित्व का सवाल है। इन परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति के अनुसार जलवायु फाइनेंस तक पहुंच को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मॉरिशस के लिए हमारी प्राथमिकता मिटिगेशन, अडैप्टेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट फाइनेंस और परिवर्तन पर केंद्रित रहेगा। छोटे टापू देशों के लिए अनुकूल वित्तीय सहायता छोटी परियोजनाओं को लेकर तैयार की जाएगी, न कि कॉन्टिनेंटल मंडियों के लिए। धर्मगोखुल ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत की ओर से जलवायु संबंधी देशों की जिम्मेदारियों पर जारी सलाहकारी राय का सम्मान किए जाने की अपील की। इस राय में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की सिफारिश की गई है। मॉरिशस के पास अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के सामने जाने का अनुभव है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून बहाल हो। अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं और सभी देशों को ऐसा करने की मांग करते हैं।
2: And we ask every state to do the same.
1: इससे पहले टुलावा में आयोजित सोटालागा, जो संवाद और अनुभव साझा करने के लिए एक पारंपरिक मंच है, अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने COP31 से पहले वैश्विक सामूहिक और तत्काल कार्रवाई की अपील की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बड़े देशों की सामूहिक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
0: परिवारों, खासकर नौजवानों को मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़े खतरों को लेकर सचेत कराने के मकसद से रेजिडेंस वाली जी में कल रात एक कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया गया। अंतरिम प्रधानमंत्री यहिया नवामागी मौके पर उपस्थित हुईं। इस संघर्ष के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन अनुला इलाके के सामुदायिक केंद्र में अगले 10 हफ्तों तक सप्ताह में 2 प्रिवेंशन सत्र का आयोजन करेगा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्यादा परिवारों के बीच जागरूकता बढ़ाने और ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष में समुदायों को एकजुट करने के लिए ये अभियान दूसरे इलाकों तक भी बढ़ाया जाएगा। कोयल सितल, गीता सोनाई।
1: हर हाथ में एक मशाल, नशे के खिलाफ उठती आवाजें। सोमवार शाम रेजिडेंस वाले जी की सड़कों पर लोगों ने अंतरिम प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मार्च किया। इसका उद्देश्य इलाके को रोशन करना और ये संदेश देना था कि नशे का विरोध करें और इस समस्या के खिलाफ चुप्पी तोड़ें। इस अभियान में परिवारों, युवाओं और बच्चों के साथ साथ नशे की लत से प्रभावित लोग भी शामिल हुए। मैं भी पहले सिंथेटिक ड्रग्स लेता था, लेकिन अब 13, 14, 15 साल के नौजवान इसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ अपना समर्थन देने आया हूँ, उन्हें जागरूक करने के लिए। समर्थन जरूरी है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, इसके प्रभाव में वे जल्दी आ जाते हैं। ये पहल रेजिडेंस वाली जी कम्युनिटी डेवलपमेंट एसोसिएशन ने शुगर इंडस्ट्री लेबर वेलफेयर फंड के सहयोग से शुरू की है। इसका उद्देश्य अवैध नशीले पदार्थों के

0: दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाना है। अगले 10 हफ्तों तक अनुला एनजीओ परिवारों और स्थानीय लोगों के लिए नशे से बचाव को लेकर जागरूकता सत्र आयोजित करेगा। संगठन के अध्यक्ष जोजे आचुन कहते हैं, 12 चरणों का एक प्रोग्राम है, 6 हफ्तों में इस पर काम करेंगे। बचाव, इलाज, पुनर्वास और समाज में फिर से शामिल करना इसके अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है कि अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। ये अभियान आसपास के अन्य इलाकों तक भी चलाया जाएगा। अंतरिम प्रधानमंत्री आर्यन नावामागे ने इस लड़ाई में परिवार के मार्गदर्शन और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। वे कहती हैं, ड्रग की समस्या हर जगह है। अगले सप्ताह से एक विशेषज्ञ
1: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। गोशबा में जल्द ही मूल ढांचा संबंधी एक वृहद विकास परियोजना साकार होगी। इसकी प्रस्तुति आज भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने कि इसके लिए 100 मिलियन रुपए निवेश किए जा रहे हैं। मकसद है इलाके के निवासियों के लिए आवासीय सुविधाएं स्थापित करना। मंत्री शकील मोहम्मद ने पंदरगा क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों से इस पहल में आर्थिक योगदान देने की भी मांग की। मिगान पुनापलाकेन, करुणा लालू।
0: कुतुगाफे में कुछ परिवार वर्षों से बिना पानी और बिजली के रह रहे हैं। करीब 40 परिवारों के पास अपनी जमीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, लेकिन इन जमीनों पर अभी तक पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंच पाए हैं। 10 साल हो गए हैं जब से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पानी और बिजली पाने की कोशिश की, पानी के लिए रोजिल गई, पैसे भी चुकाए। जब वे यहां आए तब हमें बताया गया कि जब परियोजना होगी तब पानी मिलेगा, अभी नहीं मिल सकता। जमीन तक पहुंच भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सड़क, पानी और बिजली के कनेक्शन, बुनियादी ढांचा, कई समस्याओं का अब भी समाधान किया जाना बाकी है। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद CWA और CEB के प्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 20 परिवार अभी भी अपनी स्थिति नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। मंत्री शकील मोहम्मद कहते हैं, वित्त मंत्रालय से आर्थिक मदद मांग सकते हैं ताकि सड़क बनाई जा सके, नालियां बनाई जा सके जिससे भारी बारिश के दौरान घरों में पानी न भरे और उन्हें पानी और बिजली की सप्लाई भी मिले। अन्य लोगों को भी नियमित करने पर काम करेंगे, कानून के अनुसार मंत्रालय के अफसरों के सहयोग से। हालांकि सभी मामले एक जैसे नहीं हैं। समुद्र के किनारे कुछ लोग बिना अनुमति के जमीन पर कब्जा करके रह रहे हैं। मंत्री शकील मोहम्मद कहते हैं, पब्लिक बीच पर कई अवैध निर्माण हैं, जो सार्वजनिक समुद्र तट पर हैं। बीच अथॉरिटी ने नोटिस दे दिया है, मेरा मंत्रालय भी नोटिस देगा ताकि उन्हें यहाँ से हटाया जा सके, पर इन्हें अन्य जगहों में बसाया जाएगा।
2: Qui le public beach qui proclamait public beach. Alors mon objectif, c'est demande à Beach Authority et na fin fini CRV notice, mon ministère aussi pour CRV notice pour qu'ils nous cartier les autres. Mais en même temps, nous pousserons les autres par là, s'il y en a place. Moi pas pour faire difficulté là, mais moi pour intransigeant.
0: पुराने मामलों को नियमित करने से लेकर अवैध कब्जों तक अब अधिकारियों को इन सभी मामलों की जांच करनी होगी।
1: जिसे आप अभी सुन रहे थे कि कुतुगाफे में सदस्यों परिवार अभी भी स्वच्छ पानी और निचली और बिजली आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कईयों के पास अपनी ज़मीन के लिए सालों से कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने CWA CEB के प्रतिनिधियों के साथ कल स्थल का दौरा किया। मकसद रहा स्थिति का जायजा लेना, जो कुछ निवासियों के लिए लगभग 15 सालों से खींचती चली आ रही है। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग जो जनवरी 2027 से अपनी स्टेट एज पेंशन लेना चाहते

0: चाहती हैं वे कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। लाभार्थियों को अपनी स्टेट एज पेंशन प्राप्त करने के लिए चुनी गई तारीख से 3 महीने पहले तक आवेदन करने की सुविधा है। सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने आज दोपहर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का डेमो भी किया। लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए या ऑनलाइन पोर्टल musap.gov.mu.org पर अपने विवरण दर्ज कर सकती हैं। जूनियर मंत्री कुगान परापेन को सुनते हैं।
1: Donc le SAP il rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2027. Et le SAP il est appelé à remplacer le Basic Retirement Pension, le BRP. Et ça veut dire du 31 décembre 2026 au 1er janvier 2027, nous pouvons assister à la disparition du BRP et à la naissance du SAP. Mais mon avis, c'est pas un bénéficiaire du SAP en des catégories bien distinctes. D'abord, une première catégorie, c'est un dimoun qui déjà peut recevoir une pension BRP. Aujourd'hui, nous avons à peu près un peu plus que 260 000 personnes âgées, man seniors, qui bénéficiaient du BRP. Et pour ça, man dimoun là, comme le ministre disait précédemment, je suis capable de dormir tranquille. Je paye na aucun application pour faire. Je paye na pas en ligne, je paye na pas online. Je peux transitionner automatiquement du BRP au SAP. Donc, zéro application pour un bénéficiaire actuel du BRP. Je n'ai pas besoin de soumettre aucune application. Quand le SAP rentre en vigueur, c'est juste un changement d'appellation. Au lieu de que je peux recevoir BRP, je peux recevoir SAP au même montant que le BRP, avec un ajustement qui pourrait n'avoir rapport au coût de la vie, etc.
0: इसके लिए जरूरी दस्तावेजों में राष्ट्रीय पहचान पत्र, पता, पासपोर्ट या जहां लागू हो नागरिकता प्रमाण पत्र शामिल हैं। एक बार फिर सुनते हैं जूनियर मंत्री कुगान पहापेन को।
1: L'application en ligne, le online application pour le SAP, lui concerne uniquement un nouveau bénéficiaire du SAP. C'est-à-dire un dimoun qui, au 1er janvier 2027, participe à recevoir BRP et qui a été un nouveau bénéficiaire et c'est autres qui besoin à faire application pour ce SAP. Si nous mettons en chiffre ou en date, n'importe qui s'en a qui naît avant le 31 décembre 1965, lui est déjà bénéficiaire du BRP ou les pour bénéficiaires du BRP jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, lui, pas d'application qui lui besoin faire. L'application lui concerne principalement et uniquement Bandimoun qui est né à partir du 1er janvier 1966. C'est-à-dire Bandimoun qui gagne 60 ans à partir de janvier 2026. Et si l'on veut simplifier les choses, pour faire l'application, pour capable soumettre aux applications, pareil que manifeste tout le temps la pratique dans la sécurité sociale pour le BRP, ou pour capable soumettre aux applications à partir de 3 mois avant qu'ils décident pour touche ou SAP.
0: जिन लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई होगी उन्हें आने वाले दिनों में देश भर के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा मंत्रालयों में सहायता दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय को जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन लागू होने के साथ करीब 18,000 ऑनलाइन आवेदनों की उम्मीद है। सन 2024 में मॉरिशस में महिलाओं में कैंसर के 1,891 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 37.5% ब्रेस्ट कैंसर के मामले थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रस्त मरीजों के लिए इलाज के साथ साथ उनके और उनके परिवारों के लिए मानसिक समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभा

0: चलाता है। गैर सरकारी संगठन लिंक टू लाइफ ये जरूरी सहायता प्रदान करता है और इस पिंक अक्टूबर के दौरान ये संगठन शुरुआती जांच यानी अर्ली स्क्रीनिंग पर खास बल दे रहा है। सिंचा मुतु करुणा लालू
1: उनचास साल की उम्र में मालिनी को अपने स्तन कैंसर का पता चला। निराश होने के बजाय उसने अपनी हिम्मत दिखाई। एक पारिवारिक समस्या है, माँ और दो बहनों को भी ये बीमारी हुई, मेरे लिए नई बात नहीं। हर साल अपना मुआयना कराती हूँ, बहुत पहले ही इसका पता लगा लिया था, इसलिए उपचार मुश्किल नहीं। 4 साल से इलाज पाने वाली पास्काल लिंक टू लाइफ द्वारा आयोजित गतिविधियों में हमेशा भाग लेती हैं। उन्होंने कहा बहुत दर्द होता है, ताई ची योगा अभ्यास करने से मदद मिलती है, पोषण भी बहुत जरूरी है, सोफोलॉजी भी करते हैं ताकि शांति मिल सके। हम सभी एक दूसरे को समझते हैं, आज ठीक हैं, कल उठ नहीं सकते क्योंकि थकावट होती है।
2: On peut pas se réveiller. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué.
3: On va venir demander à notre corps d'enlever toutes les tensions.
1: मंगलवार को सोफ्रोलॉजी का सत्र था, यानी विश्राम की एक तकनीक।
4: On fait des exercices de sophrologie.
1: जया भीमक ने कहा सोफ्रोलॉजी विजुअलाइजेशन भी करते हैं विभिन्न थीमों पर ताकि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें, अपना तनाव दूर कर सकें। उन्हें ऐसे उपकरण देना चाहते हैं ताकि वे घर पर इसका उपयोग कर सकें। पिंक अक्टूबर के इस महीने में लिंक टू लाइफ कई गतिविधियां आयोजित करता है। रिमेना माही ने कहा उतार चढ़ाव होता है, अपने को आईने में देखकर संकल्प लेते हैं, खुद का ठीक से ख्याल रखेंगे, अपनों को स्तन कैंसर के मुआयने के लिए प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि कैंसर के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं। ऐसे वचन किए गए ताकि इस कठिन घड़ी के बावजूद ये ज्यादा मुस्कुराती हुई एवं साहसी हो सके।
0: मॉरिशस पानी की कमी का सामना कर रहा है। ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार दिसंबर के दूसरे हिस्से में गर्मियों की बारिश पड़ने की उम्मीद है। मोगवाक्वा जलाशय में अभी जलस्तर मात्र 35.9% है, जहां से रोजाना सिर्फ 61,000 क्यूबिक मीटर पानी निकाला जा रहा है, जबकि आमतौर पर 110,000 क्यूबिक मीटर पानी निकाला जाता है। स्थिति से जलापूर्ति पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादन ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई उपाय लागू करने की घोषणा की, जिनमें भूमिगत स्रोतों का इस्तेमाल और नए मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना शामिल है। मॉरिशस में कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल और स्वास्थ्य पर उनके संभावित असर, खासकर कैंसर के मामलों की जांच के लिए एक महामारी संबंधी अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO की विशेषज्ञता प्राप्त होगी। कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में कल एबन में अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी की प्रथम बैठक लगी। इसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल सलाम गुये और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल रहे। डॉक्टर अरविंद बुलेल ने सटीक और प्रासंगिक बायोगैनिक डेटा पर निर्भर रहने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा कीटनाशकों के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे।
5: अगर विदेशों में किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों में पर्यावरण में मौजूद कृषि कीटनाशकों के संपर्क और कैंसर के खतरे के बीच संबंध सामने आया है, तो मॉरिशस में इस संबंध में अभी तक कोई वैज्ञानिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO की मदद से एक महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाएगा। कृषि उद्योग मंत्री के अनुसार करीब 9 से 10% कृषि उत्पादों में कीटनाशकों के अवशेष तय सीमा से ज्यादा पाए जाते हैं। मंत्री अरविंद बुलेल कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि और FAO से मांग की है कि एक साथ काम करें, उनका समर्थन लें स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से, ताकि महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जा सके। कीटनाशकों के प्रयोग को लेकर कानून पर भी ध्यान दे रहे हैं। कानून पर काम करने वाले विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया है कि कानून में कौन से सुधार लाने चाहिए। फल और सब्जियों के आयातक भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं। मंत्री अरविंद बुलेल कहते हैं, सिर्फ स्थानीय खेतीहरों के बारे में बात नहीं कर रहे, फल और सब्जियां आयात करने वाले लोग भी हैं, सभी टेस्ट किए जाएंगे।

0: में बल्कि विदेशों में भी। किसानों और उनके परिवारों की नियमित स्वास्थ्य जांच की भी योजना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू कहते हैं, कायम की गई कमेटी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे जो उन परिवारों को देखने जाएंगे जो कृषि से जुड़े हुए हैं। तब इसका पता चल जाएगा कि सच में कीटनाशक कैंसर के बढ़ने का कारण है। समिति की ओर से किसानों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
1: बीते शनिवार गोविंद नयन पूजा का तीसरा शनिवार रहा। जी हाँ, बीता शनिवार गोविंदन पूजा का तीसरा शनिवार रहा। भक्तों ने देश के कोविलों में भगवान कृष्ण को समर्पित विशेष पूजा में भाग लिया। हमारी एक टीम गानम वक्वा के अन्नादुराई तामिजे कोविल में मौजूद हुई। प्रार्थनाओं के साथ साथ भजन और नृत्य हुए। प्रियंका अरी, गीतास नारायण।
0: रात के दौरान प्रार्थनाओं और पारंपरिक भजनों की गूंज सुनाई देती है। कई दिनों की तैयारियों के बाद ग्रानम रोड वाकवा स्थित अनादुराई तमीज कोविल श्रद्धालुओं के लिए अपने द्वार खुलता है। यहां भगवान विष्णु को समर्पित प्रार्थना में श्रद्धालु हिस्सा लेने पहुंचे। तिरुतुंडर आया बतलैन गोविंदा स्वामी कहते हैं, पुरातासी को एक कठिन महीना माना जाता है। सभी भक्त महाविष्णु की पूजा करते हैं हम सबकी रक्षा के लिए। इन धार्मिक आयोजनों के केंद्र में है कंबम। ये पवित्र दीपक भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इस पवित्र रोशनी के चारों ओर श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और कुम्मी नृत्य करते हैं। गोल घेरा बनाकर श्रद्धालु भक्ति गीतों की लय पर एक के बाद एक कदम बढ़ाते हैं। इस भक्ति भरी रात में प्रसाद और भेंट का भी विशेष महत्व है। इनमें वड़े भी शामिल हैं, जो अनाज से बनी एक पारंपरिक पकवान है और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। सेंसुबेन कहते हैं, भक्तों के लिए रात के दौरान तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलता है। गोविंदन की रात्रि बहुत ही श्रद्धा भक्ति से गुजारते हैं। तांगावेल गोविंदन कहते हैं, गोविंदन एक त्याग है, व्रत रखते हैं। कुम्मी गोलाटम के साथ जब सभी लोग एकत्र होते हैं तब उसकी सुंदरता देखते बनती है।
2: Ça même qui est plus joli. Ça veut dire nous faire une dépense seulement quand ça finit, quand nous péter un endroit comme à Yenge, là nous serons tous nous quelque chose.
0: Bari Ramsami dit que gaon ke sabhi logon ko iska har saal intezaar rehta hai.
3: Et nous tenons à ça, chaque année nous tenons ça avec PVA. Et en plus de ça, il y a Manama qui nous passe la nuit, une nuit.

0: कुछ श्रद्धालुओं के लिए प्रार्थना का सिलसिला इस कोविल तक ही सीमित नहीं रहता। एक ही रात में 3 और कभी कभी 7 कोविल के दर्शन भी किए जाते हैं। ये आस्था की एक यात्रा है जहां हर प्रार्थना, हर भजन और हर कदम श्रद्धालुओं को ईश्वर के और करीब ले जाता है।
1: और वेंकटेश्वरा पूजा व्रत के संदर्भ में एक आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम के लिए युवा कर्नाटिक कलाकार राहुल वेलल मॉरिशस आए हुए हैं। मॉरिशस तेलुगु महासभा के मुख्यालय में उनका स्वागत किया गया। मात्र 19 साल की उम्र के इस भारतीय कलाकार ने भक्तिपूर्ण प्रस्तुतियों से दुनिया भर के संगीत प्रेमियों का दिल जीता है। आज कल 7 अक्टूबर को फिनिक्स के वाल्डेवी इवेंट गार्डन में उनका लाइव परफॉर्मेंस होगा। शतेंद्र की रिपोर्ट।
2: सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में राहुल वेलल भारत में कर्नाटक संगीत के युवा चेहरों में अपनी पहचान बना चुके हैं। मॉरिशस में अपने पहले दौरे पर एक आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम के सिलसिले में उनका स्वागत मॉरिशस तेलुगु महासभा के मुख्यालय में 2 अन्य कलाकारों के साथ किया गया।
3: My first time and thoroughly enjoyed it till now. The weather has been great, very similar to what we have in Bangalore.
2: उनका संगीत सफर उन्हें पहले ही कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जा चुका है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और हांगकांग शामिल हैं। इसके साथ ही वे कर्नाटक संगीत के प्रतिष्ठित गुरुओं से अपनी संगीत शिक्षा जारी रखे हुए हैं।

0: continuous process, it never ends. And the end goal is that we try to become as close to the ocean of music as possible.
1: सिर्फ संगीत प्रस्तुति तक सीमित न रहते हुए ये युवा गायक अपनी कला साधना को आध्यात्मिकता से गहराई से जोड़ते हैं।

0: उनके लिए गायन भक्ति व्यक्त करने और श्रोताओं के साथ एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव बनाने का माध्यम है।
1: It's more about the vibe that you feel once you're there, the spiritual vibe and the divine energy that you get to experience in such concerts. So I think it's a must for everyone to attend and I'm sure they'll enjoy it as well.
0: उनकी ये सोच मॉरिशस के दर्शकों के बीच भी विशेष रूप से जुड़ाव पैदा कर सकती हैं। ये तीसरा आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम है जिसका आयोजन वेंकटेश्वर व्रतम के अवसर पर किया जा रहा है।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों छात्र प्रदर्शनों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। वे शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 2000 से ज्यादा स्कूलों के सामने घेराबंदी की। पुलिस के साथ उनकी झड़पें भी हुई हैं। और उधर साइबेरिया में एक प्लेग अनुसंधान केंद्र में एक लैबोरेटरी कर्मचारी की मौत के बाद उसके संपर्क में आए करीब 200 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। रूसी अधिकारियों ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। अमेरिका की तरफ से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बढ़ते हम अब मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है रात के दौरान और कल सुबह बादल घिराएंगे और विशेषकर पूर्व दक्षिण और सटपातों वाले इलाकों पर रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान, न्यूनतम तापमान सटपातों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान समुद्र प्लेटों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 6:09 पर और कल सुबह सूर्योदय 5:46 पर।

तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और कंसोल पर हमारे सहयोगी डोमिनिक का सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर। शुभ समाचार सुनिए। अलेब्रियन वाक्वामे, अलेब्रियन वाक्वामे 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विलासावादी लचिनी, श्रीमती विलासावादी लचिनी पैदाशम गोइंदेन और जिन्हें बेबी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो वेंचुरा दुकान की मालकिन थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके घर अलेब्रियन वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। मामजेल जान गुडलैंड्स में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री कासीराज अलकोरी जिन्हें ओमदेव के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती शोभा अलकोरी के घर मामजेल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बागोश गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। Avenue Le Palmier, Kangaroo Flakme, 105 साल की 105 years old की श्रीमती कान

कामा चिनिया, श्रीमती कानकामा चिनिया पैदाशना बंगारी और जिन्हें बाबाम के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके बेटे रामदास और देवानंद चिनिया के घर कोंगारो फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। रायरोड 15 कैंस कॉन्टों वाक्वा में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री गोइंसामी सुंदरम जिन्हें राजेन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो सदाल कॉलेज में अटेंडेंट का काम करते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विमला सुंदरम के घर कैंस कॉन्टों वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 3 PM। रायरोड 9000 ट्रियोले में 21 साल की 21 ईयर्स ओल्ड की बीबी फातिमा शबनीज सुकुमिया जिन्हें शबनीज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके मकान 9000 ट्रियोले से उठाकर दफनाने के लिए प्रेंदी पपाई का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। शिवाला लेन पुचपाके मोताई ब्लॉश में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रूपावती झगर सिंह पैदाशिनाम नक्चेदी और जिन्हें राधा माराम फाक्तिया के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके बेटे विकास झगर सिंह के घर पुचपा के मोताई ब्लॉक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2:30 PM। नंबर 10 नाहाबू सलीम स्ट्रीट बुबासे में 82 साल की

ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। नंबर 10 नाहाबुसोलिम स्ट्रीट बुबासे में, नंबर 10 नाहाबुसोलिम स्ट्रीट बुबासे में 82 साल की, 82 ईयर्स ओल्ड की कुरेसा इमाम अली जिन्हें मैडम आबू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज रात 7:30 बजे इनके मकान बुबासे से उठाकर सबसे पहले नमाज़े जनाजा के लिए नूरे कबावी मस्जिद दे जाएगी डॉक्टर रीड बुबासे स्ट्रीट में। फिर दफनाने के लिए बैदिदाम कासी का कब्रस्तान, फ्यूनरल टुनाइट एट 7:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सीबी की ओर से कुछ विज्ञप्तियां। सीबी अपने ग्राहक जो ग्लेन पार्क, खासतौर पर लामाहरी रोड, बक्सू लेन, एडू लेन, दीन मोहम्मद लेन और आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि कल बुधवार 7 अक्टूबर को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। वहीं सीबी अपने ग्राहक जो सैकवा, खासतौर पर रोदबासैन नंबर 1 और 2 और लेकोनू आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि

0: गुरुवार 8 अक्टूबर को सुबह 10 से लेकर दोपहर के 4:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। वहीं सीबी अपने ग्राहक जो त्वाबुचिक खासतौर पर गांधी रोड और एसएसआर लेन त्वाबुचिक में रहते हैं उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि कल बुधवार 7 अक्टूबर को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के पूरा होते ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को एक बार फिर जारी कर दिया जाएगा। किसी भी असुविधा के लिए सीबी आपसे क्षमा प्रार्थी है।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

相聚的时刻即将接近尾声，听众朋友，下面请欣赏歌曲《太想念》，让我们在悠扬的歌声中结束今天的节目。祝听众朋友晚安。

0: चांदना। MBC Radio 24 hours a day.
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी श्रोतागण को अनीता का करजोर नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोतागण, कहा गया है कि शरीर के अंग जल से शुद्ध होते हैं, मन सत्य से शुद्ध होता है, जीवात्मा विद्या और तप से शुद्ध होता है तथा बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। तो चलिए इन्हीं विचारों के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तों, कहा गया है कि मनुष्य के सामने श्रेयी अर्थात कल्याणकारी और हितकारी मार्ग तथा प्रेयी अर्थात प्रिय और सुखद लगने वाला मार्ग दोनों आते हैं। विवेकशील व्यक्ति दोनों को परख कर श्रेय को चुनता है, जबकि मंदमति व्यक्ति सुख सुविधा और सुरक्षा के मोह में प्रेय को चुन लेता है।

प्रियजन, एक श्लोक इस प्रकार है कि त्यजेत धर्म दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, त्यजेत क्रोध मुखी भार्या निःस्नेहान बांधवास्य जेत। भावार्थ यहाँ है कि धर्म में यदि दया ना हो तो उसे त्याग देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहीन बांधवों को भी त्याग देना चाहिए।

भक्तों, कहा गया है कि मनुष्य को ना तो मृत्यु की इच्छा करनी चाहिए और ना ही जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होना चाहिए। जिस प्रकार एक सेवक अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उचित समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। अर्थात जीवन के प्रति आसक्ति और मृत्यु के प्रति भय दोनों से ऊपर उठकर धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ नीति है।

श्रोतागण, कामनाएं भोग करने से कभी शांत नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और अधिक बढ़ती है, वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति करते रहने से इच्छाएं और बढ़ती जाती है। तो इन्हीं विचारों के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपने साथ एवं ध्यान दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

मोहतरम सामईन, ये दुनिया अमल करने की जगह है। हम यहाँ जो भी अमल करेंगे उसकी सज़ा या जजा हमें आखिरत में ज़रूर मिलेगी। हमें ये मालूम होना चाहिए कि आमाल की बरकतें ज़रूर होती हैं। इसलिए कोई भी नेक अमल, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें उसे तर्क नहीं करना चाहिए। आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उसका फ़ायदा ज़रूर होगा।

बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, दिल को सुकून मिलता है नाते रसूल से। मोहतरम सामईन, इसी खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा आज का शबाना प्रोग्राम महफिल शब अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। उम्मीद है आपने आज की बज़्म को पसंद फरमाया होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अब हमारी मुलाकात अगले मंगल को होगी। तब तक के लिए आपका मेज़बान निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार हैं। अस्सलामु अलैकुम, शब बख़ैर।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

रात के 9:03 होलबा और आज मंगर 6 अक्टूबर 2026 के भोजपुरी तड़का में हम किरण आप सबको के स्वागत करत है। आप सबको के नमस्ते प्रणाम और पहला गीत आप सबको के नाम दुनिया बाद चारों तरफ गोल सुनानुयान के आवाज़ में।

हाँ तो आज हाँ अक्टूबर महीना के दूसरा सप्ताह लेकिन पहला मंगर मंगलवार पहला मंगर और मंगर भी बहुत शुभ मानल जाला। एगो दिन के कोनो खास विशेषता नहीं है बल्कि हमनी के संस्कृति में सभी दिन बहुत शुभ मानल जाला और आशा करत है जा कि आज के दिन आप सब कोई के बहुत अच्छा से बीतल और इस सप्ताह भी काल शुरू हो लेकिन देखा दुगो दिन बीत गल समय बहुत जल्दी जल्दी चलता। अभी पितरपक के जो मौसम बा वो भी समाप्त हो के ढेर देरी नहीं लगी और उधर नवरात्रि शुरू हो जाए। जैसे नवरात्रि शुरू होल तो फिर उधर दिवाली चलाए और दिवाली चला तो समझ ला अब क्रिसमस और नवा बरिस भी आए के दूर नहीं बा। तो अब सब कोई के खास तौर पर जे लोग अभी परीक्षा में भाग लेवत है वजह जेकर जेकर घर में लड़का लोग एग्जाम के प्रिपरेशन करत है वजह आप सब कोई की बहुत बहुत शुभकामना। अगला जो गीत चली वो चाहे

परीक्षा के समय रही, चाहे वो पूजा पाठ के समय रही, चाहे वो पितरपक के मौसम रही, मन चाहे हमेशा प्रसन्नचित रहेगे। तो जुन अगला गीत चली, ये गीत के मांग तो कर ले हवन विजय बेनी प्रसाद शामुनी से, लेकिन ये गीत आप सब कोई खातिर, चाहे आप कोनो भी मूड में होइबा, और ये गीत किशोर खिमिया के गावल बा, जलसा लाल बा। और विजय जी ये गीत खास तौर पर अपन दोस्त गणेश जगनारायण और मोहता बासे शास्त्री बोनोमाली के नाम करत हवन। और जितना कोई खुशी रहेला जा ये गीत एक पसंद करेला जा, आप सब कोई के नाम ये अगला गीत, और जितना कोई फ़ोन करत हवा जा, तो आप लोग के फरमाइश भी पूरा करे के हमने के पूरा कोशिश रही।

रात के 9:26 हो गल बा और आप अपन मनपसंद प्रोग्राम सुनत हवा भोजपुरी तड़का जोन 9 बजे से रात के 11 बजे तक चलेला और हम किरण आपके साथ हमेशा बीफे के दिन देवीला बल्कि बीफे के रात के देला लेकिन ई महीना हर मंगर के हमने मिलब जा और आज ई महीना के पहला मंगर है। आप सब कोई के कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत बा जे लोग हमनी के सुनत हवा जा वो चाहे घर पर होई चाहे ड्राइव करते बखत होई या फिर काम करते हुए आप हमके सुनत हवा त सुनते रहिया आपके ही मनपसंद गीत ई प्रोग्राम में हम चलाइला जैसे जानेला और आप सब कोई के फ़ोन कॉल्स आवता बहुत भारी संख्या में और आप सब कोई के गीत ही एक के बाद एक चलता जो अगला गीत चली सुनीता ननकू के आवाज़ में एगो ऐसा गीत जेकर मांग हर कार्यक्रम में कम से कम 5-6 जना तक करबे करेला और ई गीत है चमेली चमेली। आज ई गीत के पहला फरमाइश कर ले हवन सीला और आप ई गीत अपन पतिदेव सुरेन के नाम करत हवा साथ में अपन सब लड़का लोग के नाम और ख़ास तौर पर अपन सब नाती पोता के नाम और आपके नाती पोता के नाम में बा यौवन कबीर श्लोक और रुद्राक्ष आपके सब लड़का लोग सोनम शशि किरण और हांसले के नाम और जितना कोई ये गीत सुनने के खुशी रहेला जा आप सब कोई के नाम चमेली चमेली। आज आप लोग के गीत नहीं परल मांगे के एक जना के ओर से फरमाइश चला बा आप लोग के अन्य जो मनपसंद गीत बा एक के बाद एक चलते रही।

0: चमेली चमेली के बाद जो अगला गीत चली वो गीता गजाधर के आवाज में बा समधी के लगल हिचकी और ई गीत के फरमाइश कर ले हवन तहेरा आप हवा रिविया दिजोंगी से और ई गीत आप अपन बनोई के नाम करत हवा और बहिन मीना बनोई राचित मोहित और मीना के नाम तहेरा जी तो चला ये अगला गीत आपके संगे संगे जितना कोई भी अभी हमने के सुना था वजह और आप लोग गीता गजाधर के जबरदस्त फैन है वजह तो ये गीत आप सब कोई के नाम
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

गीता गजाधर के आवाज़ के बाद जो अगला गीत चली वह विक्रम कोलाचन के जुबानी धोती पोती पगड़ी। ये गीत के फरमाइश करत हवन भाई अब्बू अपन पूरा परिवार खातिर, अब्बू अयाज अफेज जयर जहीरा रईस काला चोटी और ख़ास तौर पर अपन दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम। भाई अबू के ओर से आप सब कोई के नाम भी ये गीत जे लोग धोती पोती पगड़ी सुने के हमेशा खुशी रहेला जा और एकर मांग करते रहेला जा।

0: अभी आप क्रिश बल्कि विक्रम कुलाचन के आवाज़ में धोती पोती सुनतरला और ये गीत के फरमाइश अक्सर रहते रहेला तो आशा करते जा कि ये गीत आपके पसंद आए। और एक बात जो अगला गीत चली उ ला फ्रांस कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में और ये गीत हांसले खास तौर पर अपन सास प्रेमिला के नाम करत हवन।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.

और लाफोस के बाद जो नगलागी चली उहा कोनो दिन दाल खाके और इगीत के मांग करले हवन रोजबेल से संजय संजय जे हमने के सुनत हवन इगीत आप श्वेता के नाम अपन बहिन के नाम भाई के नाम और पूरा परिवार के नाम करत हवा ता रोजबेल के संजय के ओर से ई अगला गाना

इजन गीत सुनत हवा हमरा देख देख के आंख मारेला। ई गीत गैले हवन बंधु मोहम्मद खालिद और साथ में हमनी के सहयोगी रत्ना पदारत आवाज देले हवन। ई सुंदर आवाज आप ही के चहेती रत्ना के हा और ई गीत के फरमाइश करले हवन पोलॉजी से छोटी और बेलिया से आत्माराम जी और ई गीत ललिता प्रभावती और हरीश भैया सब कोई के नाम और साथ में ये बखत हमने के गीता जी सुना था वन मोताइलोंग से आपके भी नाम।

जादू देवचरण के आवाज में भोजपुरी बोलिया गीत के मांग कर ले हवन मेबर्ग से कल्याणी जी, और आप गीत नोवेल फॉस की गायत्री अजय और अपन सब दोस्त के नाम करत हवा। मेबर्ग से कल्याणी जी के फरमाइश पर भोजपुरी बोलिया जादू देवचरण के आवाज में

संस्कृति हमारी है सबसे पुरानी। इगीत के मांग कर ले हवन नवीन लक्ष्मण जी। नवीन लक्ष्मण जी जे गोसबेल से हवन, आप इगीत अपन धर्मपत्नी चित्रा के नाम करत हवा और आप चाहत हवा कि सब कोई आपके पत्नी चित्रा के स्वास्थ्य खातिर प्रार्थना करियन जा, कहे कि उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं चला था आजकल। तो नवीन जी, आपके पत्नी बहुत जल्द ठीक हो जायन, ऐसा प्रार्थना और शुभकामना के साथ आपके नाम, आपके पत्नी के नाम, आपके बहन निवेदिता, अमृता और सब भाई लोग के नाम, न्यूग्रोव के राज अभिलोक के नाम, आपके ओर से इगीत।

0: ये गो करिया ये गो गुड़िया ये गो खूबे सुंदर बा
1: खूब सुंदर बा
0: खूब सुंदर बा
1: खूब सुंदर बा।

0: रात के 10:10 होल बा और अभी से 11 बजे तक के ई सफर चले होला बा। अगला जोन गीत चली मीरा मोहन के आवाज में शहर के बजरुआ और ई गीत सुने चाहत हवन प्लेंदे पापाई से मनु। मनु आपके फरमाइश पर मीरा मोहन के आवाज में ई अगला गीत।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station,

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.
4: ये बखत रात के 10:45 हुआ था और 15 मिनट में हमने के ये प्रोग्राम समाप्त हो जाए रात के ठीक 11 बजे। और आप जितना प्यार के साथ साथ देला, आप सबको के बहुत बहुत धन्यवाद। ये जन अगला गीत चला था बिजमावती संपत की आवाज़ में। ये गीत खास तौर पर पूर्णिमा फुकेरा जी के नाम और शांता सुकारी जी के नाम, सेजियम फिल सेजियम फॉरेस्ट साइड से सुना था वन।

और हमने के मुलाकात काल फजर के फिर से हुई हमारी धरोहर में, और नहीं तो फिर मिलब जा भोजपुरी तड़का में आवत मंगर के। आप सबको अपन ख्याल रखिया जा, शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनहरे पल। रात के 11 बज चुके हैं और घर में धीरे धीरे खामोशी उतर रही है। लाइट्स हल्के से डिम है और अब वक्त है दिन भर की भाग दौड़ को साइड में रखने के लिए और सुनहरे पल में जहां रात के साथ चलेंगे वो गीत जो यादों को भी जगाते हैं और दिल को भी सुकून देते हैं। मैं हूं नमनी, तो आइए आज की रात को थोड़ा पुराना, थोड़ा हसीन बनाते हैं।

वैसे कुछ गाने सुने नहीं जाते हैं, वो अपने साथ एक पूरा जमाना ले आते हैं, एक जगह, एक चेहरा, एक शाम और कभी कभी बस एक पुरानी सी याद। सुनहरी पल पर आज रात ऐसे ही गीतों का सिलसिला जारी है, आप बस साथ देते रहिए।

दिन चाहे कितना भी लंबा रहा हो, सोने से पहले अगर एक पसंदीदा गीत सुनने को मिल जाए तो मन हल्का सा हो जाता है। तो आज रात फोन एक तरफ रखिए, आंखें बंद कीजिए और बस गीतों को महसूस करते हैं।

मोहब्बत के जमाने बदल जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज और कुछ धुन कभी पुरानी नहीं होती है। वो पहला खत, पहली मुलाकात या वो इंतजार, सब कुछ एक गाने में दोबारा जी सकते हैं।

रात गहरी हो रही है और सुनहरे पल की महफिल भी धीरे धीरे और नर्म हो रही है। अब कोई जल्दी नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस पुरानी गीतों की मिठास और आपका साथ।

एक आवाज में शरारत, एक आवाज में रोमांस, और दोनों मिल जाए तो गाना यादगार बन जाता है। आशा जी और किशोर दा की ये जोड़ी बॉलीवुड के उन खूबसूरत रंगों में से है जो आज भी उतने ही ताजा लगते हैं। तो चलिए उसे फिर से रिवाइव करते हैं साथ में आपके ही सुनहरे पल।

0: इसी के साथ सुनहरे पल की आज की महफिल अपनी आखिरी गीत की तरफ बढ़ रही है। कल फिर मिलेंगे एक और रात, कुछ और पुरानी यादें और बहुत सारी एवरग्रीन गीतों के साथ। तब तक शुभ रात्रि, अच्छी नींद और दिल में कुछ खूबसूरत सुनहरे पल संभाल कर रखिए।
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।
4: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलो हर्ट्ज। दिस इज रेडियो मॉरिशस।

तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा। ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
1: This is Radio Mauritius.
2: Ni hao. Assalamu alaikum. Kim to Mauritius.
3: Namaskar.
4: Shrotalandariki hrudayapurvaka namaskaram.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: RM3 रेडियो।